मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 हो रहे हैं। आरंभ होती है आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रकृति का मनमोहक और संजीवनी रूप, प्रातः की सुंदर बेला। पूर्व दिशा से बिखरती सुनहरी किरणें, पंछियों का मधुर कलरव, मंद मंद बहती शीतल हवाएं, जो संदेश देती हैं कि मन को असीम शांति से सराबोर करें और सकारात्मक ऊर्जा का समावेश करें, प्रातः की सुंदर बेला का आनंद लें। तो उठिए, जागिए और सकारात्मक बेला का आनंद प्राप्त कीजिए। श्रोताओं, हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, आप रेडियो सेट को ऑन कर चुके हैं, अपनी दिनचर्या को आरंभ भी कर चुके हैं और आपको इंतज़ार होगा देश दुनिया में हो रही गतिविधियों को जानने का। तो सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सू मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के

0: समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आज आपके साथ प्रेजेंट करेंगी वैशाली। श्रोताओं, समय हुआ है सुबह के 6:05 का। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। वक्त है कृषि चर्चा का। आज की कृषि चर्चा में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी किसान भाइयों को बताएंगे धान की सघन नर्सरी के बारे में।
2: शुभ प्रभात। आज की कृषि चर्चा में धान की सघनीकृत जो प्रणाली है, उस प्रणाली के तहत धान की नर्सरी किस तरह हम उगाएं कि बेहतर से बेहतर हमें उत्पादन के लिए अवसर प्राप्त हो सके। सघनीकृत धान प्रणाली आप जानते ही हैं, जिसे अंग्रेजी में SRI पद्धति कहते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसके तहत बहुत सारी सुविधाएं, या ये कहें कि इसके तहत बहुत सारे ऐसी नवीन पद्धतियां समाहित कर खेती करने का प्रयोग किया गया, और वह प्रयोग सफल जब रहा तो हमारे बीच आया। सघन धान प्रणाली में धान की किसी भी प्रजाति का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी नर्सरी के लिए उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियां, संकर धान इसके लिए उपयुक्त होते हैं। इस पद्धति में प्रति हेक्टेयर रोपाई के लिए 5 किलोग्राम और इतनी नर्सरी उगाने के लिए 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर्याप्त होता है। इस विधि में बीज एक दूसरे से नहीं छूने चाहिए और नर्सरी सघन नहीं होनी चाहिए। नर्सरी डालने के पूर्व 1 से 1.25 मीटर चौड़ी उपयुक्त लंबाई की क्यारियां बना लेनी चाहिए। क्यारियों की ऊंचाई जमीन की सतह से 5 से 6 इंच ऊपर रखते हैं। नर्सरी की क्यारी में सबसे पहले 1 इंच सड़ी गोबर की खाद, फिर 1 इंच मोटी उपजाऊ मिट्टी, पुनः 1 इंच मोटी सड़ी गोबर की खाद, और चौथी जो परत डालेंगे वह 2.5 इंच मोटी मिट्टी की परत बनाने हैं, और इन सबको आपस में अच्छी तरह फिर मिला लेना है। क्यारी के चारों तरफ लकड़ी के पटरे लगा देते हैं, जिससे अंदर की मिट्टी का बहाव न हो सके। पानी की अतिरिक्त मात्रा निकालने की व्यवस्था भी निश्चय ही आप सुनिश्चित करें। सामान्य धान नर्सरी की ही तरह अंकुरित धान को नर्सरी में छींट देते हैं। बीज के ऊपर अच्छी तरह सड़े गोबर की एक पतली सी परत फैला देते हैं। सूर्य की सीधी किरणों से बीजों को बचाने के लिए उन्हें पुआल या फिर केले के पत्ते से ढक देते हैं, और बीजों के जमने के बाद उन्हें हटा लेते हैं।

0: नर्सरी में सुबह एवं शाम हल्की सिंचाई करनी चाहिए। नर्सरी रोपाई के खेत के बीच में या मुख्य खेत के समीप होनी चाहिए। सिंचाई के लिए यह सुनिश्चित करना बेहतर हो जाता है यदि हम फव्वारा विधि अपनाते हैं। इसके लिए खेत की जो तैयारी की जाती है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। इस पद्धति से धान की खेती करने के लिए अच्छी भूमि की आवश्यकता होती है। लवणी या क्षारीय भूमि इसके लिए कदापि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बार बार सिंचाई एवं जल निकास के कारण घुलनशील लवण जमीन की सतह पर आ जाते हैं। इस विधि से खेती करने के लिए रोपाई के पूर्व खेत को पूर्णतया समतल कर लेते हैं। रोपाई से पूर्व खेत में प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद मिला लेते हैं और रोपाई से 45 दिन पहले सनई या ढैंचा, जो भी हरी खाद वाली फसल बोई गई है, उसे हरी खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। इस प्रणाली में गोबर की खाद, कंपोस्ट या फिर हरी खाद का विशेष महत्व होता है, क्योंकि उर्वरकों का प्रयोग पौधों की वृद्धि की आवश्यकता अनुसार न्यूनतम मात्रा में किया जाता है। इस तरह से अगर आप धान की नर्सरी SRI पद्धति से जो करने की सोचे हैं उसे करेंगे तो बेहतर होगा। हाँ, थोड़ी सी बात और ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि जब इसकी विशिष्टता को, इसकी अच्छाई को आप जानते हैं तो बेहतर ढंग से कर सकने की स्थिति में होंगे। प्रति पौधा 30 से 50 टिलर या 100 टिलर तक संभव होता है, जिसे हम कहते हैं कि एक थान बनता है, वह 30 से 50 पौधों का हो जाता है या फिर वह बढ़कर 100 तक पहुंच जाता है। धान जलीय पौधा होने का लोगों द्वारा विश्वास है। लगातार पानी का भराव रखा जाता है तथा खेत में लगातार पानी भरे रहना चाहिए। धान जलीय स्थिति में जीवित रह सकता है, परंतु जलीय पौधा नहीं है। धान वायु पॉकेट विकसित करने में काफी ऊर्जा खर्च करता है। पुष्पण के समय धान की 70% जड़ सिरा, जिसे होते हैं रूट टिप कह लेते हैं अंग्रेजी में, वह सड़ जाती है। तो इस प्रणाली में खेत में पानी नहीं भरा जाता, बल्कि वानस्पतिक वृद्धि के समय भूमि को नम रखना बेहतर होता है और बाद की अवस्था में मात्र 1 इंच पानी लगाया जाता है। सामान्य प्रणाली की अपेक्षा इस प्रणाली में पानी की आवश्यकता लगभग आधी हो जाती है।
1: धान की सघन नर्सरी, इस विषय पर अभी किसान भाइयों को जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया और जो अपने वर्तमान में संतुष्ट है, उससे अधिक प्रसन्न कोई और नहीं हो सकता। आइए सुनते हैं आज का सुविचार।
2: प्रसन्नता जीवन का अद्भुत सौंदर्य है। अंतःकरण की स्थिति का दूसरा नाम प्रसन्नता है। यह चित्त हल्का करने का सात्विक भाव है। निश्चल और सरलता इसका प्रथम उपाय है। तत्काल आनंद देने के अलावा यह आयु और कीर्ति बढ़ाती है। प्रसन्नता आंतरिक संवेदना है। शरीर और मन के लिए प्रसन्नता स्वास्थ्य वर्धक और मित्र तुल्य है। यह बुद्धिमत्ता बढ़ाती है। प्रसन्नता प्राप्त करना अपने वश में है। इसके लिए बार बार सद प्रयास करना पड़ता है। ऐसा न करने पर प्रसन्नता के स्थान पर तनाव बढ़ने लगता है। आंतरिक प्रसन्नता सुखी बनाती है। बड़े दुख को छोटी प्रसन्नता कम करती है। आवश्यकताएं कम करना प्रसन्नता के लिए वरदान है। इसके रसायन में संघर्ष की सफलता का रहस्य छिपा रहता है। प्रसन्न रहने का सबसे सरल उपाय है कि कुछ समय के लिए बालक बन जाएं। सरल चित्र, आनंदमय स्वभाव वाले भगवान स्वरूप बच्चों के साथ तन्मयता में खेलकर आनंद का अनुभव करें। गीत, भक्ति रस के संगीत प्रसन्नता बढ़ाते हैं। चेतना के विकास में एक विशेष गुण जो मनुष्य को पशु से ऊपर सिद्ध करता है, वह है मनुष्य की हंसी। खिलखिलाकर हंसने का वरदान प्रकृति में मनुष्य को मिला है। यह चेतना की एक विलक्षण अवस्था है। दूसरों पर हंसना पीड़ादायक है, स्वयं पर हंसना आत्मबोध। हंसी गंभीरता और मूर्खता का विलोम है। जैन धर्म का जन्म ही हंसी से हुआ। एक निश्चल निर्मल हंसी प्रज्ञा और आत्मचेतना का सबसे प्रखर रूप है। हंसी से तनाव भागता है, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हंसी को उत्सव ही बना दिया। कृतज्ञता, परोपकार और करुणा के बिना प्रसन्नता की हंसी नहीं आती। आंखें मिलाकर प्रसन्नता

0: मिलती है। सच्ची हंसी की भाषा आह्लाद के व्याकरण से जन्म लेती है। हंसने के समय मनुष्य देवता हो जाता है। यह दुर्लभ संयोग दैवी गुणों के विकास से आता है। किसी के गुण की प्रशंसा करना, परोपकार करना और हंसने के भाव में विचार महान बनते हैं। हंसने की कला नैसर्गिक है, यह देव दुर्लभ गुण बनाती है। छोटे बच्चे दिन में 300 बार हंसने के कारण ही ईश्वर के रूप कहलाते हैं। वयस्क मात्र 17 बार हंसते हैं। दिन में कम से कम 3 बार खिलखिलाकर हंसने वाले चिकित्सक के पास नहीं जाते। हंसना व्यायाम है, इससे रस ग्रंथियां पाचक रस का निर्माण करती हैं। हंसना सकारात्मक और रचनात्मक क्रिया है, इससे एंडार्फिन दर्द निवारक रसायन का स्राव होता है। प्रसन्नता से जीवन के रंग खिल उठते हैं। यह एक नैसर्गिक उपहार और शाश्वत आनंद है। हम जितनी अधिक प्रसन्नता और हंसी लुटाते हैं, वह उससे अधिक हमारे पास आती है। प्रसन्नता से परिपूर्ण व्यक्तित्व सम्मोहित करता है। हंसी मन की गांठें खोलती है। हंसने से फेफड़े दृढ़ होते हैं। प्रसन्नता यौवन का श्रृंगार है। यह लक्ष्य प्रदान करके निंदा निराशा से बचाती है। हंसना जीवन में एक योग है। हंसते समय नकारात्मक भाव विस्मृत हो जाते हैं। किसी को हंसाना एक बड़ी कला है। हंसने के क्रम में आता है मुस्कराना। यह शुद्ध हृदय का स्वभाव है। प्रसन्नता रस एवं आनंद की ज्योतिर्वान रेखा है। स्वाभाविक मुस्कान अलौकिक प्रीति का संचार करती है। हंसने की कला मुखमंडल चमकाती है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। कठिन समस्याओं का समाधान हंसी करती है। हृदय विराट बनाने के साथ सेवा करने की प्रेरणा देती है। प्रसन्नता की हंसी जीवन में उस औषधि की तरह है जो मनुष्य के दुखों और घावों को ठीक करने में सर्वाधिक प्रभावकारी है। हंसी वह चमत्कारिक योग है जिससे अनेक समस्याओं का समाधान स्वयं हो जाता है। हंसने की मूल आत्मा प्रकृति के इंद्रधनुषी रंग में है। चाहे पहली किरण में फूलों पर गुनगुनाते भ्रमर हों, तितलियां चहचहाते पक्षी हों या मन के आंगन में खिली हुई प्रसन्नता, लय हंसी है। हंसना स्वाभाविक व्यायाम है। आकर्षित करने और संबंध को दृढ़ रखने में हंसने की कामना हर स्थिति में है। प्रसन्नता और हंसी जीवन का मंगल प्रभात है।
1: हमारे मन के भीतर की शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है हंसने की कला। अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार। वाचन स्वर डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे का था। और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

ईश्वर की भक्ति ऐसा अमृत है जो हमारे मन के विकारों को दूर करके जीवन को शांति और आनंद से भर देती है। सच्ची भक्ति समर्पण है जो भक्त को अहंकार से दूर करती है और प्रभु के करीब ले जाती है। आइए प्रभु का गुणगान करें।

प्रभु की महिमा का वर्णन शब्दों में करना कठिन है। ईश्वर जिन्होंने सृष्टि को संभाला है, हम भक्तजन उनकी कृपा से ही जीवन पाते हैं।

शक्ति और करुणा का संगम, देवी माँ के शांत और सौम्य स्वरूप का अनुभव और माँ की भक्ति, माँ की कृपा से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं।

प्रभु श्री राम जिनका जीवन ही दिशा है। कठिन रास्तों पर चलना आसान हो जाता है जब साथ हो सत्य, साहस और संयम का। प्रभु राम के कदम हमें याद दिलाते हैं कि व्यवहार में प्रेम, वचन में दृढ़ता और कर्म में शुचिता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रभु राम नाम का स्मरण करें।

747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। और अब आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 181 में व्यथित मंत्री सुमंत्र का अयोध्या में आने और राजमहल में राजा दशरथ के दुख का प्रसंग।

शोक संताप और ग्लानि के सागर में डूबते उतराते सुमंत्र ने सारा दिन अयोध्या नगरी के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर बिताया। जब शाम का अंधकार घिरने लगा तो उन्होंने नगर में प्रवेश किया। महामंत्री का अकेले वापस आना सुनकर रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल प्रेतों के निवास स्थल जैसे लगने लगे। सुमंत्र को मौन तथा व्याकुल देखकर रानी कौशल्या उन्हें अपने महल में लिवा ले गईं। वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। आभूषण रहित मलिन राजा दशरथ धरती पर पड़े हैं। वाणी के नाम पर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी मात्र यही शब्द सुनाई पड़ते हैं। सुमंत्र ने जय जीव कहकर प्रणाम किया तो राजा ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर और मिताली सिंह। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

0: मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से वैशाली के साथ।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान विषयान समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं संप्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य एषा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढ़यितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरंतर प्रगतेः विषये प्रधानमंत्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शांति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च संभाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शांतिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतॄणाम् एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन सह कनाडादेशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मन्त्रालयेन सूचितं यत् श्रीगोयलः व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्यसूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47-2000 वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतं इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते ICF इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 15:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति।

0: भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तरप्रदेशाय पूर्वीयमध्यप्रदेशाय विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी संचेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तरपश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपयक्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामि सप्तदिवसपर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रो लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां एकोत्तर शत धावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सप्तभिः क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं मुंबय्याम् अपराह्णे सार्धत्रिवादने मुंबई इंडियंस दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते, ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वंद्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्ज पर। समय हुआ है सुबह के 7 बजे का और ये समय होता है स्वास्थ्य चर्चा सेगमेंट का। श्रोताओं, अगर स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखना है तो स्वच्छ और ताजा आहार बेहद आवश्यक है और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में नीना सोनकर हमारे श्रोताओं के लिए लेकर आती हैं सेहत से संबंधित कई तरह की जानकारियां। तो आज की स्वास्थ्य चर्चा में आइए जानते हैं फूड पॉइजनिंग से बचाव के बारे में, बता रही हैं नीना सोनकर।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं जो हमारी रोज की दिनचर्या से जुड़ा है, लेकिन अक्सर हम इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। हम बात कर रहे हैं फूड पॉइजनिंग की, यानी भोजन की विषाक्तता की। ये एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब हम ऐसा खाना खा लेते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या किसी भी प्रकार के विषैले तत्वों से दूषित हो चुका होता है। फूड पॉइजनिंग केवल एक असहज अनुभव नहीं है, बल्कि कई बार ये जानलेवा भी साबित हो सकती है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि गर्मियों में या यात्रा के दौरान लोग बाहर का भोजन करते हैं और कुछ घंटों के भीतर उन्हें उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार या थकान जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ये लक्षण सामान्य लग सकते हैं, लेकिन ये संकेत होते हैं कि हमारा शरीर किसी बाहरी हानिकारक तत्व से लड़ रहा है और ये लड़ाई हमेशा आसान नहीं होती है। अक्सर फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण होता है दूषित पानी, अधपका या बासी भोजन, लंबे समय तक खुले में रखा भोजन या फिर खाना पकाने और परोसने में की गई साफ सफाई की लापरवाही। गर्मी और नमी वाले मौसम में ये समस्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं, विशेष रूप से दूध और दूध से बनी चीजें, मांसाहारी भोजन, सलाद, कटी हुई सब्जियां या फिर खुले में बिकने वाली चाट पकौड़ी, ये सब जल्दी खराब हो सकते हैं और इनके जरिए संक्रमण शरीर में प्रवेश भी कर सकता है। हमारे देश में कई बार भोजन को ज्यादा समय तक स्टोर करने रखने की प्रवृत्ति होती है, विशेष रूप से त्योहारों या समारोहों के समय जब ज्यादा मात्रा में खाना बनाया जाता है। अगर उस खाने को सही तापमान पर नहीं रखा गया या दोबारा गर्म करने में लापरवाही की गई, तो उसमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि कई बार शादी, विवाह या बड़े भोज के बाद कई लोगों में एक साथ पेट खराब होने की शिकायत आती है। श्रोताओं, फूड पॉइजनिंग से बचने का सबसे पहला और जरूरी उपाय है साफ सफाई, स्वच्छता। चाहे खाना बनाने वाला हो या खाना खाने वाला, दोनों के हाथ साफ होने चाहिए, बर्तन अच्छे से धोए गए हों, सब्जियां और फल अच्छी तरह से साफ किए गए हों और खाना पकाते समय कच्चे और पके हुए खाने को अलग अलग रखा गया हो। ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन फर्क बहुत बड़ा डालती हैं। फ्रिज में रखे खाने को समय समय पर जांचना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि दिखने या सूंघने से पता चल जाए कि खाना खराब है या नहीं। कई बार नुकसानदेह बैक्टीरिया बिना किसी गंध या रंग के भी भोजन को विषैला बना सकते हैं,

0: बच्चों और बुजुर्गों को बचाने के लिए सबसे पहले यही जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि हम उन्हें केवल ताजा और ठीक से पका हुआ खाना ही दें। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो ही जाए तो सबसे पहले उसे शरीर में पानी की कमी ना होने देना जरूरी है। बार बार उल्टी या दस्त के कारण शरीर से बहुत सारा तरल निकल जाता है जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। ऐसे में ORS, नींबू पानी, नमक शक्कर वाला पानी या नारियल पानी बहुत मददगार होता है। अगर लक्षण 24 घंटे से ज्यादा रहें, बुखार तेज हो या खून की उल्टी दस्त शुरू हो जाए तो बिना देरी किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। फूड पॉइजनिंग से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होनी चाहिए। इसलिए कोशिश करें कि आपके दैनिक आहार में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी ना हो। मौसमी फल, सब्जियां, दही, छाछ और पर्याप्त पानी हमारे शरीर को बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। दही और छाछ में प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं और पाचन क्रिया को संतुलित भी रखते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, कामकाजी लोग जो टिफिन में खाना लेकर जाते हैं या यात्रा के दौरान भोजन कर रहे यात्री, इन सभी को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। टिफिन को सुबह बनाकर देर शाम तक बिना ठंडक में रखे खाना कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है। बाहर खाना खाते समय ये भी जानना बेहद जरूरी है कि दुकानदार सफाई से खाना परोस रहा है कि नहीं और खाने की चीजें सही से ढकी हुई हैं कि नहीं। आज जब हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं तो जरूरत है कि हम खाना केवल स्वाद से न चुने बल्कि स्वच्छता और पौष्टिकता को भी प्राथमिकता दें, क्योंकि अच्छा खाना ही तभी उपयोगी है जब वो शरीर को पोषण दे न कि उसे बीमारी का रास्ता बना दे। श्रोताओं, अगली बार जब आप खाने की थाली सजाएं तो स्वाद के साथ साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ रहना है तो केवल अच्छा खाना नहीं बल्कि सही, ताजा और स्वच्छ खाना जरूरी है। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओं, मौसम कैसा भी हो, स्वास्थ्य के लिए हमेशा उत्तम और ताजे भोजन का ही चयन करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज फूड पॉइजनिंग से बचाव विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून इन किया है 747 किलोहर्ट्ज और सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। सामयिक चर्चा में सुबह 9:15 पर सुनिएगा प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के आम जनजीवन पर प्रभाव और बचाव के लिए प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सुबह 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम में आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश के तहत समात फरमाइएगा दास्तान किस्सा चार दरवेश। प्रेजेंटर होंगी शाजिया खान, पेशकश आसिफ इकबाल की होगी। आज इसका पहला भाग प्रसारित किया जाएगा। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे आज शाम 7:31 पर। प्रस्तुति सुमोना एस पांडे और नीना सोनकर की होगी। आज रात 8 हिंदी कार्यक्रम में सुनना ना भूलें डॉक्टर अमित राय की वार्ता, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष और अवध के क्रांतिकारी। दिन में 3:15 पर आप सुनेंगे डॉक्टर विपिन कुमार झा की संस्कृत वार्ता गंगा महात्म्य। फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का प्रसारण समय होगा दिन में 3:30। आज इस कार्यक्रम में विषय होगा अस्थि एवं जोड़ संबंधी विभिन्न रोग, कारण, लक्षण और बचाव। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव, संचालन सुभाष खन्ना का होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर सुनिएगा पंडित निखिल बैनर्जी का राग अहीर भैरव में सितार वादन। बाल गोपाल कार्यक्रम में हमारे नन्हे मुन्ने दोपहर 12 सुनेंगे विजय वीर सहाय की वार्ता कल कल छल छल बहती गंगा। आज इतवार है, मैं दिन में 1:15 पर सुनिए विमल अवस्थी की लिखी झलकी बरखा दूर तू ना जा, निर्देशन डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव का है। बुजुर्गों में होने वाली आम समस्याएं, ये विषय है डॉक्टर ए के त्रिपाठी से की गई भेंट वार्ता का, जिसे आप सुनेंगे अक्षवट कार्यक्रम में आज दिन में 1:00।

के 30 मिनट पर। भेंट करता होंगी नीना सोनकर। नींबू घास की उन्नत खेती, इस विषय पर सुनिएगा दीप चंद्र निषाद से की गई भेंटवार्ता विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 4 बजे संकल्प कार्यक्रम में सुना ना भूलें डॉक्टर कृष्ण दत्त से की गई भेंटवार्ता दिव्यांग जन का मानसिक स्वास्थ्य। भेंट करता होंगे राघवेंद्र सिंह। लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे आद्य प्रसाद सिंह प्रदीप से लोकभाषा अवधि में कहानी पाठ अनहियरिया माँ बिजुरी। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में सफलता की कहानी क्रम के अंतर्गत हमारे किसान भाई सुनेंगे कृषि विविधीकरण विषय पर अनिल कुमार सिंह से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम जिन्हें आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से 747 किलो हर्ट्स पर। मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ आप सुन रहे हैं, हमारे साथ हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा लेकर।

विविधा के सभी साथियों को वैशाली का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी छोटे से पंछी के पंख घायल हो जाएं, अगर कोई प्यासा जीव गर्मी में सड़क पर पानी के लिए भटक रहा हो, या हमारी पूजनीय गौ माता भूखी होकर कचरे में खाना ढूंढ रही हो, तो कैसा महसूस होता है? हमारे मन में एक हल्की सी टीस उठती है, है ना? यही भावना इंसानियत की पहचान है और यही हमें बाकी जीवों से अलग बनाती है। तो आज की विविधा में बात जीवों के प्रति दयालुता, हमारा नैतिक दायित्व की। दोस्तों, ये धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है, ये पेड़ पौधों, पंछियों, जानवरों और हर छोटे बड़े जीव की भी है। हम सब इस प्रकृति रूपी परिवार के सदस्य ही तो हैं, लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज आधुनिकता की दौड़ में इंसान धीरे धीरे संवेदनहीन होता जा रहा है। कई बार हम सड़क पर घायल जानवर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। कुछ लोग मनोरंजन के लिए जानवरों को परेशान करते हैं, कहीं पंछियों के घोंसले तोड़े जाते हैं तो कहीं पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से हमारे पंछी बेघर हो जाते हैं। नदियों नहरों में जहरीला पानी बहाकर हम मछलियों और जलीय जीवों को खत्म कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई हमारे घर को तोड़ दे, हमें भूखा प्यासा छोड़ दे या हमें चोट पहुंचाए, तो हमें कैसा लगेगा? जीव बोल नहीं सकते, लेकिन दोस्तों, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी डर सताता है और उन्हें भी प्यार की जरूरत होती है। भगवान बुद्ध ने सभी जीवों पर दया करने की शिक्षा दी थी। और दोस्तों, हमारे संस्कार भी तो हमें जीवों के प्रति करुणा का भाव सिखाते हैं। भारतीय संस्कृति में गाय, हाथी, नाग, बंदर, गरुण, यानी कि हर जीव को सम्मान दिया जाता है। कहते हैं, हर जीव मात्र में ईश्वर का वास होता है। महात्मा गांधी ने कहा था, किसी राष्ट्र की महानता और उसकी नैतिक उन्नति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां जीवों के साथ कैसा व्यवहार होता है। सोचिए, अगर हम इंसान थोड़ा सा दयालु बन जाएं, तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। 2022 में ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स, याद है आपको, तमिलनाडु के जंगल में एक नन्हा हाथी रघु अकेला घायल अवस्था में एक आदिवासी दंपत्ति बोमन और बेली को मिलता है। उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला। जानते हैं, रघु जब डरता, बोमन उसके कान के पास कुछ फुसफुसाता और जब बोमन बीमार पड़ता ना, तो रघु घंट

घंटों उसके पास खड़ा रहता। हाथी की भाषा नहीं जानते थे आदिवासी दंपत्ति, लेकिन करुणा की कोई भाषा नहीं होती। हमारे इंसान होने का सबसे सुंदर अर्थ है किसी जीव के लिए अपना दिल खोल देना। दोस्तों, यही है दयालुता की शक्ति, और जीवों के प्रति दयालुता हमारा नैतिक दायित्व भी है। ऐसी ही एक मार्मिक कहानी उड़ीसा की अनाथ बाघिन खैरी की है। खैरी जब बहुत छोटी थी अपनी माँ से बिछड़ गई। उस वक्त उड़ीसा के वरिष्ठ वन अधिकारी और उनकी पत्नी ने उसे अपने घर में पाला और उसकी देखभाल की। उसे ऐसा प्यार दिया जैसा कोई अपने बच्चे को देता है। धीरे धीरे खैरी इंसानों के बीच में घुल मिल गई। सोचिए, जिस बाघ से लोग डरते हैं उसी नन्ही बाघिन के मन में प्रेम और विश्वास पैदा हो गया। पता ही क्यों? क्योंकि प्यार की भाषा हर जीव समझता है दोस्तों।

हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, अहिंसा परमो धर्मः। कई शोध बताते हैं कि जो बच्चे जानवरों के साथ बड़े होते हैं ना, उनमें एम्पैथी यानी दूसरों का दर्द समझने की क्षमता अधिक होती है। वे बड़े होकर बेहतर इंसान बनते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जीवों से करुणा का व्यवहार हमारे नैतिक दायित्वों की नींव है। ये सिर्फ उन बेजुबानों की रक्षा नहीं है, ये हमारी अपनी इंसानियत की रक्षा है। तो क्यों ना ऐसा करें, गर्मियों में छत पर पंछियों के लिए पानी रख दें, सड़क पर अगर घायल जानवर को देखें तो उसे अस्पताल पहुंचाएं, अगर कोई पशु या जीव हमें भूखा दिखा तो उसे रोटी खिलाएं। जानते हैं ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। कभी कभी ना हमारा छोटा सा प्यार किसी जीव के लिए पूरी दुनिया बन जाता है। दोस्तों दया और मदद करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, तनाव कम होता है और हमारे अंदर से एक खुशी उत्पन्न होती है तो हम बहुत ही खुश महसूस करते हैं। आज जब पर्यावरण संकट बढ़ रहा है, पंछियों की कई प्रजातियां संपन्न हो रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, ऐसे में जीवों के प्रति दया हमारा नैतिक दायित्व बनता है। तो आइए संकल्प लें कि किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, पशु पंछियों के प्रति प्रेम और संवेदना रखेंगे, प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे और दूसरों को भी दया का महत्व समझाएंगे। जो इंसान जीवों पर दया करता है ना, वही सच्चे अर्थों में मानव है। तो आज की विविधा में बस इतना ही, वैशाली को दीजिए अनुमति, नमस्कार। ये आकाशवाणी है, हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार

0: कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
0: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में लिया हिस्सा, कहा देश के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाने के लिए भारत विश्व के कई देशों के साथ कर रहा साझेदारी। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की श्रम और सेवा योजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेले गए आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी लखनऊ, वाराणसी और आगरा सहित देश के 47 अलग अलग स्थानों पर कल रोजगार मेले का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है।
2: लखनऊ में 330 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र हमने दिए और मैं कह सकता हूँ यह माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करके इस तरह से महिलाओं के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम होता है।
0: वाराणसी के बरेका परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान 341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्रदान करती है।

0: आगरा में रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। श्री बघेल ने रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
1: मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश को जो उन्होंने सरकारी नौकरियों के रोजगार के लिए वादा किया था वो पूरा हुआ है। इसके अलावा भी जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तमाम स्टार्टअप के माध्यम से अन्य माध्यम से भी रोजगार दिए जा रहे हैं।
0: रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में श्रम एवं सेवा योजन विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने वर्तमान में 20 जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना की चर्चा करते हुए इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है जिसके चलते लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। बांदा प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान वाला जिला बना हुआ है। बांदा के अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
3: बांदा में जैसा कि टेम्परेचर लगातार उसी स्थिति में बना हुआ है तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन नित नए प्रयोग रोजाना कर रहा है। अभी तक हम लोग सब विभागों को उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनके कार्य हैं, वो उन्हें करने के लिए निर्देशित कर रहे थे।
0: उधर अयोध्या में कल तेज आंधी के साथ हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर में MP MLA सेशन कोर्ट ने कल सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा बरकरार रखी गई है लेकिन उनके जुर्माने की रकम को बढ़ाया गया है। महोबा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य नीरज रावत की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा निवर्तमान प्रदेश सचिव ब्रजराज सिंह और 30 अज्ञात समर्थक भी शामिल हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कल फिर वृद्धि की गई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। प्रदेश में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमतों में करीब 86 पैसे और डीजल में करीब 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी मौलवी सेकेंडरी तथा आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परिणाम कल घोषित किया गया। इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26% रहा। परिणाम में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। IPL मुकाबले में कल लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच खेला गया। इस मैच को पंजाब ने कप्तान श्रेयस अय्यर की शतकीय पारी के बल पर 7 विकेट से जीत लिया। पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर लखनऊ की टीम को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया।

0: लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 196 रन बनाए और पंजाब को जीत के लिए 197 रन का लक्ष्य दिया, जिसे उसने 18 ओवर में 3 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। इस हार के साथ आईपीएल के इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर समाप्त हो गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में लिया हिस्सा, कहा देश के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाने के लिए भारत विश्व के कई देशों के साथ कर रहा साझेदारी। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल, आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक, नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेले गए आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं 747 किलो हर्ट्स पर। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच के माध्यम से भी। और अब आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित निखिल बैनर्जी का सितार वादन। राग है अहीर भैरव।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित निखिल बैनर्जी का राग अहीर भैरव में सितार वादन। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, जिसे संपन्न करने का वक्त हो चला है, तो दीजिए अनुमति कार्यक्रम नमस्ते लखनऊ से। लेकिन श्रोताओं, बने रहिए 747 किलोहर्ट्ज़ पर और सुनते रहिए आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
4: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
5: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण

0: रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
2: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
6: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश

0: मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरतनाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर।

0: It's back to Ganucha.
1: Thank you, Syra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. H. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasthya Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against four accused in Nashik DCS sexual assault and religious conversion case. U.S. President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinder Veer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मुजाकिरात करेंगे। आयुष्मान भारत स्कीम जुलाई से मगरबी बंगाल में शुरू होने जा रही है। इसमें स्वास्थ्य साथी मुस्तफिदीन को भी शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र एसआईटी ने नासिक टीसीएस जिंसी ज्यादती और मजहब की तब्दीली के केस में चार मुलजिमान के खिलाफ फर्द जुर्म दायर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुस को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली समेत शिमाली वस्ती और मशरिकी भारत के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई की है। एथलेटिक्स में रांची में गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप में एक नए कौमी रिकॉर्ड के साथ मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा इलाकाई और आलमी अमन के अलावा सलामती से मुतालिक उमूर समेत दीगर मामलात पर भी वसी तर तबादले ख्याल करेंगे। वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड के वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत की गरज से 4 दिन के दौरे पर कल भारत पहुंचे। उन्होंने कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें दिफा, अहम टेक्नोलॉजीज, तिजारत और सरमायाकारी के अलावा तवानाई की फराहमी, कनेक्टिविटी, तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत बहुत से शोबों में दोतरफा तआवुन में ठोस पेशरफ्त के बारे में जानकारी फराहम की। जनाब मोदी ने जोर देते हुए कहा कि भारत और अमरीकी आलमी भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वजीर आजम ने अमन कोशिशों के लिए भारत की मुसलसल हिमायत का इरादा किया और मुजाकिरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ियात के पुरअमन हल की अपील को दोहराया। वजीर खारजा जनाब रूबियो ने मगरबी एशिया की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी उमूर पर अमरीकी मौकफ साझा किए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को मुनक़िद होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। एक आज़ाद और खुले हिंद बहरुल काहिल खित्ते के लिए क्वाड के विजन को मद्देनज़र रखते हुए वज़राए खारजा तरजीह शोबों में क्वाड के ताउन को आगे बढ़ाने के बारे में ख्यालात का तबादला करेंगे। क्वाड के जारी इकदाम पर पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे और भारत बहरुल काहिल खित्ते में हालिया पेशरफ्त और बाहमी तौर पर मुतल्लिका दीगर बैन अल-अक़वामी उमूर पर गौर करेंगे। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया और प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
2: तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल कल से भारतीय कारोबारी रहनुमाओं के एक वफ्द के साथ कनाडा के 3 रोजा दौरे पर होंगे। वजारत तिजारत ने मुत्तला किया है कि तिजारत, सरमायाकारी और भारत कनाडा जामे इक्तसादी शराकतदारी मुआहदे CEPA के मुजाकिरात को आगे बढ़ाने के लिए ओटावा और टोरंटो में दो तरफा मसरूफियात में हिस्सा लेंगे, जो इस दौरे का मरकजी महवर होगा। इस साल मार्च में कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी के दौरे भारत के दौरान टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर दस्तखत किए गए थे। मुजाकिरात का पहला दौर मार्च में वर्चुअल तरीके से

0: मुनाकिद किया गया था और दूसरा दौर 8 मई को ख़त्म हुआ था। इस दौरे के दौरान ओटावा में मुज़ाकिरात के अगले दौर का इनेकाद किया जाएगा। दोनों फरीक इस साल के आखिर तक एक तवाजुन और बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद CEPA को जल्द हतमी शक्ल देने की समत में काम कर रहे हैं, जिसका मुश्तरका मकसद 2030 तक दोतरफा तिजारत को 70 अरब कैनेडियाई डॉलर तक पहुँचाना है। मगरबी बंगाल में इस साल जुलाई से आयुष्मान भारत स्कीम का आगाज होगा। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल कोलकाता में सेहत के मरकजी वजीर JP नड्डा के साथ वर्चुअल वसीले से एक मीटिंग के बाद ये ऐलान किया। रियासती सेहत स्कीम स्वास्थ्य साथी के तहत पहले से मौजूद मुस्तफिदीन को आयुष्मान भारत स्कीम में जोड़ा जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के सिलसिले में एक मफाहमत नामे पर जून में नई दिल्ली में दस्तखत होंगे। जनाब अधिकारी ने कहा कि मगरबी बंगाल में PM जन औषधि केंद्रों की तादाद 117 से बढ़ाकर 469 करने के सिलसिले में मरकज को एक तजवीज भेजी गई है। वजीर आला ने यह भी कहा कि अलीपुर द्वार, कालिम्पोंग और जुनूबी दिनाजपुर में नए मेडिकल कॉलेजेस और शिमाली बंगाल के लिए एक नए एम्स के सिलसिले में तजावीज भी मरकजी हुकूमत को भेजी जा चुकी हैं। महाराष्ट्र में TCS फैसिलिटी के खिलाफ मुबैना तौर पर जिंसी ज्यादती और मजहब तब्दील कराने की कोशिश करने के मामले में नासिक की एक अदालत में 1500 सफात पर मुश्तमिल एक फर्द जुर्म दायर की गई है। SIT के चीफ संदीप मिटके के मुताबिक ये फर्द जुर्म 4 मुलजिमान दैनिक दानिश शेख, निदा खान, मतीन पटेल और तौसीफ अत्तार के खिलाफ कल दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले से मुतालिक 7 से 8 अफराद के खिलाफ इजाफी फर्द जुर्म अगले 3 से 4 रोज के दौरान दायर की जाएगी। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर JP नड्डा ने कहा है कि हिफ्जान सेहत के बुनियादी ढांचे के साथ सेहत और तिब्बी पेशेवर अफराद की तरबियत यकसां तौर पर अहम है। उन्होंने ये बयानात कल नई दिल्ली में मेडिकल साइंसेज में इम्तहानात के कौमी बोर्ड की तकसीम असनाद की 23वीं तकरीब से खिताब करते हुए कही। जनाब नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि डॉक्टरों को हिफ्जान सेहत के निज़ाम के सॉफ्टवेयर के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देनी चाहिए। वहीं बुनियादी ढांचे और दीगर सहूलियात को मुल्क के लिए हार्डवेयर के तौर पर काम करना चाहिए। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क के उभरते हुए तिब के मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन को एजाज देकर भारत अपने हिफ्जान सेहत के इको निज़ाम के मुस्तकबिल को एक शक्ल दे रहा है। मेडिकल साइंसेज में इम्तहानात के कौमी बोर्ड के बारे में बात करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि इस इंस्टीट्यूट ने एक मजबूत ब्रांड तामीर किया है जो कि हिफ्जान सेहत में पेशेवराना सलाहियत, मफाहमत और साख को पेश किया है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मरीज की देखभाल में और ज्यादा सहूलियात पैदा करने और उन्हें मुस्तहकम बनाने के लिए 11 नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हुकूमत वसी तर अवामी सलाह मशवरे के लिए VBG राम जी एक्ट 2025 के तहत जाब्तों का मसौदा शाये कर दिया है। देही तरक्की की वजारत ने कहा है कि कोई भी फर्दो फरीक, तंजीम या कोई इदारा अगले माह की 21 तारीख तक सलाह मशवरे के लिए जाब्तों के मसौदे पर अपने एतराजात या तजावीज पेश कर सकता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जीराम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट MG नरेगा 2005 की जगह ले ली है। इस कानून का मकसद एक माली साल में कानूनी रोजगार की जमानत 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। वजारत के मुताबिक जाब्तों के मसौदे सेक्शन 33 और इस कानून की दीगर मौजूदा शिकों के मुताबिक वज़े किए गए हैं। वजारत ने कहा है कि उबूरी शिकों के जाब्ते कौमी सतह की कायम कमेटी के जाब्तों, मरकजी ग्रामीण रोजगार गारंटी कौंसिल के जाब्ते, इंतजामी अखराजात के जाब्ते व शिकायत के इजाले के से मुतालिक जाब्ते समय जाब्तों के मसौदे सलाह मशवरे के लिए अवामी सतह पर रखे गए हैं। नए कानून में बरवक्त शफाफ और जवाबदेह उजरत की अदायगियों पर काफ़ी जोर दिया गया है। इस कानून में बेरोजगार भत्ते की भी गुंजाइश फराहम की गई है, बशर्ते के मुकर्रा वक्त के अंदर काम नहीं फराहम किया जाता। VBG राम जी एक्ट 2025 इस साल 1 जुलाई से निफाज के साथ तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में शुरू करने के लिए इस माह की 11 तारीख को नोटिफाई किया गया था। नई दिल्ली से अक्षित वैद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।

0: कि इसका मतलब ये नहीं कि अहम उमूर पर समझौते हो जाएंगे। उन्होंने अमरीकियों पर मुतजाद बयानात देने का इल्ज़ाम लगाया। ईरान 8 अप्रैल को जंगबंदी पर मुत्तफिक हुआ था और इसके बाद से वाशिंगटन और तेहरान एक तवील मुद्दती अमन मुआहदे पर बातचीत में मसरूफ हैं। वाशिंगटन में सदारती कॉम्प्लेक्स के नज़दीक गोलियों के चलने की आवाज़ सुनने के बाद व्हाइट हाउस के नज़दीक सिक्योरिटी के ताल्लुक से खौफ व हिरास पैदा हो गया। इससे कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की तरफ से फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। अमरीका की खुफिया सर्विस ने पेश आए इस वाक़े के नज़दीक एक मुश्तबा शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया और अफरा तफरी के दौरान एक राहगीर को भी गोली लगी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि वो इस वाकये की तफसीलात हासिल करने के बाद अवाम को जानकारी फराहम करेंगे। जमहूरिया कांगो में हुकाम ने बताया है कि मुल्क में इबोला वायरस के फैलने से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 204 हो गई है। मुल्क की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 204 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि इबोला वायरस के कुल 867 केसेस सामने आए हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के हिस्सों में सख्त गर्मी की लहर की पेशगोई की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की सूरत हाल रहने की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिन के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल और उड़ीसा में गर्म और मरतूब मौसम रहने का इम्कान है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में रात में गर्मी की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आसाम, मेघालय, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज अंडमान और निकोबार, जजायर, बिहार, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप और शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में गरज चमक का इम्कान है। गुरिंदरवीर सिंह ने 10.09 सेकंड के एक नए कौमी रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ 2026 के एथलेटिक्स फेडरेशन कप में मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता। उन्होंने अपने साबिका जाती बेहतरीन रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ा, जो 10.17 सेकंड का था और 10.16 सेकंड के कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वालिफिकेशन निशाने को आसानी से उबूर कर लिया। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड की टाइमिंग के साथ चांदी का तमगा हासिल किया, जबकि प्रणॉय प्रमोद ने 10.29 सेकंड में अपना मुकाबला जीतकर कांसे का तमगा हासिल किया। IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर की 101 रन की शानदार कारकर्दगी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। आज दो मैच होने हैं, जिसमें पहला मैच सहपहर 3:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान होगा और दूसरा मैच शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के भारत दौरे से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की इस सिलसिले में शह सुर्खी है, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, भारत अमरीका आलमी अमन व तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक नुमाया सुर्खी है, वजीर आजम ने 51,000 नौजवानों को तकर्रनामे तकसीम किए, कहा विकसित भारत में नौजवानों का अहम रोल। अखबार ने मुल्क में जारी शदीद गर्मी से मुतल्लिक सुर्खी लगाई है, अगले चंद दिनों में दिल्ली NCR समेत मुल्क के बड़े हिस्सों में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं। अखबार प्रताप ने भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जमान RP सिंह के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि संगीन माली और इंतजामी बहरान की तरफ बढ़ रहा है पंजाब।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मुज़ाकरात करेंगे। आयुष्मान भारत स्कीम जुलाई से मगरबी बंगाल में शुरू होने जा रही है, इसमें स्वास्थ्य साथी मुस्तफिदीन को शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र SIT ने नासिक TCS जिंसी ज्यादती और मजहब की तब्दील के केस में 4 मुलजिमान के खिलाफ फर्द जुर्म दायर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाय हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली समेत शिमाली वस्ती और मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई की है। और एथलेटिक्स में रांची में गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप में एक नए कौमी रिकॉर्ड के साथ मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरनामा

0: खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। समय हुआ है सुबह के 8:45 का और ये समय होता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत का, जिसमें हम सुनवाते हैं आपके ईमेल पर अनुरोध किए हुए फरमाइशी फिल्मी नगमे। अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपने पसंदीदा गीतों को तो हमें ईमेल लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। आप सभी श्रोताओं को वैशाली का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज सबसे पहले जो हमने मेल लिया है इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। और दुर्गा कॉलोनी हांसी से मेल भेजा है राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, बब्बू, डब्बू ने और इन्होंने लिखा है आपको प्यार भरा नमस्कार। आपका नमस्कार हम स्वीकार करते हैं। ये है गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार ढूंडी, पुष्पेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार और उनके परिवार के और भी सदस्य हैं। और एक मेल है ये भेजने वाले श्रोता हैं कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज और सेक्स्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से मेल भेजा है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर और डॉक्टर अमनदीप ने। और आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कुली नंबर 1 फिल्म का गीत जिसे गाया है पूर्णिमा और कुमार सानू ने।

गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हमें मेल लिख भेजा है। पब्लेश डैनी और मनीष पवार ने रामदेवरा से मेल भेजा है। दिनेश चौहान और उनके परिवार के सदस्यों ने डांगरी से मेल है बाबू राम जी का। और खलीफों की बावड़ी से मेल है खुदा बख्श खलीफा और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों का। और इन्होंने नमस्कार लिखा है, साथ में अपनी फरमाइश भी लिख भेजी है। और ये जो मेल भेजने वाले श्रोता हैं, ये हैं ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और इनके परिवार के सभी सदस्य। एक मेल और है, इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर, कमरुन्निशा, शबिस्ता, नस्ती, पलक, लुबना और यश मंजूरी का। और इन्होंने संदेश भी लिखा भेजा है कि पानी बचाएं, जीवन बचाएं, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। आपने बहुत ही अच्छा संदेश लिख भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और एक और मेल है, इसे भेजने वाले ही हमारे श्रोता हैं बम्हना खेड़ा जिला हरदोई से, ये हैं नेहा वर्मा जी, अर्पिता, अंजलि, सुधाकर, कोमल, सिया, राम, गौरपुर से इन्होंने मेल भेजा है। और आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कुछ ना कहो फिल्म का गीत, जिसे गाया है कविता कृष्णन मूर्ति, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ में।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
2: पर दादी आपके नाम?
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
2: क्या
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत में। और अब जो मेल हमने लिया है चंडीगढ़ सिटी से, इसे भेजा है सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। और इन्होंने हार्दिक अभिनंदन नमस्कार लिखा है, आपको भी प्यार भरा नमस्कार हमारी तरफ से। और ग्राम पंचायत काईमऊ कुआरियापुर सैंडी हरदोई उत्तर प्रदेश से मेल भेजा है मुदित विजेंद्र अनवी सुनीता शोभा दीपा और रामफेरे कपिल प्रांजल रमा और कृष्णा जी ने। और इन्होंने अपने गीत की फरमाइश लिख भेजी है। जलालाबाद वेस्ट से मेल है सुरेश पूनम विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा जी का। इन्होंने भी अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए हमें मेल लिख भेजा है। और ये हैं सराय सहारनपुर से अनवर साबरी मुदस्सिर मुजक्किर जरीफ अंसारी शन्नो और इनके घर परिवार के बहुत सारे सदस्य इन्होंने मेल भेजा है। एक मेल और है इसे भेजने वाले हमारे श्रोता

हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील, कमल, दीपिका, गाव्या, सुच्चा सिंह पाठक, इन सभी ने हमें मेल लिख भेजा है और सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और साथी की आवाज़ों में ड्रीम गर्ल फिल्म का प्यारा सा गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से मेल भेजा है।

राम शरण, साहिल, मंजू, रंजना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने और अपनी फरमाइश का ये गीत सुनना चाहते हैं। एक और मेल है मालियान सरधना मेरठ से, अनिल, संयम जैन जी, मुस्कान, मास्टर जीवियम और इनके बहुत सारे मित्र बंधुओं का। इन्होंने भी अपनी फरमाइश हमें लिख भेजी है। और अगला जो मेल हमें भेजने वाले श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है नमस्कार, तो आपको भी प्यार भरा नमस्कार। और ये लिखते हैं कि आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम इन्हें बेहद पसंद आते हैं और ये अपने मेल को बराबर भेजते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हैं संचित, सुधाकर, प्रशांत, प्रथमेश, प्रणाली, सानवी, कल्पना और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य, इन्होंने मेल भेजा है और नमस्कार भी लिखा है। आपका नमस्कार स्वीकार करते हैं और आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं बंदिश फिल्म का गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

महाराष्ट्र भिंड शहर से मेल भेजा है संगीता साक्षी, नंदकिशोर, अंजलि बाला साहेब और इनके बहुत सारे मित्र बंधुओं ने, और इन्होंने अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए हमें मेल भी लिख भेजा है। और ये हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार और अब्दुल हक जियाउल हक। भाटापारा छत्तीसगढ़ से मेल भेजा है सोहन जोशी और पायल जोशी जी ने। और गुजरात गांधी ग्राम से मेल है प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी का। और एक मेल और हमारे

श्रोता हैं, इन्होंने लिख भेजा है। ये हैं दत्रेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा और इन्हें इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। और इनके साथ साथ एक और मेल है राजकोट गुजरात से, रश्मि झरना, भरत कुमार और इनके परिवार के और भी सदस्यों का। और दुल्हापुर ग्राम उत्तर प्रदेश ज़िला मुरादाबाद से मेल है मुकेश, शीतल, सोनू, काजल, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, बलबीर सिंह, मोहिनी, ऋतिक और इनके बहुत सारे मित्र बंधुओं का। आप सभी ने मेल भेजा है और आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज़ में सुनना चाहते हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म का ये गीत।

इस गीत को सुनने के लिए एक और ईमेल भेजा है हमारे श्रोता है, ये ग्राम नसीरपुर सैंडी हरदोई उत्तर प्रदेश से अनुज राजपूत, अनमोल, प्रियल राजपूत और रोली उमेश राजपूत ने।

0: चला है कि हम आपसे अनुमति लें कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत से, तो दीजिए वैशाली को अनुमति, आपको प्यार भरा नमस्कार। 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के आम जनजीवन पर प्रभाव और बचाव के लिए प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
2: प्रदेश भीषण गर्मी और लू के चपेट में है। मई के महीने में प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जबकि बुंदेलखंड का बांदा लगातार देश के सबसे गर्म स्थानों में शामिल है। यहां अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार तक दर्ज किया गया। वहीं प्रयागराज, हमीरपुर, झांसी, आगरा और जालौन जैसे जिलों में भी तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि साल दर साल जलवायु में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण गर्म दिनों की संख्या बढ़ रही है। बांदा में ज्यादा तापमान उसकी भौगोलिक स्थितियों के कारण है।
3: तापमान बढ़ने की वजह से गर्म दिनों और गर्म रातों की संख्या बढ़ रही है, जबकि ठंडी का मौसम जो है वो श्रिंक हो रहा है। बांदा जो या प्रदेश का पूरा ही दक्षिणी इलाका जो है वो फेवरेबल रीजन होता है ज्यादा तापमान के लिए। उसके कई सारे भौगोलिक कारण भी हैं और कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। बांदा जो है वो जलवायवी तौर पर भी सबसे गर्म रहने के लिए उसकी जलवायु ही फेवर करती है। लेकिन अगर इस साल की परिप्रेक्ष्य में बात करें कि जैसे मैंने बताया कि उत्तरी इलाके में ज़्यादा तापमान होंगे, पूरे पूर्वांचल में ज़्यादा तापमान होंगे, तो इसके लिए दो तीन फैक्टर होते हैं। जो ग्लोबल फोर्सिंग है या रिमोट फोर्सिंग हम बोलते हैं, वो इनसो होती है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन।
2: अत्यधिक तापमान के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार लोगों का खास ध्यान रखना होता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और हीट वेव को देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने भी खास तैयारी की है। अस्पतालों में अलग से इंतजाम करने के साथ ही लोगों को गर्मी से बचाव के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में गाजियाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग ने सभी CHC और सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त बेड का इंतजाम किया है। गाजियाबाद के CMO अमित विक्रम ने बताया कि विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि गर्मी में अनावश्यक बाहर ना निकलें, बाहर निकलने से पहले पर्याप्त पानी का सेवन करें और सर ढककर ही बाहर निकलें।
4: हमारे यहाँ जनपद गाजियाबाद में तीन बड़े जनपदीय लेवल के चिकित्सालय हैं, तीनों में 10-10 बेड्स का हमने कोल्ड रूम थे, उसकी तैयारियां हो चुकी है। सभी जगह पे ORS और जिंक का टैबलेट्स और सॉल्यूशंस वगैरह सब है और पानी पीने का साफ पेयजल और कूलर्स वगैरह सब जगह इंस्टॉल्ड है।
2: बुंदेलखंड के जिलों में भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आवश्यक दवाओं, ORS और ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। टीमें लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई हैं।
5: इस समय है कि काफी भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके बढ़ने की ही संभावना है। मेरा सभी लोगों से सबसे पहले तो अनुरोध है कि जो विशेषकर समय जो होता है गर्मी का, वो अपना सुबह 9-10 बजे से लेकर जो शाम के 4-5 बजे तक रहता है, अगर कोई विशेष कार्य हो तो ही आप इस समय अपने घरों से बाहर या अपने जो कार्यस्थल है उससे बाहर निकलें, और जब भी खुले में निकलें या कहीं भी जाएं तो विशेषकर अपने साथ पानी की उचित व्यवस्था या इलेक्ट्रोलाइट की या नींबू पानी इत्यादि इस तरीके का अपना ध्यान जरूर रखें। अच्छे से अपने खान पान का ध्यान रखें।
2: भीषण गर्मी के कारण इस बार प्रदेश में बिजली की मांग ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। गर्मी में लोगों को परेशानी न हो इसे लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्नाव में विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए विभाग ने सरैया, शुक्लागंज और गंगा घाट टाउन सब स्टेशनों पर लगे हुए बड़े ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए जंबो कूलर लगाए हैं। यहाँ SDO राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि लोड मैनेजमेंट और लो वोल्टेज की समस्या से निपटने के लिए पुराने ट्रांसफार्मरों को हटाकर उच्च क्षमता वाले पावर ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं।

0: क्षेत्रों में लगे हैं उनके रात में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और जो कमियां दिख रही हैं कि वातावरण में कमियां हैं तो उन कमियों में दिन में रहते हुए रोस्टिंग टाइम में उनको दूर कराया जा रहा है जिससे उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति मिलती रहे।
1: शहरों में गर्मी ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ते तापमान ने लोगों की दिनचर्या और कामकाज को प्रभावित किया है। खेतों में काम करने वाले किसान हो, मजदूर वर्ग या पशु, गर्मी का असर सब पर दिख रहा है। दोपहर में अधिक तापमान के कारण किसान खेतों में सुबह और शाम ही काम के लिए जा पा रहे हैं। निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों और दिहाड़ी श्रमिकों को तेज धूप में काम करने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रावस्ती की जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों से भी दोपहर के समय घरों में ही रहने की अपील की है और बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बिजली के विशेष प्रबंध प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं।
2: हीट वेव के दृष्टिगत जनपद श्रावस्ती में सभी सीएचसीज पर जिला अस्पताल में कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई है और नगर क्षेत्रों में गांव क्षेत्रों में जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है और नगर पालिका को बताया गया है कि जितने भी वाटर कूलर्स हैं वो ठीक चलते हैं और पोखरों के लिए तालाब के लिए भी पंचायती राज से कोऑर्डिनेट करके व्यवस्था की।
1: गर्मी का असर केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है बल्कि पशु पक्षी भी इससे गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तेज धूप और जल स्रोतों के सूखने से पशुओं को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, दूध देने वाले पशुओं के उत्पादन में भी कमी आ सकती है। इन स्थितियों को देखते हुए प्रदेश के चिड़ियाघरों लॉयन सफारी में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। इटावा सफारी पार्क में वन्य जीवों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उप निदेशक विनय सिंह ने बताया कि सफारी क्षेत्र में फॉगर शॉवर से तापमान कम किया जा रहा है। भालू लेपर्ड हाउस में कूलर लगाए गए हैं तो हिरणों के तालाब ट्यूबवेल से भरे जा रहे हैं। गर्मी के कारण सफारी का समय भी बदलकर सुबह 6:30 बजे कर दिया गया है।
3: गर्मी और लू से बचाने के लिए जो हमारे हाउस हैं उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं तो अंदर ताकि कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। बाहर जो क्राल एरिया है इसमें फॉगर लगे हुए हैं तो इनके चलाने से जो हवा में नमी है वो बनी रहती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। साथ ही धूप से बचाने के लिए सफारी क्षेत्र में प्लस जहां पे भी संभव होता है वहां पे छप्पर लगाए जाते हैं फूस के ताकि उनको बचाया जा सके। डियर एंटीलोप सफारी में है उनको पर्याप्त तालाब जो भी बने हुए हैं सफारी क्षेत्र के अंदर उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी रहे सुनिश्चित किया जाता है। तैयारियां की गई हैं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि वन्य जीवों को गर्मी और लू से बचाया जाए।
1: गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच धर्मनगरी अयोध्या में राम भक्तों और भगवान दोनों की सेवा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि दर्शन मार्ग पर कैनोपी और टेंट लगाए गए हैं। जहां जहां नए दर्शन स्थल बनाए गए हैं वहां विशेष मैटिंग और कारपेट बिछाए गए हैं ताकि भक्तों के पैर गर्म जमीन से न जलें। दर्शन के बाद बाहर निकलने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़े हॉल तैयार किए गए हैं जहां बैठने, चिकित्सा और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
4: श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ने जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार जहाँ से श्रद्धालु दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं उसके नजदीक एक ऐसा शेड निर्माण किया जिसको तीर्थ यात्री सेवा केंद्र नाम दिया है। वहाँ पर छाया है, लगभग 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, व्यवस्थाएं हैं नित्य उपयोग की वो उपलब्ध है, वहीं से व्हील चेयर मिलती है, वहीं से उनके पास आदि की व्यवस्था होती है, जल पीने की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है। वहां से हमारे भक्तगण निकलते हैं तो कैनोपी प्रारंभ हो जाती है, किसी को भी धूप में चलने की आवश्यकता नहीं है, 2-4 कदम की बात छोड़ दें तो।
1: बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं की अटूट आस्था निरंतर बनी हुई है। प्रतिदिन औसतन 1.5 लाख श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में मंदिर न्यास द्वारा धाम परिसर में विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के SDM शंभू शरण ने बताया कि धाम परिसर के विभिन्न स्थलों पर शुद्ध RO वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर ORS घोल और ग्लूकोज की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
5: जगह जगह पे वाटर कूलर लगाए गए हैं ताकि ठंडे पानी मिल सके। जहाँ पे वाटर कूलर नहीं है वहाँ पे बड़े बड़े मटकों में ठंडे जल रखवाया गया है। कई जगहों पे ORS घोल और ग्लूकोज की भी व्यवस्था है। उनके सर पे छाया रहे इसलिए धाम में हर जगह पे जर्मन हैंगर और टेंसाइल स्ट्रक्चर लगाया गया है।
1: साल दर साल बढ़ती गर्मी और लू मौसम में हो रहे बड़े बदलावों का न केवल बड़ा संकेत है बल्कि ये चेतावनी भी है कि हमें जल संरक्षण, हरित

0: क्षेत्र बढ़ाने, वर्षा जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण जैसे उपायों पर गंभीरता से काम करना होगा। जागरूकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही बढ़ते तापमान और उसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है।
1: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे, प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के आम जनजीवन पर प्रभाव और बचाव के लिए प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
2: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। अब आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।

हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से ही बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं किस्सा चार दरवेश। प्रेजेंटर हैं शादिया खान, पेशकश आसिफ इकबाल की है। किस्सा चार दरवेश का आज सुनेंगे पहला भाग।

शाम को परी चांद जैसे हुस्न और शहाना लिबास में निकली। दरवेश दौड़ कर पास गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, मगर परी नाराज थी और बोली, 100 तोड़े अशरफी लो और अपने वतन चले जाओ। दरवेश की आंखों में आंसू आ गए और बोला, अगर माल की लालच होती तो जानो माल कुर्बान न करता। परी ने सर्द लहजे में कहा, चुप रहो, तुम्हारी खिदमत याद है, मगर अब अपना रास्ता लो। दरवेश रोता हुआ बोला, मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मंजिल कभी न मिले। दरवेश इश्क व जुदाई के गम में इस कदर निढाल हो चुका था कि उसका चेहरा पहचाना न जाता था। एक बुजुर्ग ने उसकी हालत देखकर सबब पूछा तो दरवेश ने अपनी पूरी दास्तान सुना दी। बुजुर्ग को उस पर रहम आया और उसे साथ लेकर शहजादी के पास गए, मगर शहजादी ने इब्तिदा में उससे मिलने से इनकार कर दिया। ख्वाजा सिरा ने निहायत अदब से शहजादी को दरवेश की बेबसी और खस्ता हाली का हाल सुनाया और उस पर रहम करने की दरख्वास्त की। शहजादी ने पहले उसे दारुशिफा में रखने का हुक्म दिया, फिर हकीमों को बुलाया गया। मुआयने के बाद एक हकीम ने कहा कि इश्क का

तुम्हारी खिदमत याद है, मगर अब अपना रास्ता लो। दरवेश रोता हुआ बोला, मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मंजिल कभी न मिले। दरवेश इश्क व जुदाई के गम में इस कदर निढाल हो चुका था कि उसका चेहरा पहचाना न जाता था। एक बुजुर्ग ने उसकी हालत देखकर सबब पूछा तो दरवेश ने अपनी पूरी दास्तान सुना दी। बुजुर्ग को उस पर रहम आया और उसे साथ लेकर शहजादी के पास गए, मगर शहजादी ने इब्तिदा में उससे मिलने से इनकार कर दिया। ख्वाजा सिरा ने नहायत अदब से शहजादी को दरवेश की बेबसी और खस्ता हाली का हाल सुनाया और उस पर रहम करने की दरख्वास्त की। शहजादी ने पहले उसे दारुशिफा में रखने का हुक्म दिया, फिर हकीमों को बुलाया गया। मुआयने के बाद एक हकीम ने कहा कि ये इश्क का मारा हुआ है और उसका इलाज सिर्फ वसल महबूब में है। आखिरकार शहजादी दरवेश की मोहब्बत, वफादारी और इखलास से मुतासिर हो गई और उसे कबूल कर लिया। उसी रोज खामोशी से उन दोनों का निकाह भी पढ़ा दिया गया, मगर निकाह के बाद भी दरवेश के दिल में कई सवाल बाकी थे। वो जानना चाहता था कि शहजादी दरअसल कौन है और उसकी जिंदगी के पुरअसरार वाकयात की हकीकत क्या है। जब उसने इन सवालात का जिक्र किया तो शहजादी नाराज हो गई और उसे याद दिलाया कि उनके दरमियान ये शर्त तय हुई थी कि वो उसके मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। दरवेश ने नरमी से माजरत की, मगर साथ ही ये भी कहा कि जब दो लोग उम्र भर के साथी बन जाएं, तो उनके दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहना चाहिए। शहजादी ने दरवेश से राजदाना अंदाज में अपनी सरगुजश्त बयान करते हुए कहा कि वो दमिश्क के अजीम बादशाह की इकलौती बेटी है। एक रोज अचानक उसकी तबीयत मुजमहिल हो गई। ख्वाजा सिरा के मशवरे पर एक खुशरू लड़का शरबत लेकर हाजिर हुआ। शरबत पीने और उस लड़के की शोखिया गुफ्तार से शहजादी की तबीयत बहाल हो गई। चुनाचे उसने इनाम व इकराम देकर उसे मुस्तकिल अपने पास रख लिया। रफ्ता रफ्ता शहजादी को उस लड़के से ऐसी मुसीबत हो गई कि एक लम्हा भी उसे नजरों से ओझल न होने देती। जब मालूम हुआ कि उसका उस्ताद उसकी तमाम कमाई छीन लेता है, तो शहजादी ने उसे उम्दा लिबास, बेहतरीन तरबियत दिलाई। वक्त गुजरने के साथ ये ताल्लुक गहरी मोहब्बत में बदल गया, यहाँ तक कि शहजादी उसके बगैर बेकरार रहने लगी। मगर ख्वाजा सिरा बार बार तंबीह करता रहा कि अगर ये राज आश्कार हो गया तो बड़ी रुसवाई और बदनामी का सबब बनेगा। ख्वाजा सिरा ने शहजादी को खबर दी कि वो नौजवान अब सिने बुलूग को पहुंच चुका है, उसके चेहरे पर जवानी के आसार नुमायां होने लगे हैं, इसलिए दरबानों और अहले महल ने उसका अंदर आना बंद कर दिया है। ये खबर सुनकर शहजादी सख्त मुस्तरिब और गमजदा हो गई, गोया उस पर कयामत टूट पड़ी हो। आखिरकार उसने ख्वाजा सिरा को हुक्म दिया कि उस नौजवान के लिए एक शानदार जवाहरात की दुकान कायम की जाए। कुछ ही अरसे में उसकी तिजारत इस कदर मशहूर हो गई कि उमरा और बादशाह तक अपनी कीमती खिलतें और जवाहर वहीं से खरीदने लगे। वो नौजवान यूसुफ था। शहजादी ने खुफिया तौर पर एक सुरंग भी हवेली से महल तक बनवा दी, जिसके जरिए यूसुफ हर शब उससे मुलाकात के लिए आता और सुबह होने से पहले वापस चला जाता। मुद्दतों यही सिलसिला जारी रहा। एक दिन यूसुफ मुलाकात के लिए ना आया तो शहजादी बेहद परेशान हुई। तहकीक पर मालूम हुआ कि यूसुफ एक बाग खरीदना चाहता है, मगर उस बाग के साथ एक बांदी को भी खरीदना लाजमी है और वो दोनों की कीमत अदा करने से कासिर है। शहजादी ने बिला तामुल बाग और बांदी दोनों खरीद लेने का हुक्म दे दिया। उसके बाद यूसुफ और शहजादी की मुलाकातों का सिलसिला बदस्तूर कायम रहा। एक रोज शहजादी ने उस बाग को देखने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसके लिए यूसुफ इस कदर बेताब रहता था। वो दाई के साथ वहां पहुंची तो बाग की दिलकश फिजा, सरसब्ज दरख्त, रंगीन फूल और बहती नहरों ने उसका दिल मोह लिया। शाम ढले यूसुफ नहायत अदब से मिला और उसे एक रोशन व आरास्ता बारादरी में ले गया, जहां चरागा, आतिशबाजी और चांदनी ने महफिल को और भी दिलनशी बना दिया। इसी दौरान एक बसूरत बांदी शराब लेकर हाजिर हुई। शहजादी ने नागवारी से उसके बारे में पूछा तो यूसुफ ने बताया, ये इसी बाग के साथ खरीदी गई बांदी है। कुछ ही देर में यूसुफ नशे में इस कदर बेखुद हो गया कि आदाब हुदूद फरामोश कर बैठा और बांदी भी बेहयाई पर उतर आई। शहजादी दिलगरफ्ता होकर वहां से उठने लगी, मगर यूसुफ ने मिन्नत समाजत करके उसे रोक लिया। उसे खूब समझ आ गया था कि अगर

वह शहजादी इस हालत में यहाँ से गई तो कल सुबह उसकी खैरियत नहीं होगी। मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर शहजादी भी रुक गई। शहजादी बेहोश हो गई। होश आया तो देखा कि यूसुफ तलवार लिए उसकी जान लेने पर आमादा है, बल्कि अपनी दानिस्त में मार ही दिया था समझो। परी ने गिड़गिड़ाकर आजजी के साथ कहा, मुबादा हो कोई जालिम तेरा गरेबा गीर, मेरे लहू को तू दामन से धो, हुआ सो हुआ। इसके बाद शहजादी बेहोश हो गई। यूसुफ ने मुर्दा समझकर संदूक में बंद किया और किले की दीवार के नीचे लटका दिया। शहजादी आगे कहती है, ये सब मेरी किस्मत में लिखा था। अगर मैं खूबसूरत चेहरों की दीवानी ना होती तो वो बदबख्त मेरी जिंदगी का दुश्मन न बनता। अल्लाह ने ये काम किया कि तुम्हें वहां पहुंचा दिया, वरना मैं मर चुकी थी। वहां से दरवेश ने उस संदूक को निकाला, जख्मों का इलाज किया और परी को नई जिंदगी मिली। शहजादी ने दरवेश से निहायत ममनूनियत के साथ कहा कि उसने जिस खुलूस और जाफिशानी से उसकी खिदमत की, उसके सिले में उसने अपने खजांची सैयदी बहार के नाम खत लिखा था ताकि वालदा को अपनी खैरियत की इत्तला दे सके। चुनाचे शहजादी ने दरवेश को यूसुफ से दोस्ती बढ़ाने का मशवरा दिया और फिर दावत के बहाने यूसुफ और उसकी बांदी को बुलाकर उनसे इंतकाम ले लिया। उसके बाद उसने अपनी पूरी सरगुजश्त इब्तिदा से इंतहा तक दरवेश के सामने बयान की और कहा कि अब इस शहर में रहना दोनों के हक में मुनासिब नहीं है। रात के आखिरी पहर दो तीज रफ्तार घोड़े तैयार किए गए। शहजादी ने मर्दाना लिबास पहना, हथियार बांधे और दरवेश के साथ शहर छोड़ दिया। सफर के दौरान उसने दरवेश से कहा कि उसने उसकी खातिर माल, सल्तनत और वालिदैन सब कुछ छोड़ दिया है, कहीं वो भी बेवफाई ना कर दे। दरवेश ने वफादारी का यकीन दिलाते हुए कहा कि हर शख्स यूसुफ जैसा नहीं होता। सफर करते करते दरवेश और शहजादी एक ऐसे वीरान मैदान में पहुंचे जहां दूर दूर तक आबादी या इंसान का कोई निशान न था। इसी दौरान उन्हें एक अजीम दरिया दिखाई दिया, जिसके किनारे खड़े होकर उन्होंने देखा कि हर सिमत पानी ही पानी फैला हुआ है और पार जाने की कोई सूरत नजर नहीं आती। शदीद थकन और भूख प्यास से निढाल शहजादी ने आराम की ख्वाहिश जाहिर की। करीब ही एक घना पीपल का दरख्त था, दोनों उसके साये में बैठ गए। दरवेश ने बहुत गौर किया मगर न कोई कश्ती दिखाई दी और न किसी आदमी का पता चला। आखिर वो शहजादी को वहीं छोड़कर किसी सवारी या कश्ती की तलाश में निकल गया, लेकिन जब मायूस होकर वापस आया तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि शहजादी दरख्त के नीचे मौजूद ही न थी, गोया अचानक गायब हो चुकी हो। शहजादी के अचानक गायब हो जाने के बाद दरवेश दीवानों की तरह उसे ढूंढने लगा। कभी दरख्तों पर चढ़ता, कभी जंगलों में भटकता, मगर उसका कोई सुराग न मिला। आखिर उसके दिल में ये ख्याल बैठ गया कि शायद किसी जिन ने शहजादी को उठा लिया है। गम व मलाल में उसने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली, कपड़े फेंक दिए और फकीराना जिंदगी गुजारने लगा। दिन भर बियाबानों में शहजादी को तलाश करता और रात जहां थक जाता वहीं पड़ा रहता, मगर उसकी तमाम जस्तजू बेसूद साबित हुई। आखिरकार मायूसी से तंग आकर वो एक पहाड़ पर चढ़ गया और इरादा किया कि खुद को वहां से गिराकर जान दे दे। अभी वो ये सोच ही रहा था कि अचानक एक सब्जपोश नकाबदार सवार नमूदार हुआ और उसने दरवेश का हाथ थाम लिया। सवार ने उसे खुदा की रहमत से नाउमीद न होने की नसीहत की और बताया कि 3 दिन की मसाफत पर 3 और दरवेश मौजूद हैं जो इसी तरह की मुसीबतों में गिरफ्तार हैं। फिर उसने पेशगोई की कि जब सब इकट्ठे होकर बादशाह आजाद बख्श से मिलेंगे तो उनकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। दरवेश ने अकीदत से उस सब्जपोश सवार की रकाब को बोसा दिया और आजिजी से उसका नाम पूछा। सवार ने जवाब दिया कि वो मुर्तजा अली हैं और उनका काम ही मुसीबत जदों की मदद करना है। ये कहकर वो नजरों से गायब हो गए। इस बशारत से दरवेश के दिल को नई उम्मीद मिली और वो कुस्तुंतुनिया की तरफ रवाना हो गया। रास्ते की बेशुमार तकलीफें बर्दाश्त करता हुआ आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। दरवेश ने अपनी दास्तान खत्म करते हुए कहा कि अब जरूरत इस बात की है कि उनकी मुलाकात बादशाह आजाद बख्श से हो जाए ताकि सब मिलकर अपनी मुराद पा सके। यूं पहले दरवेश की दास्तान अपने अख्तिताम को पहुंचती है। अगली किस्त

0: में दूसरे दरवेश की हैरत अंगेज सरगुजश्त पेश की जाएगी। तब तक के लिए अपनी मेजबान शाज़े खान को इजाजत दीजिए। आदाब।
1: उर्दू कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दास्तान चार दरवेश। प्रेजेंटर थी शाज़िया खान, पेशकश आसिफ इकबाल की थी। आज का उर्दू प्रोग्राम आकाशवाणी के लखनऊ मरकज की पेशकश था। आज आप सुन रहे थे इसका पहला भाग। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज सुनेंगे पूजा तोमर के गाए अवधि लोकगीत। पूजा तोमर के स्वर में प्रस्तुत है देवी गीत।

पूजा तोमर के स्वर में अभी आपने देवी गीत सुना। अब प्रस्तुत है सुहाग गीत स्वर पूजा तोमर का।

सुहाग बर से बनी तोहरे अंगनवा। अभी आप सुन रहे थे पूजा तोमर के स्वर में सुहाग गीत। इसी के साथ लोक रंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आपको बता दें, पूजा तोमर के गाए अवधि लोक गीतों का आप आनंद ले सकते हैं लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्स पर। और अब आइए सुनते हैं आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम। आप सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज सबसे पहले सुनेंगे संजू मिश्रा के स्वर में गंगा गीत, और इसे सुनने के लिए

पत्र लिख भेजा है बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ प्रदेश से रामचंद्र मखीजा, शंकरलाल, राहुल कुमार, दीपक, अमित, सविता, बेबी स्वाधी और पूरा मखीजा परिवार ने।

अभी आप सुन रहे थे संजू मिश्रा के स्वर में गंगा गीत और अब प्रस्तुत है डॉक्टर अंजू भारती के स्वर में कहरा। इसे सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है हमारे श्रोता ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर ने। भाटापारा दतरेंगी से पत्र भेजा है द्वारिका प्रसाद, किशोर कुमार और दीपक वर्मा ने। आपकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं डॉक्टर अंजू भारती के स्वर में कहरा।

0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अंजू भारती के स्वर में कहरा। इसी के साथ आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। 10:20 से पुनः सुन सकेंगे आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी करने वाले संदिग्ध को सीक्रेट सर्विस ने मार गिराया। कांगो में इबोला संक्रमण से मरने वालों की संख्या 204 हुई। अफ्रीकी संघ ने इसके और देशों में फैलने की चेतावनी दी। और टेनिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
1: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
2: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
3: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: भारत ने पेक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के साथ प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया है कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $70 अरब तक पहुँचाना है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के सुरक्षा जांच चौकी पर गोलीबारी करने वाले व्यक्ति की पुलिस जवाबी

0: कार्रवाई में मौत हो गई है। सीक्रेट सर्विस ने बताया है कि अधिकारियों की जवाबी फायरिंग में घायल होने के बाद संदिग्ध को अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसकी मृत्यु हो गई। कानून प्रवर्तन एजेंसी ने बताया है कि 17वीं स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू क्षेत्र में मौजूद व्यक्ति ने सुरक्षा जांच चौकी पर गोलीबारी की। संदिग्ध की पहचान 21 वर्षीय युवक के रूप में हुई है। घटना में एक नागरिक भी घायल हुआ है। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उसे संदिग्ध की गोली लगी या अधिकारियों की फायरिंग से चोट पहुंची। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। कांगो में इबोला प्रकोप के कारण अब तक 204 लोगों की मौत हो गई है। अफ्रीकी संघ के स्वास्थ्य एजेंसी ने कल चेतावनी दी थी कि कांगो और युगांडा के अलावा अफ्रीका के अन्य देशों में भी इबोला वायरस फैलने का खतरा है। रेड क्रॉस ने बताया है कि कांगो में उनके 3 स्वयंसेवकों की भी इस वायरस के कारण मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र में परमाणु अप्रसार संधि NPT की समीक्षा के लिए आयोजित 4 सप्ताह का सम्मेलन बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गया। सम्मेलन के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र में वियतनाम के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत डो युंग वियत ने इस पर निराशा व्यक्त करते हुए संधि के भविष्य प्रभावशीलता को लेकर चिंता जताई। श्री वियत ने कहा कि उन्हें इस बात का खेद है कि सम्मेलन किसी अंतिम निष्कर्ष दस्तावेज पर सहमति नहीं बना सका। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने भी सम्मेलन में सहमति बनने पर निराशा व्यक्त की। परमाणु अप्रसार संधि के पक्षकार देशों का 11वां समीक्षा सम्मेलन 27 अप्रैल से 22 मई तक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया था। इस बीच रूस ने कहा है कि परमाणु अप्रसार संधि NPT के समीक्षा सम्मेलन में अंतिम दस्तावेज को मंजूरी नहीं मिल सकी, क्योंकि कुछ मुद्दों पर अमरीका के कड़े रुख के कारण सहमति नहीं बन पाई। अमेरिका में सांसद और आवर्जन अधिकार कार्यकर्ताओं ने ट्रंप प्रशासन की नई ग्रीन कार्ड नीति की कड़ी आलोचना की है। इस नीति के अंतर्गत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने ही देश से आवेदन करना होगा। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि वे अमेरिकी नागरिकता और आवर्जन सेवा के इस निर्णय के खिलाफ हर संभव कदम उठाएंगे और इसे वापस लेने की मांग करेंगे। वेनेजुएला की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरीना मचाडो ने फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक अपने देश लौटने की योजना बना रही हैं। नोबेल विजेता मचाडो ने ये बात कल पैनामा सिटी में वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं के साथ बैठक के दौरान की। मचाडो दिसंबर से निर्वासन में रह रही हैं। वेनेजुएला में 11 महीने तक छिपकर रहने के बाद नॉर्वे गई थी, जहां उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव कब होगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की सराहना की है। रोड्रिगेज ने ईरान युद्ध के कारण बढ़ती तेल कीमतों के बीच वेनेजुएला के तेल उद्योगों को अमरीकी निवेश के लिए खोल दिया है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 25वें ग्रैंडस्लैम खिताब के लिए मैदान में उतरेंगे। दूसरी वरीयता प्राप्त और 2024 के फाइनलिस्ट अलेक्जेंडर ज्वेरेव और सातवीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्स की भी आज चुनौती होगी। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन कोको ग्राफ और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी आयरना सैबालेंका अपने अपने मुकाबले खेलेंगी। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वीनस के साथ जोड़ी होगी। एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोनिलर की जोड़ी की भी चुनौती रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी करने वाले संदिग्ध को सीक्रेट सर्विस ने मार गिराया। कांगो में इबोला संक्रमण से मरने वालों की संख्या 204 हुई। अफ्रीकी संघ ने इसके और देशों में फैलने की चेतावनी दी। और टेनिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम आज से पेरिस में शुरू। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे

0: रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटो यूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। इतुका ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं किरण गौतम के स्वर में चकिया। इसे सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है कटरा चांद खां, पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सोनील, खुशबू, एरोही, स्वाति मौर्य ने।

0: अभी आप सुन रहे थे विवेकानंद व्यास के स्वर में भोजपुरी विदिशिया। इसे सुनना चाहा था दतरंगी छत्तीसगढ़ से पत्र भेजा था भागवत वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों ने। और अब हम आपको सुनवाएंगे दिग्विजयनाथ सिंह के स्वर में पूर्वी। इसे सुनना चाहा है ग्राम दत्तनगर करनैलगंज गोंडा उत्तर प्रदेश से पुष्पा रामकुमार हरिओम शिवोहम और पंछी ने।
1: आधी आधी रातिया के अरे बोले ला पपीहरा जहर।

आप सुन रहे हैं आपकी पसंद के लोकगीत आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से 747 किलो हर्ट्स पर। और अब आइए सुनते हैं रश्मि चौधरी के स्वर में लोक भजन। सुनना चाहा है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, निहारिका और वंश बत्ता ने।

और अय्यूब हम आपको सुनवा रहे हैं अक्रम अनजाना के स्वर में ये छपरैया। सुनने का अनुरोध किया है इस्लामुन्निशा डॉक्टर शहनाज खान, एडवोकेट वारिस अली खान, मोहम्मद दानिश, समीर अहमद और सना बानो, एवरेडी चौराहा, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से।

प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष भारतीय रेडियो श्रोता संघ, शीतल तरंग श्रीवास्तव, आस्था श्रीवास्तव, श्रद्धा श्रीवास्तव, हर्ष श्रीवास्तव, ग्राम कैथनपुरवा, पोस्ट सातनपुरवा, जिला मिट्टी से सुनना चाहते हैं मीनू खरे और रश्मि श्रीवास्तव के स्वर में ये देवी गीत।

कार्यक्रम का अगला लोकगीत हमने लिया है संजोली पांडे के स्वर में, इनसे हम आपको सुनवा रहे हैं खेमटा। सुनने का अनुरोध किया है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार और मस्तान बाबा।

और आई अब हम आपको सुनवा रहे हैं रविशंकर देहाती के स्वर में, ये किसानी गीत सुनना चाहते हैं अमर सिंह भारती, कोशाबाई भारती, लक्ष्मी भारती, महेंद्र भारती, सचिन भारती, तरु भारती, ग्राम व पोस्ट वाया, तहसील रेटी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से।

अभी आप सुन रहे थे रविशंकर देहाती के स्वर में ये किसानी गीत। इसके साथ ही आज का आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। पूर्वाहन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। हम कार्यक्रम आरंभ करें इसके पहले आपको बता दें अपना फ़ोन नंबर। वैसे तो आपको पता है लेकिन जो हमारे नए श्रोता जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हम अपना फ़ोन नंबर बता दें। हमारा फ़ोन नंबर है 2238825 यानी कि 2238825 और लखनऊ का एसटीडी कोड नंबर है 05220522। जी हाँ, 2238825। इस नंबर पर कॉल कीजिए, हमसे करिए बातें और सुनिए।

0: अपने मन के गीत। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं अब हमसे पहला श्रोता कौन जुड़ना चाहता है। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बोल रहा है?
1: जी, मैं ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: महाकाल की नगरी से आपका प्रेम जी बहुत बहुत स्वागत है, क्या हालचाल है?
1: जी, थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: ये बताइए मौसम कैसा है इस समय?
1: सर, करीबन 20 दिन से 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे। और मतलब आपको बताऊँ, 3 दिन से काफी तेज हवाएं भी चल रही है अभी।
0: तो हवा चलने से तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपके मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ होगा, या टेम्परेचर अभी भी ज्यादा है?
1: जी बिल्कुल, मौसम जैसे हवाएं चलने लगी है ना, तो इससे थोड़ी ठंडक बढ़ी, लेकिन हवाएं भी सर मतलब एकदम गर्म हवाएं चल रही है।
0: यानी कि जो गर्म हवाएं हैं वो भी परेशान करें, लू के थपेड़े ज्यादा हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: तो इस समय इसका मतलब है कि
1: अभी ऐसा बताया जा रहा है कि मतलब अगले हफ्ते से बारिश का दौर शुरू होगा मध्य प्रदेश में।
0: चलिए,
1: लेकिन ये बारिश अभी आ रही है ना, ये मानसून वाली बारिश नहीं है अभी, मतलब बारिश गिरे भी गई ना सर, तो मतलब अभी फसल के लिए खेत तैयार नहीं हो पाए किसानों के लिए।
0: यानी आप क्या करते हैं प्रेम जी?
1: जी,
0: आप क्या करते हैं प्रेम जी?
1: जी सर, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ।
0: अच्छा, यही बात है कि थोड़ी बारिश को लेकर के चिंता है ना?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि अभी बारिश होगी ना तो ये अभी अभी हमारे किसानों के लिए किसी काम की नहीं होगी। अभी तो मतलब एक महीने बाद सोयाबीन की फसल की मतलब लगाने की तैयारी होती है, और एक महीने पहले ही बारिश आ रही है, तो मतलब थोड़ा गड़बड़ होगा मौसम।
0: लेकिन मेरा ख्याल है जनमानस के लिए ठीक रहेगा, थोड़ी उनको ठंडक मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी गर्मी से।
1: जी बिल्कुल, हाँ, गर्मी से राहत तो बिल्कुल मिलेगी सर।
0: भगवान सबके लिए तो सोचते हैं ना?
1: जी हाँ जी।
0: तो प्रेम,
1: आपको बताऊँ, पशु पक्षी जो होते हैं ना, उनके लिए हमने जैसे खेत पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे ट्यूबवेल चालू करके उनके लिए पानी भर देते हैं, और जैसे हम मोटर चालू करते हैं ना, तो टिटहरी, चिड़िया, मतलब तोते, ऐसे मतलब बहुत सारे पंखे जानवर वहाँ पर पानी पीने आते हैं।
0: भाई वाह,
1: बहुत। हमें जी हाँ, जैसे सिंचाई नहीं करनी होती है ना, फिर भी हम मोटर चालू करके उनके लिए पानी भर के आते हैं।
0: बहुत नेक काम करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, प्रभु आपको वो सब कुछ दें जिसकी आपकी आवश्यकता है। आज बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप? आपसे बात करके बड़ा आनंद आ रहा है, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी सर, गाना आप सुना दिया, फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन गाने के बोले प्यार के कागज से, दिल की कलम से, ऐसे करके गाना है।
0: जी जी,
1: पहली बार सलाम देखा,
0: ये 1992 की फिल्म है जिगर, उसका गीत है।
1: जी बिल्कुल, हाँ जी, जिगर फिल्म का, शायद ये अजय देवगन वाली फिल्म है।
0: जी सही कहा आपने, तो आपको ये सुनवाते हैं, अजय देवगन और करिश्मा कपूर थी इसमें, तो इस गीत को सुनवाते हैं हम आपको, चलिए मिल करके सुनते हैं इस गीत को।
1: सर, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कार्यक्रम में ऐसे हमें फोन करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी ओके, बाय।

0: कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और हमारा फ़ोन नंबर हम आपको एक बार फिर से बता दें 2238825। चलिए देखते हैं अगले कॉलर कौन है। हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहा है?
1: जी सर, ग्राम नरेला दामोदर भोपाल मध्य प्रदेश से रामबाबू शर्मा बात कर रहा हूँ।
0: भाई वाह, शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। रामबाबू जी क्या हालचाल हैं?
1: जी सर बहुत बढ़िया हूँ, और आपकी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है।
0: अच्छा, तो मैं अपनी आवाज़ और तेज कर देता हूँ। मिली आपको आवाज़?
1: अच्छी आई।
0: जी जी बताइए बताइए, क्या हालचाल हैं?
1: जी सर बहुत बढ़िया हूँ, बस प्रोग्राम सुन रहा था और डायल कर रहा था, आपसे बात हो रही है, अच्छा लग रहा है।
0: मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हमारे श्रोता हमसे जुड़ते हैं, अपने मन की बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
1: जी सर, जी सर।
0: तो आजकल कैसा मौसम चल रहा है आपके यहाँ?
1: जी सर गर्मी पड़ रही है, 42-43 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर।
0: जी उत्तर भारत में तो इस समय गर्मी पड़ने का समय है, तो गर्मी पड़ेगी ही।
1: जी सर बिल्कुल।
0: और गर्मी नहीं पड़ेगी तो फिर फसलें कैसे होंगी?
1: हाँ सर बिल्कुल, गर्मी भी जरूरी है और बारिश भी जरूरी है, ठंड भी जरूरी है, सब जरूरी होता है।
0: जी जी सही कहा। क्या करते हैं रामबाबू जी?
1: सर किसानी करता हूँ मैं।
0: जी क्या फसल लगाई थी आपने?
1: अभी गेहूं और चने की फसल आ चुकी है, अब आगे धान की रुपाई की तैयारी हो रही है।
0: यानी कि अब आप इस समय जो उसको बीज बनाने की प्रक्रिया उसमें लगे होंगे, अब पौधा बनाने की?
1: हाँ जी सर बिल्कुल, अभी हम पौध डालेंगे सर 3 या 4 तारीख को,
0: 3 जून के आसपास।
1: जी सर, जी सर। हाँ। नर्सरी की तैयारी होगी, 3 या 4 तारीख में डालेंगे सर।
0: चलिए बड़ी अच्छी बात है। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: जी सर रंग फिल्म का सुनवा दीजिए, तेरी मोहब्बत ने, और सर 2-3 मित्रों को याद करना चाहूंगा।
0: हाँ करिए, याद करिए।
1: जी सर केसरी सिंह राजपूत जी हैं, गजराज सिंह लोधी जी हैं, और मिंटू तिवारी जी हैं, और भगवान सिंह परमार जी हैं, आज तो देवनाथ जी, संगीता देवनाथ जी, अविनाश जी, और मांगीलाल चंदेल जी का रहेगा सर।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अपने श्रोताओं से एक निवेदन ये रहेगा कि आप अपने दोस्त, जैसे आप देखिए रामबाबू शर्मा जी ने इतने लोगों के नाम ले लिए हैं, तो अब जो दूसरे साथी जुड़ेंगे वो अन्य साथियों के नाम लें तो और आनंद आएगा कार्यक्रम में। चलिए
1: जी सर, जी सर बिल्कुल।
0: रामबाबू जी चलते हैं, आपका ये गीत सुनते हैं, बहुत बेहतरीन सा गीत आपने सुना है, रंग फिल्म का सुनाने का अनुरोध किया है। चलिए सुनते हैं इसको मिलकर के।
1: नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार।

0: कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आइए बात करते हैं अगले श्रोता से। हेलो,
1: हेलो,
0: कौन बोल रहा है?
1: जी, मैं ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल बोल रहा हूँ।
0: मनीराम पाल जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमीरपुर में गर्मी कैसे?
1: साहब नमस्कार। साहब
0: नमस्कार। हमीरपुर में गर्मी कैसी पड़ रही है?
1: गर्मी तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है, लेकिन इतने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग भैंस गाय चराते हैं, बकरियां भी चराते हैं
0: जी।
1: तो सुबह 9 बजे से अपने खेतों निकल जाते हैं जंगल की तरफ
0: जी।
1: तो पूरा दिन गर्मी हमारे ऊपर से गुजरती है। जितनी ही गर्मी पड़ जाती है तो लोग कहते हैं कि बीमारियां कम आती हैं, जो गर्मी अगर पूरी निकल जाए शरीर से।
0: क्या बेहतरीन सोच है आपकी कि गर्मी को भी आपने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। और हमारे श्रोताओं को चाहिए कि आपसे ये सीख लें कि गर्मी पड़ रही है तो उसका रोना रोने की जरूरत नहीं है।
1: जी, जी, जी।
0: हमें

0: उस गर्मी का आनंद भी लेना है।
1: जी जी साहब,
0: बहुत अच्छी बात है। इसके क्या करते हैं आप?
1: जी बस आपसे बताया कि गाय भैंस चराते हैं, खेती किसानी का काम भी होता है हमारे घर में।
0: जी जी जी, दुग्ध पालन का काम करते हैं, दूध वगैरह बेचते हैं आप। तो आज आज कौन सा गीत सुनवाएं हम आपको?
1: दिल फिल्म का गीत है, मुझे नींद ना आए चैन ना आए, न जाने कहां दिल खो गया।
0: चलिए सुनते हैं आपका ये गीत।
1: जी थोड़ा दो दोस्त हैं हमारे।
0: जी बोले।
1: आज तो विजय पांडे जी हैं, देवी शंकर शुक्ला जी फतेहपुर से हैं
0: जी,
1: और मनकारी से फूलचंद पाल जी हैं।
0: चलिए चलिए, सब दोस्तों के साथ मिलकर के ये गीत हम सुनते हैं।
1: और आप भी हैं साथ में? साथ
0: मैं तो आपके साथ हूँ ही इस समय ऑनलाइन।
1: जी जी,
0: तो चलिए सब लोग
1: नमस्कार
0: मिलकर के सुनते हैं ये गीत, बहुत बेहतरीन सा गीत है आपका।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: चलिए देखते हैं अब कौन से श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो। हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहा है?
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रहटी, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ सर जी।
0: आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप
1: जी? आवाज़ कम आ रही है।
0: मैंने पूछा आप क्या करते हैं?
1: मैं सिलाई का काम करता हूँ सर जी, कपड़े सिलता हूँ, दुकान है मेरी।
0: भाई वहीं सीहोर में ही?
1: जी
0: सीहोर में दुकान है आपकी?
1: नहीं नहीं बायां बायां
0: बायां में है। अच्छा, तो क्या हालचाल चल रहे हैं आपके?
1: बुधनी सलकनपुर के पास है बायां।
0: जी जी जी, तो क्या हालचाल हैं आपके?
1: मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, गर्मी के आनंद ले रहा हूँ और आपके कार्यक्रम का आनंद ले रहा हूँ और फोन लगा रहा हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। आपको हमारे कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं
1: जी?
0: आप हमारे कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: मैं तो सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, ज़्यादा करके जो फोन इन कार्यक्रम ज़्यादा सुनता हूँ।
0: जी जी जी, तो फोन इन कार्यक्रम सुनते हैं। आज आपने हमको फोन लगाया है, कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: संजोग फिल्म का है, देख मैं कहाँ छुपा हूँ माँ, और आपकी इजाजत हो तो दो चार मित्रों को याद कर लूँ क्या?
0: हाँ, उन मित्रों के नाम लीजिए जिन मित्रों के नाम अभी तक बोले न गए हों।
1: जी आशुतोष जी है, संगीता जी है, पूनम जी है कानपुर से, अविनाश जी है राकेश जी है शिमला से, बिलम असम से है, भगवान सिंह परमार है, पूनम वर्मा जी है, गजराज लोधी जी है, मांगीलाल चंदेल है।
0: बहुत अच्छी बात है, आप सभी दोस्तों के साथ चलिए सुनते हैं ये गीत
1: जी।

0: चलिए देखते हैं अब हमसे कौन जुड़ने का प्रयास करता है। हेलो हेलो
1: जी सर, जी सर नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहा है?
1: अंजनी कुमार, ग्राम पलिया मसूदपुर बाराबंकी से।
0: अंजनी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या हाल चाल है?
1: हाल चाल सर बढ़िया है, इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है
0: जी।
1: हाँ तो
0: क्या उपाय कर रहे हैं गर्मी के लिए?
1: जी हम थोड़ा सा कि जब आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकले इस धूप में
0: जी।
1: और जैसे खीरा है, ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूज है
0: जी।
1: इसका सेवन करें, कोल्ड ड्रिंक अधिक मात्रा में सेवन न करें, वो नुकसान कर सकती है। बाकी अन्य पेय पदार्थ जो भी हैं वो लेते रहें।
0: छाछ है, लस्सी है, दही है।
1: जी जी जी,
0: जी।
1: और छाछ है, दही। हाँ, और हम एक गाना सुनना चाहते हैं अपने विशेष दोस्तों के लिए, तो मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा सर।
0: गाना कौन सा सुनेंगे?
1: याराना फिल्म का है, भोले ओ भोले।
0: मेरे यार को मना ले
1: जी।
0: तो आप किन यारों को मनाने जा रहे हैं आज?
1: अरे सर, हमारे अपने ही दोस्त हैं।
0: बोलिए,
1: तो कुछ लोगों को
0: बोलिए बोलिए बोलिए
1: सर। हाँ, हमारे सत्यनारायण जी हैं हाटा रसूलपुर से, और पीयूष वर्मा जी हैं कुरौली बाराबंकी से, और रामदुलारी पटेल जी हैं बाराबंकी से
0: जी,
1: और राजबहादुर जी हैं और नीलम वर्मा जी हैं, और अमरेश कुमार एसआई साहब हैं हमारे जहीराबाद थाने से
0: जी,
1: और अन्य कई सारे दोस्त हैं जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं
0: जी।
1: तो उनके लिए, सभी के लिए मैं ये सुनना चाहता हूँ गाना, उन तक पहुँचाना चाहता हूँ
0: जी। तो चलिए मिल करके सुनते हैं आपका ये गीत, बहुत बेहतरीन सा गीत चुना है फिल्म याराना का आपने। तो आपका गीत आपकी रेडियो सेट पे हम भेजते हैं और आप इसका आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए।

0: कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा। हम अपने सुनने वालों को एक बार पुनः अपना फ़ोन नंबर बता दें, 2238825। आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे कर सकते हैं बातें और सुन सकते हैं अपने पसंद के गीत। तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। चलिए देखते हैं अब कौन से साथी हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहा है?
1: हम ओम नारायण कुशवाहा बोल रहे हैं, साहब इटावा से।
0: इटावा से कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके पीछे शायद रेडियो है, उसको थोड़ा पीछे कर दीजिए या आप वहाँ से हट जाइए।
1: ठीक है साहब, ठीक है।
0: जी जी जी, आपसे बात करने का आनंद दुगना हो जाएगा। तो कुशवाहा जी क्या करते हैं?
1: धन्यवाद आपको।
0: क्या करते हैं कुशवाहा जी?
1: हम साहब वो खेती किसानी करते हैं साहब
0: जी। क्या लगाया है इस समय खेत में?
1: इसमें तोरई है, भिंडी है और बैंगन है।
0: यानी कि सब आप सब्जियां उगा रहे हैं?
1: और क्या साहब,
0: बहुत अच्छी बात है। तो इसके अलावा भी कोई काम, खेती किसानी
1: साहब कुछ काम नहीं, यही करते बस।
0: अच्छा, और क्या आप हमारे स्टूडियो के कौन से कार्यक्रम सुनते हैं, हमारे स्टेशन के कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: अरे सभी कार्यक्रम सुनते हैं, नकलो की जितने हैं वो खेती किसानी का है और सब सुनते हैं साहब।
0: ये तो हमें मालूम है क्योंकि आप किसान हैं, तो हमारा वो कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आता होगा क्योंकि उस कार्यक्रम में विशेष रूप से आपसे विशेषज्ञों से भी बात कराई जाती है और एक्सपर्ट्स आते हैं। जी जी, तो आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: दो तीन मित्र के नाम और लेना चाहिए।
0: हाँ जरूर, नाम लीजिए।
1: यानी औरैया जिला से गगनदीप कमल है और मध्य प्रदेश से मांगीलाल जी है और फरकाबाद से सतीश जी है और इटावा से लाल फुला इटावा से राहुल जी है। इनके लिए सब बेटी करना चाहते हैं और आपको भी। पहले
0: कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बाद।
0: तो चलिए फिर चलते हैं आपसे मिलने के लिए इस गीत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: चलिए देखते हैं अब कौन से श्रोता हमसे बात करना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो सर जी को राधे राधे।
0: राधे राधे, कौन बोल रहा है?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: भाई वाह, बहुत से श्रोता हमारे हैं जो भोपाल से, मध्य प्रदेश से बहुत सारे श्रोता हमको कॉल करते हैं। आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या हालचाल है?
1: बहुत बढ़िया सर, बस गर्मियाँ पड़ रही हैं, गर्मियों का ही आनंद ले रहे हैं सर।
0: चलिए अच्छी बात है, गर्मियों का भी आनंद हम ही लोगों को तो लेना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: भाई, अगर ठंडक का आनंद हम ले रहे हैं, गर्मियों का आनंद भी तो हमें लेना। ठंडक में हम गर्म वाले प्रदेश में चले जाते हैं, अब गर्मी हमारे प्रदेश में आई है तो हम इसका आनंद लेते हैं फिर।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, लेना भी चाहिए सर, क्योंकि सब जब तक हम गर्मी का आनंद नहीं लेंगे तो हमें सर्दी का और ग्रीष्म ऋतु का एहसास कैसे होगा।
0: सही बात कही आपने, हर मौसम है और हमारा देश ऐसा है कि जिसमें विविध प्रकार के मौसम है, वरना तो बाकी देशों में एक ही तरह के मौसम है और वो उसी के अनुसार ढले हुए हैं। हमारे पास तो हर चीज़ है, हर तरह की ऋतुएँ, हर तरह का खान पान है, बड़ा अच्छा लगता है अपना देश। तो क्या करते हैं आप?
1: मैं सर आर्टिस्ट हूँ, पेंटर।
0: अरे वाह, तो यानी कि आप दीवारों पे पेंटिंग वगैरह बनाते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये काम कब से कर रहे हैं आप?
1: होगा सर लगभग 15-20 साल के करीब होगा।
0: यानी कि आप काफी एक्सपर्ट होंगे इस काम में।
1: हाँ सर, वो तो है।
0: तो ये जो आप लिखावट करते हैं, इस लिखावट पे क्या मतलब, किस तरह से आप इसका रेट फिक्स करते हैं कि कैसे किसी से पैसा लिया जाए?
1: वो सर स्क्वायर

0: आउटफिट से भी बात कर लेते हैं ग्राहक से, और ठेके में भी कर लेते हैं कि इतना काम है तो सर इतने काम को इतने पैसे लगेंगे और इतना समय लगेगा, उस हिसाब से डील हो जाती है।
1: जी जी, तो आप तो चित्र वगैरह भी बनाते होंगे?
0: हाँ हाँ सर बिल्कुल।
1: भाई लिखावट करने के साथ साथ आपको राइटिंग करने के साथ साथ चित्र भी तो बनाने के कभी कभी ऑफर्स मिलते होंगे?
0: हाँ बिल्कुल मिलते हैं सर, ऑफर भी मिलते हैं। और ये सर क्या दोनों का तालमेल बिठा कर देता है, कभी कभी कोई चित्र ही चित्र बनवाता है, कोई राइटिंग ही राइटिंग करवाता है, तो वो करना पड़ता है सर।
1: जी जी जी, बहुत अच्छा काम करते हैं। चलिए, कला के प्रति समर्पित हैं आप, बहुत अच्छी बात है। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
0: बड़े घर की बेटी का सुनवा दीजिएगा सर, तेरी पायल बजी जहां मैं पागल हुआ वहां।
1: चलिए चलिए, ये गीत हम आपको
0: सुना। और सर एक मेरा छोटा सा सुझाव है, आप श्रोता मैं स्टार्टिंग से ही कार्यक्रम सुन रहा हूं, तो प्लीज सर आप बोलते हैं कौन बोल रहा है, तो वो ना बोलते हुए बोले कौन बोल रहे हैं, तो और भी अच्छा लगेगा।
1: अच्छा,
0: सुझाव है सर मेरा।
1: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपका आपका सुझाव जो है वो स्वीकार कर लिया गया है, कौन बोल रहा है ना।
0: हाँ हाँ, चलिए इसको ना बोलते हुए कौन बोल रहे हैं या कौन जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है आपके।

0: तालमेल बिठा कर देता है। कभी कभी कोई चित्र ही चित्र बनवाता है, कोई राइटिंग ही राइटिंग करवाता है, तो वो करना पड़ता है सर।
1: जी जी जी, बहुत अच्छा काम करते हैं। चलिए, कला के प्रति समर्पित हैं आप, बहुत अच्छी बात है। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
0: बड़े घर की बेटी का सुनवा दीजिएगा सर, तेरी पायल बजी जहां मैं पागल हुआ वहां।
1: चलिए चलिए, ये गीत हम आपको
0: सुना। और सर एक मेरा छोटा सा सुझाव है, आप श्रोता, मैं स्टार्टिंग से ही कार्यक्रम सुन रहा हूँ, तो प्लीज सर आप बोलते हैं कौन बोल रहा है, तो वो ना बोलते हुए बोलें कौन बोल रहे हैं, तो और भी अच्छा लगेगा।
1: अच्छा,
0: सुझाव है सर मेरा।
1: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपका आपका सुझाव जो है वो स्वीकार कर लिया गया है, कौन बोल रहा है ना।
0: हाँ, इसको ना बोलते हुए कौन बोल रहे हैं या कौन जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपके सुझावों का हमेशा हमें स्वागत रहता है, आपके सुझाव हमें मिलते रहेंगे, हम उस पर अमल करते रहेंगे, अच्छी बात है। तो आपका गीत प्ले किया जाए अब?
0: ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपके लिए भी रहेगा और भगवान सिंह जी परमार और राम बाबू जी और सभी के लिए रहेगा।
1: ठीक है ठीक है, चलिए चलिए आपका ये गीत प्ले करते हैं और सुनिए, इसको आनंद लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत धन्यवाद आपका। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: जी सर, आया था ढूंढने नौकरी।
0: जी, तो आपको ये गीत सुनवाया जाए फिर? चलिए चलिए, हम आपको ये गीत सुनवाते हैं, इसको सुनिए और आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से मैं कॉल करते रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और हमारा फ़ोन नंबर है 2238825। लगातार हमें फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, आइए देखते हैं अब हम हमारे साथ कौन जुड़ रहा है। हेलो, वसंत कुमार जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या करते हैं आप?
1: जी हम तो सर ग्रेजुएट हैं सर, और मतलब जो फॉर्म वगैरह निकलते हैं
0: जी,
1: एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं और पेपर देते रहते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं सर।
0: कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं हमारे?
1: जी आपके यहाँ से प्रोग्राम सर भी अच्छे लगते हैं, विधा कार्यक्रम अच्छा लगता है, किसानी और सुबह का जो फरमाइशी कार्यक्रम है, जवानों के लिए कार्यक्रम है, सदाबहार गीत है सर, आपका तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है सर।

0: चलिए अब देखते हैं कि अगला श्रोता हमसे कौन जुड़ रहा है। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बोल रहा है?
1: सर हम मंडला मध्य प्रदेश से बबीता बघेल बात कर रहे हैं। सर
0: बबीता जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल है?
1: थैंक यू सर।
0: कैसी हैं?
1: बहुत अच्छे सर।
0: क्या करती हैं बबीता जी?
1: सर हम तो हाउस वाइफ हैं।
0: ये तो बहुत बड़ा काम है भाई, हाउस वाइफ होना तो बहुत ही बड़ा काम है। आप ये समझ लीजिए कि पूरे दिन भर सुबह से लेकर के और जब तक पूरा परिवार सो नहीं जाता है तब तक आप अपने काम में लगी रहती हैं और सबकी

0: ये जो है कुछ ना कुछ करती रहती हैं, बहुत ही बड़ा काम है। आपको बहुत बहुत नमन। क्या हाल और बाकी क्या कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है?
1: जी सर, बाकी तो सब ठीक है सर।
0: गर्मी
1: थोड़ी
0: कैसी है?
1: गर्मियाँ पड़ रही हैं अभी तो।
0: जी गर्मी तो पड़ रही है, गर्मी का
1: जी
0: आनंद भी लेना चाहिए। आज ब्रदर्स डे है, आप जानते होंगे शायद।
1: सर, आज ब्रदर्स डे है तो हमारे भाई सुनते होंगे आपका प्रोग्राम, तो
0: जी
1: आपके प्रोग्राम के माध्यम से हम उनको शुभकामनाएं
0: संदेश देना चाह रहे हैं।
1: देना चाहते हैं
0: भाई
1: और
0: वाह,
1: भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भैया हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, भगवान उनको कोई तकलीफ ना दे।
0: जी
1: जी
0: तो आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: सर, आज एक गीत सुनना है चंबल की कसम मूवी का, चंदा
0: जी
1: रे मेरे भैया से कहना।
0: क्या बात है, लता मंगेशकर जी की
1: और
0: आवाज़
1: ये
0: में ये गीत। जी
1: जी,
0: जी
1: और ये डेडिकेट आपको रहेगा और जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी को। थैंक
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो बबीता जी आइए सुनते हैं
1: यू
0: आपका ये
1: सर।
0: गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम के अंत में अब देखते हैं कि कौन से कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो
1: जी,
0: कौन बोल रहा है?
1: हेलो, अशोक कुमार सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी अशोक जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं अशोक जी?
1: मैं टीचर हूँ बारंग जनपद में।
0: जी जी जी जी, तो आप शिक्षण का कार्य करते हैं?
1: जी हाँ।
0: तो इस समय क्या हो रहा है?
1: इस समय गर्मी की छुट्टी चल रही है, जनगणना कार्य चल रहा है।

0: है
1: जी
0: तो ज्यादातर शिक्षा सब जनगणना में लगी हुई है। मेरी ड्यूटी किसी विशेष कारण छुट्टी नहीं, जनगणना ड्यूटी नहीं लगी थी
1: जी,
0: तो मैं बस इधर निकल आया था बद्रीनाथ तरफ।
1: अच्छा, यानी कि आप यात्रा कर रहे हैं इस समय?
0: जी जी जी
1: भाई, वाह क्या बात है। हमारे कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
0: जी जी,
1: हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं?
0: आपके कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े हम लोग बड़े चाव से सुनते हैं
1: जी।
0: आपके कई कार्यक्रम हैं जो बड़े जो है शिक्षा के जो है बढ़ावा देते हैं
1: जी।
0: और किसानों के लिए भी अच्छे कार्यक्रम होते हैं
1: जी।
0: तो साहित्यिक के भी कार्यक्रम बढ़िया आप लोग करते हैं
1: जी।
0: और जो आंगनबाड़ी के और जो है महिलाओं के भी काफी विकास के संबंध में हम अक्सर सुना करते हैं, कार्यक्रम आपके बहुत अच्छे होते हैं
1: जी जी जी। तो आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
0: राजकुमार का आज आई बाहर।
1: जी जी जी, चलिए तो आपका गीत सुनते हैं और इस गीत का आनंद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए, आप हमें ऐसे कॉल करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक, थैंक यू।

फिल्म राजकुमार के इसी गीत के साथ आज का कुछ तुम कहो कुछ हम कहें कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल गोपाल।

0: गर्मी के छुट्टियां बहुते नीक लागे, हम लड़कन के सोए भाग जागे, ना भागम भाग आफत की नाई, सगरे दिन मौज मस्ती बहुते नीक लागे।
1: का बात है बिटिया, औ तो एखन छुट्टियन के अरबत कही, पहले सगरे बाल गोपालन ते राम जोहार तो करो।
0: जी दीदिया, उ तो हम करहे वाली रहन, कार्यक्रम सुने वाले सब पंचन का जय हिंद, और दीदिया आपका प्रणाम।
1: सगरे बाल गोपालन का हमारो जय हिंद। बिटिया सुखी रहो, हमरे बाल गोपाल तो सुनिन लेनिन कि गर्मी के लिए छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, तो अब तो आनंद है आनंद हुई है।
0: सही कहो दीदिया, साल भर बस यह सुने का मिलत है, पढ़ो पढ़ो ना खेलो ना।

0: कू दो ना कहो जाओ, मतलब जौन हमका नीक लागत है ऊ तो बिल्कुल ले ना करेक्ट मिलत है। मुला जब छुट्टी होत है तो तनी छूट मिल जात है, यही ते हम पंचन का बड़ी खुशी मिलत है।
1: अच्छा तो आप कहाँ करी हो, कहाँ कहाँ जाइयो बिटिया?
0: दीदिया कहाँ जाइबे, अम्मा तो बस नानी खिया ही जोती हैं, तो हमहू का उहाँ जाए का परी और का।
1: तो का तुमको वहाँ नीक ना लागत है, जो मजबूरी में जाती हो?
0: नीक तो लागत है, मुला मनु करत है कहूँ औरो जाए चाहिए, जैते हमार ज्ञान बढ़त है।
1: ये तो तुम नीक कहा बिटिया, मुला जैसे तुमका अपन अम्मा के साथ नीक लागत है और तुम उनके साथ जाती हो, वैसे तुम्हारी अम्मा का तो अपनी अम्मा मतलब तुम्हारी नानी के पास नीक लागत है। यही ते ऊ वहाँ जाए के तय सगरे साल राह तकती है, काहे ते पूरे साल तो तुम पांचन के पढ़ाई लिखाई रहती है।
0: ई तो हम कबू सोचबे ना बहन दीदिया, अब ते हमहू खुशी खुशी जाइबे।
1: ई भवे ना नीक बात बिटिया, छुट्टी तो हो गई है, हमार बाल गोपाल इनके आनंदो ले रहे होंगे। मुला हम याक बात फिर कहबे।
0: कौनी बात दीदिया?
1: वो बात ई आए बिटिया कि हम देखा है हमार कुछ बाल गोपाल ऐसन है जी खेलब कूदब भूल के मोबाइल में लाग रहते हैं, जहाँ तनिको अम्मा ऐसी वैसी भई उनके हाथन में मोबाइल आ जावत है तो सगरे काम छोड़ के बस वही का पकड़ के बैठे जो, तो फिर चाहे जितना बोलाओ कुछो कहो उनको सुनाए ना पड़त है।
0: जी दीदिया, हमरी अम्मा तो हम पंचन का मोबाइल देती ना है, हम आपका बताई हमार याक सहेली है ऊ तो बगैर मोबाइल देखे खाना ना खात है, को बुलावे चाहे घर मा कौनो आवे चाहे जावे वही का कौनो फर्क ना पड़त है, ऊ बस मोबाइल के साथे मगन रहत है।
1: वह है तो डॉक्टर बहनी बताए रही कि यह याक तरह के नशा होत है, मने याक चीज देखे के तई मोबाइल उठावत है और फिर घंटन महिमा बीत जात है, ना कुछो मिला समय के बर्बादी ऊपर थे साथ है माँ अम्मा के डांटो सुनो।
0: दीदिया आज उकाल मोबाइल पर तमाम मेल केर खेल आए गए हैं, सबे जने वह खेला थे और रील देखत है।
1: अच्छा बिटिया मुला मोबाइल मा कैसे खेलत है? अरे खेल कूद तो मैदाने मा होत है।
0: दीदिया ऊ गेम ऑनलाइन और वर्चुअल होत है।
1: ई कैसन खेल आए? अरे जब चार जने मिलके खेलत है तो यही ते आपसी समझ मेल मिलाप बढ़त है और दौड़े भागे ते शरीर मजबूत बनत है, याक जगह बैठे बैठे चिल्लाए चिल्लाए के मोबाइल पर अंगुरी चलावे ते कोनो खेल होत है? हमरे समझ में तो यह बात ना आवत है बिटिया।
0: सही कहे दीदिया, यही ते आखी हाथ कमर सब पिराए लागत है और दिमाग वह थक जात है।
1: हाँ बिटिया तो अब हमरे बाल गोपालन का करे चाहिए?
0: दीदिया हमरी बहन जी कहती हैं कौनो चीज के दुरुपयोग ना करे चाहिए, ऐसन मोबाइल भी है, अगर हम घर में पड़ी रहे हैं कुछ समझ में ना आ रहा है तो हम मोबाइल ते देख सकेत है समझ सकेत है, तो हम पंचन का मोबाइल का प्रयोग ज्ञान लेखते करे का है, जीवन का बर्बाद करे ते नहीं करे का है, खेले कूदे का है, तबे हम पंचे स्वस्थ सुखी और प्रसन्न रहबे।
1: बिटिया हम बंचे खेले कूदे केर बात कर रहे हैं और सगरे जन यू जानत है कि केर महत्व तो जाने के तई तमाम मेल के दिवस भी मनाए जाते हैं, ऐसा एक दिवस काली माने 25 मई का मनावा जाई।
0: जी दीदिया हमहू का याद है विश्व फुटबॉल दिवस।
1: हाँ बिटिया अच्छा का तुमका पता है कि ई दिन का मनावा काहे जात है?
0: ना दीदिया हमका ई तो ना पता है।
1: कौन बात ना है हम बताए थे, फुटबॉल का ओलंपिक खेलन माँ 1924 में शामिल किन गवार है, यही की याद में संयुक्त राष्ट्र संघ 2024 में विश्व फुटबॉल दिवस मनावे के घोषणा के हिस्सा है, यही के 100 साल पूरे हुए के मारे यूं दिवस मनावा जाते हैं।
0: अच्छा दीदिया ई तो आप फुटबॉल के बारे में बतायो, मुला हमरी अम्मा बताएं रही कि काल गंगा दशहरा के पर्व भी मनावा जाए।
1: हाँ बिटिया यह पर्व जेठ महीने के उजेरे पाक की दसवीं का मनावा जाते, कहा जाती है यही दिन गंगा मैया धरती पर आई रही।
0: जी यह अम्मा कही रही रहे ऊ तो यही दिन उपासे रहती हैं, पूजा करती हैं और दानव देती हैं।
1: हाँ यह दिन यह सब करेक चाहिए और आज हमारे कार्यक्रम माँ विजय वीर सहाय भैया हैं, तो ई हम बंचन का ही के बारे में और निकेते बताई है, तो सब बाल गोपाल सुने ई वार्ता कल कल छल छल बहती गंगा।
2: वैसे तो गांव के किनारे भी नदी थी और गांव के लोग उसमें रोज नहाया भी करते थे, लेकिन कुछ त्योहारों पर गांव के लोग परिवार के साथ नहाने के लिए कभी कानपुर कभी हरिद्वार कभी प्रयागराज और कभी वाराणसी जाते थे। ऐसे ही किसी एक त्योहार पर कृष्णा अम्मा बाबूजी भाई रामू और बहन रमा के साथ ट्रेन से प्रयागराज जा रहा था। उसके बाबू ईश्वर दयाल जी गांव के स्कूल में अध्यापक हैं। जैसे ही ट्रेन गंगा नदी के पुल पर पहुंची, बाबूजी और कई और लोग खिड़की से नदी में पैसे डालने लगे

और गंगा मैया की जय बोलने लगे। कृष्णा ने अपने पिता से पूछ ही लिया, बाबू नदी तो गांव में भी है और उसमें भी हम नहाते हैं, लेकिन उसमें कोई पैसे नहीं डालता, यहाँ इस नदी में क्यों डालते हैं और गंगा में नहाने के लिए इतनी दूर क्यों जाते हैं। पिता ने उसे समझाया, बेटा वैसे तो हमारे देश में कई नदियां हैं जो लौकिक और प्राकृतिक हैं, लेकिन गंगा ईश्वरीय और सबसे बड़ी नदी है जो हिमालय से उतरकर पहाड़ी रास्तों से कल कल छल छल बहती हुई अनेक छोटी बड़ी पहाड़ी नदियों को अपने में समाहित करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती है, जिसे गंगा सागर कहा जाता है। गंगा को बहुत पवित्र नदी और देवी मानते हैं। क्यों मानते हैं, कृष्णा ने पूछा। इसलिए बेटा कि ऐसा माना जाता है कि यह नदी स्वर्ग की देवी है जो जलधारा के रूप में धरती पर उतरी और पाताल तक जाती है। इसके जल से इंसानों, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और जंगलों का जीवन पलता है। ये भी माना जाता है कि इसमें नहाने से पाप और तमाम बीमारियों का नाश हो जाता है। इसका जल भर कर रखने पर कभी खराब नहीं होता, जबकि बाकी नदियों का जल रखने पर कुछ ही समय में खराब हो जाता है, बाबू ने समझाया। ये तो बड़े अचरज की बात है, रमा ने चकित होते हुए कहा। हाँ बिटिया, इसकी सही वजह तो वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाए हैं, लेकिन इसके पानी में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाए जाते हैं जो हानिकारक जीवाणुओं को पनपने नहीं देते हैं। इसके पानी में शुद्धिकरण और ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने की अद्भुत क्षमता है। पूजा आदि में जो पंचामृत बनाया जाता है उसमें भी एक अमृत के रूप में गंगा जल मिलाया जाता है। अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए भी उन पर गंगा जल छिड़का जाता है। किसी व्यक्ति के प्राण निकलते समय उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है ताकि उसे मुक्ति मिल सके और स्वर्ग मिले। बाबूजी की बात पूरी होते होते प्रयागराज स्टेशन आ गया और सब लोग उतरकर गंगा किनारे जा पहुंचे। प्रयागराज में हरहराती विशाल पाट वाली गंगा और यमुना का संगम देखकर कृष्णा चकित रह गया। नदी के कई घाटों पर बहुत सारे लोग नहा रहे थे, कोई कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे तो कई लोग हर हर गंगे बोलकर डुबकियां लगा रहे थे। नदी में कई नावों पर लोग नौका विहार कर रहे थे। किनारे के मैदान में एक बहुत बड़ा मेला भी लगा हुआ था। शाम को गंगा जी की सामूहिक आरती और नदी में बहते दीपों की जगमग और मेले की चहल पहल देखकर सबको बहुत अच्छा लगा। रात में कुछ देर मेला घूमने के बाद वहीं मैदान में एक किनारे दरी बिछाकर सबने लाया हुआ भोजन किया और आराम करने लगे। कृष्णा के मन में नदी के बारे में जानने की इच्छा और जोर मार रही थी कि भई कैसे स्वर्ग से उतरी और पाताल तक पहुंची। उसने बाबू जी से कहा, गंगा मैया की कहानी सुनाइए बाबू। अच्छा सुनाता हूँ, रामू और रमा तुम भी सुनो। रामू और रमा भी उनके पास खिसक आए। बाबूजी ने कहना शुरू किया, गंगा के धरती पर आने के बारे में अनेक कथाएं पुराणों में दी गई हैं। उनमें से एक कहानी यह है कि हजारों वर्ष पहले स्वर्ग में ब्रह्मा ने विष्णु के धोए पैरों के जल को अपने कमंडल में भरकर गंगा का निर्माण किया। किसी शाप के कारण ब्रह्मा जी ने गंगा को स्वर्ग से निकलकर धरती पर जाने का आदेश दिया। धरती पर उतरते समय गंगा का वेग बहुत तीव्र था, तब शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया और जटाओं से धाराओं के रूप में प्रवाहित किया। इस तरह ब्रह्मा, विष्णु और शिव यानी तीनों प्रमुख देवों के स्पर्श से पवित्र होकर गंगा पृथ्वी पर आई। कहकर बाबू रुके तो रामू ने कहा, दूसरी कथा क्या है। बाबू जी ने कहा, दूसरी कहानी जो सबसे ज्यादा कही जाती है वो यह कि पृथ्वी पर एक राजा सगर थे, उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने देवलोक पर विजय पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। उनका यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया। सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढने के लिए भेजा। वो घोड़ा उन्हें पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बंधा मिला। सगर के पुत्रों ने सोचा कि यह घोड़ा कपिल मुनि ने ही चुरा कर बांधा है और वे उन्हें भला बुरा कहने लगे। मुनि उस समय तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके क्रोध से सगर के सभी बेटे भस्म हो गए। अंतिम संस्कार न होने के कारण उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली और वो भटकने लगी। सगर के पुत्र अंशुमान ने उन आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रयास किया पर सफल नहीं हुए। फिर अंशुमान के बेटे दिलीप ने भी प्रयास किया पर वो भी असफल रहे। तब दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों यानी सगर के पुत्रों का अंतिम संस्कार किया और उनकी राह को प्रवाहित करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी से होते हुए पाताल जाने का आदेश दिया ताकि उनके स्पर्श से सगर के पुत्रों की आत्माओं की मुक्ति संभव हो सके। गंगा ने कहा कि स्वर्ग से इतनी ऊंचाई से पृथ्वी पर उतरूंगी तो पृथ्वी मेरा इतना वेग कैसे सह पाएगी। तब भगीरथ ने शिव जी से प्रार्थना की। प्रसन्न होकर शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा जी के वेग को रोक कर जटाओं की लट से निकालकर आगे बढ़ाया और गंगा पृथ्वी पर उतरकर भगीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर संगम तक गई और वहां सगर के पुत्र

का उद्धार किया। कहीं कहीं तो गंगा 100 फुट तक गहरी है। एक कहानी वामन पुराण में पाई जाती है। वामन पुराण में कहा गया है कि विष्णु भगवान के 5वें अवतार वामन ने राजा बलि से यज्ञ में 3 पग भूमि दान में मांगी थी। राजा के राजी होते ही उन्होंने विराट रूप धारण कर 2 पग में स्वर्ग और पृथ्वी नाप लिए। 3रा पग नापने की जगह नहीं बची तो राजा ने अपने शरीर पर पग रखने को कहा। स्वर्ग आदि नापते समय उनका 1 पग ब्रह्मांड के कपाल पर पड़ा, जिससे वहां पर ब्रह्म द्रव फूट पड़ा, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया। ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडल से स्वर्ग में प्रवाहित कर दिया। इस तरह गंगा को विष्णु के चरणों से होकर ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रवाहित माना गया है और पृथ्वी पर शिव जी की जटा से होकर आने से यानी त्रिदेवों के स्पर्श से वो अति पवित्र मानी जाती हैं। पुराणों में ये कथा ये भी है कि पृथ्वी पर आते समय मार्ग में जाह्नू ऋषि का आश्रम पड़ा था और गंगा के तीव्र प्रवाह से ऋषि की हवन सामग्री वगैरह सब बह गई तो क्रुद्ध होकर ऋषि ने उन्हें पी लिया, जिससे वो आगे का प्रवाह रुक गया। तब अनुनय विनय करने पर ऋषि ने उन्हें मुक्त करके कान से बाहर निकाल दिया, इसलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। गंगा नदी जेठ महीने की 10वीं तिथि को धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस तिथि पर गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इतनी कहानियां सुनाकर बाबूजी रुके तो रमा ने पूछा, हजारों साल से बहती गंगा में इतना पानी आता कहाँ से है बाबू? देखो बच्चों, अभी तो रात बहुत हो गई है, अभी सो जाओ, देश में गंगा की लंबी यात्रा की कहानी कल सुनाऊंगा, बाबूजी ने कहा। फिर सब सो गए। दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर नित्य कर्म से निपट कर सब गंगा में नहाए और मंदिर में पूजा करके मैदान में जाकर दरी बिछाकर बैठ गए। बाबूजी दही जलेबी और पूरी सब्जी खरीद लाए और सब नाश्ता करने लगे। बाबूजी ने नाश्ता करते हुए गंगा की कहानी सुनानी शुरू कर दी। बच्चों, गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल में 30,140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री नामक स्थान पर गोमुख नामक गुफा जैसे मुख से निकलती हैं और उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। गंगोत्री हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इसमें पानी करीब 5,000 मीटर ऊंचाई पर स्थित नंदा देवी पर्वत, कामत पर्वत और त्रिशूल पर्वत के हिमनद के पिघलने से आता है। गोमुख से भागीरथी यानी गंगा का प्रवाह शुरू होता है। आगे चलकर अनेक नदियां एक दूसरे से मिलते हुए भागीरथी में मिलती हैं, जैसे विष्णुप्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है, फिर नंदप्रयाग में अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है, इसके बाद कर्णप्रयाग में अलकनंदा से कर्ण गंगा का संगम होता है, फिर ऋषिकेश से 139 किलोमीटर दूर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है, इसके बाद 1500 फीट की ऊंचाई पर देवप्रयाग में अलकनंदा और उसकी सहायक नदियां बाईं ओर से और भागीरथी और उसकी सहायक नदियां दाहिनी तरफ से आकर मिल जाती हैं और आगे गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती हैं। कुल 200 किलोमीटर का संकरा पहाड़ी रास्ता तय करते हुए गंगा नदी ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में पहली बार मैदान में प्रवेश करती है। हरिद्वार से बिजनौर, गढ़ मुक्तेश्वर, सोनो, फरुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए करीब 800 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए प्रयागराज पहुंचती है। यहां गंगा और यमुना का संगम होता है, इसीलिए इस शहर को तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। हाँ, ये तो हम सामने ही देख रहे हैं, कितना सुंदर संगम है, रामू बीच में बोला। बाबूजी ने आगे कहना शुरू किया, ये हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ कुंभ मेले के आयोजन में दुनिया भर से लोग स्नान और दर्शन पूजन करने आते हैं। माघ पूर्णिमा, मकर संक्रांति और कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ दूर दूर से लोग नहाने आते हैं। यहाँ से गंगा मिर्जापुर होते हुए काशी पहुँचती है। शिव जी की नगरी काशी को बनारस और वाराणसी भी कहा जाता है। यहाँ गंगा उत्तर दिशा की ओर मोड़ लेती है, जिससे उसे उत्तर वाहिनी कहा जाता है। यहाँ से गंगा गाजीपुर होकर बिहार में पटना, भागलपुर होते हुए साहिबगंज पहुँचती हैं। भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियों से गंगा दक्षिणवर्ती हो जाती हैं। महाकाली, करनाली, कोसी, गंडक, सरयू, यमुना, सोन और महानंदा जैसी अनेक सहायक नदियाँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि में कहीं न कहीं आकर गंगा जी में ही मिल जाती हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया नामक स्थान से गंगा 2 धाराओं में बंट जाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा का डेल्टा सुंदरवन है। यहाँ भूमि की ढलान कम होने की वजह से गंगा की गति धीमी हो जाती है। यहाँ गंगा सागर से संगम करती है। यहाँ पर प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ गंगा सागर संगम है। इस तरह गंगा कुल मिलाकर 2,526 किलोमीटर की यात्रा करती है, कहकर बाबूजी रुके तो रमा बोली, तो बहुत लंबी यात्रा है। हाँ बेटिया, इतने लंबे सफर में गंगा जगह जगह अपने किनारे बसे शहरों, गांवों के लोगों की ही प्यास नहीं बुझाती, बल्कि खेतों की सिंचाई करके अन्न उपजाने में भी मदद करती है। इसमें बड़ी

0: में घड़ियाल भी हैं, जो इसका प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। मछलियों और सरीसृपों की कई प्रजातियों के अलावा दुर्लभ डॉल्फिन और शार्क भी इसमें पाई जाती हैं। लेकिन इतनी लाभकारी मोक्षदायिनी जीवनदायिनी गंगा को हम इंसानों ने पिछले कई सालों से इतना प्रदूषित कर दिया है कि प्रमुख तीर्थ स्थलों तक में उसका पानी न पीने लायक रहा, न नहाने लायक रहा और न ही सिंचाई लायक रह गया। लोग इसके दूषित जल से बीमार भी हो रहे हैं। इससे चिंतित भारत सरकार ने 2008 से गंगा की सफाई की अनेक परियोजनाएं चलाई हैं। सरकार ने नवंबर 2008 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी और प्रयागराज से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर के जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। नमामि गंगे के नाम से गंगा सफाई परियोजना चलाई जा रही है। कई सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संगठनों ने भी गंगा की सफाई में सहयोग का अभियान चला रखा है, जिसके बाद कई जगह गंगा साफ और निर्मल भी हो गई हैं। हालांकि गंगा में कचरा गिराए जाने से रोकने के लिए सख्त कानून भी हैं, लेकिन इसमें सीवर का कचरा, उद्योगों का जहरीला रासायनिक कचरा और अत्यधिक प्लास्टिक कचरा गिरने से अभी पूरी तरह से रोका नहीं जा सका है, कहते कहते बाबूजी दुखी और गंभीर हो गए। हाँ बाबूजी, जब तक सभी लोग मिलकर कचरा रोकने और सफाई के लिए सजग नहीं होंगे, तब तक हम इस प्यारी गंगा माँ की पवित्रता, सुंदरता और उसका सम्मान कैसे बचा पाएंगे, कृष्णा ने कहा। ये तो बड़ी चिंता की बात है बाबूजी। गंगा की रक्षा के लिए सभी की सजगता और सहयोग जरूरी है, ताकि हमारी प्यारी गंगा माँ कल कल छल छल बहती रहे। रमा और रामू भी बोल दिए, ठीक कहते हो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी फिर कभी। गंगा की बातें बताने के लिए तो कई दिन भी कम पड़ जाएंगे, कहकर बाबूजी ने अपनी बात खत्म की। फिर सब उठकर मेला घूमने चल दिए।
1: वाह दीदिया, विजय वीर सहाय दादा तो बहुते नीक थे गंगा मैया के बारे में बताई, यही कहते ही इनका बहुते धन्यवाद।
2: तो बिटिया हम पंचे अबे सुनें ई वार्ता, कल कल छल छल बहती गंगा। गंगा मैया ऐसा कल कल छल छल बहत रहे, यही की तई हम पंचन का मिलके प्रयास करे है। अगर हम गंगा किनारे जाहित है तो वह गंदगी ना करी, काहे ते पानी हमका जीवन देते है। बोला वह पानी अगर मैल हो जात है तो जीवन की तई हानिकारक भी बन जात है।
1: जी दीदिया, तो हम पंचन का गंगा मैया का साफ राखे का है, तो उनका प्रणाम करत भय सुना जाए ई गौने।

0: वाह बिटिया, बहुते नी गौ नहीं रही। बिटिया तुम गौ नहीं सुनत सुनत ई का करे लागियो?
1: अरे दीदिया कुछ ना, बात ई आए, आज दुनिया में भाई दिवस मनावा जा रहा है। वैसे तो हम पंचे रक्षा बंधन भैया दूज मनाई थे, मुला ई दिन वर्ल्ड ब्रदर्स डे के रूप में मनावा जात है। तो हम आपन भैया का दिएकते ही ई कार्ड बनाई था।
0: अच्छा दिखाओ दिखाओ। वाह बिटिया बहुते सुंदर कार्ड बनाए हो, भाई भाई का, भाई बहन का, इसने ऐसन बना रहा है। ये दिन मनावे के यह संदेश है कह बिटिया।
1: जी दीदिया सही कहे
0: बिटिया, हमार और हमरे

0: पाल गोपालन के बीच स्नेह के डोर बंधी है और वो डोर है आकाशवाणी। तो आकाशवाणी केर 90 साल हुए की खुशी माँ हम मंचे एक नवा कार्यक्रम शुरू की है
1: नॉलेज बैंक आकाशवाणी एट 90।
0: हाँ तो आज यही माँ सुनो और गुनो ई जानकारी आकाशवाणी और समाचार
2: आज की ताजा खबर।

0: सुन दुनिया।
1: जी हाँ बच्चों, आकाशवाणी आप तक लेकर आती है ताज़ा खबरें जो होती हैं सच्ची और विश्वसनीय, जिस पर पूरा देश भरोसा करता है। बच्चों, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि पहला समाचार बुलेटिन कब प्रसारित हुआ होगा, तो हम आपको बता दें बच्चों कि आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहला समाचार बुलेटिन 19 जनवरी 1936 को प्रसारित हुआ था। बच्चों, पहले समाचारों के बुलेटिन सिर्फ चंद स्टेशनों से प्रसारित होते थे, इसलिए बाद में दिल्ली में सभी भाषाओं के समाचार बुलेटिनों का केंद्रीकरण किया गया और केंद्रीय समाचार संगठन बनाया गया। 15 सितंबर 1948 को केंद्रीय समाचार संगठन को समाचार सेवा प्रभाग और विदेश प्रसारण सेवा प्रभाग में विभाजित किया गया। बच्चों, आपने न्यूज रील का भी नाम सुना होगा, तो आपको बता दें कि 8 दिसंबर 1955 से रेडियो न्यूज रील का प्रसारण आरंभ हुआ। बच्चों, संस्कृत भाषा में समाचार बुलेटिन आरंभ हुए 30 जून 1974 को।
2: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्।
1: 15 अगस्त 1985 से प्रत्येक घंटे समाचारों का प्रसारण आरंभ हुआ। दिल्ली स्थित मुख्य केंद्र से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी समाचार प्रसारित होते हैं। मुख्य समाचार बुलेटिन में यदि हम देखें तो हिंदी में समाचार प्रभात, समाचार संध्या और दोपहर समाचार मुख्य रूप से प्रसारित होते हैं। प्रदेश स्तर पर बच्चों प्रादेशिक समाचार प्रसारित होते हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आकाशवाणी गोरखपुर से सुबह 7:20 पर प्रादेशिक समाचार और आकाशवाणी लखनऊ से शाम को 7:20 पर प्रादेशिक समाचार प्रसारित होते हैं।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: उर्दू में इलाकाई खबरें भी नशर की जाती हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से दोपहर 1:10 पर।
4: ये आकाशवाणी लखनऊ है, अब आप इलाकाई खबरें सुनिए।
1: और बच्चों, एक बात हम और बता दें कि आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार की शुरुआत 15 अप्रैल 1953 में हुई। इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने किया था और रेडियो पर इन समाचारों को पढ़ने वाली और आपको सुनाने वाली पहली आवाज थी यज्ञदेव पंडित जी की। बच्चों, समय के साथ साथ आकाशवाणी से प्रसारित हो रहे समाचारों का प्रारूप भी बदल रहा है। अब आप आकाशवाणी के समाचार रेडियो पर तो सुनते ही हैं, साथ ही साथ डिजिटल माध्यमों से भी आप सुन सकते हैं। पॉडकास्ट और मोबाइल एप्स के जरिए भी आप तक समाचार पहुंचते हैं। तो बच्चों, आप भी सच्ची, प्रामाणिक और विश्वसनीय समाचार सुनने के लिए आकाशवाणी के समाचार सुनते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए।
5: वाह दीदिया, बहुत बढ़िया जानकारी रही। यही का लिखे रही हमरी दीदिया और यही का पढ़ी के सुनाई ममता उपाध्याय दीदिया, तो हम दोनों जनन का धन्यवाद देत है।
6: बिटिया, जानकारी केर कड़ी और बढ़ावा जाए।
5: जी बिल्कुल।
6: तो अब जानो आवे वाले दिनन में पढ़े वाले प्रमुख दिवसन के बारे में। तो 28 मई का ईद उल जुहा माने बकरीद मनाई जाये।
5: 29 मई का विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनावा जाये।
6: यो दिवस मनावे का प्रमुख उद्देश्य मनाइन का पाचन केर महत्व बतावे की तई और पाचन तंत्र का स्वस्थ रखे की तई बातें बताई जाती हैं। जैसे दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पियो, खाना धीरे धीरे चबा के खाओ, आपन खाना में मट्ठा का शामिल करो, ताजे फल हरी तरकारी खाओ और हाँ, रोज योग करो या कसरत करो।
5: जी दीदिया, हम पंचे अगर इन बातन का अपनाइबे तो हमार पाचन तंत्र नीक रही और हमहू पंचे स्वस्थ रहिबे।
6: बिल्कुल सही कहो बिटिया। अच्छा बिटिया, हम पंचे तरकारी केर बात कीन, तो तुमका पता है तरकारी के राजा के का कहा जात है?
5: जी दीदिया पता है, आलू का कहा जात है और हम आपका बताई हमका तो आलू बहुत पसंद है।
6: बिटिया, खाली तुमका नहीं, धरती के 1 अरब से ज्यादा मनेन की थाली में आलू रहत है और ये दुनिया के 3rd सबसे ज्यादा खाए वाली फसल है। हमारे देश में बहुत आलू होते है, दुनिया में 2nd नंबर पर है हम आलू उत्पादन।

0: अच्छा दीदिया, आलू पर आपकेर इतनी बदकही सुनी के हमका याद आवा कि हम पंचे 30 मई का अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस मनाइबे। यही केर शुरुआत 2024 ते भई रही।
1: यही के तई ही तो हम तुमका आलू पुराण सुनाएता हैं बिटिया, देखो तुमका याद भी आएगा।
0: जी दीदिया, तो सब जने आलू केर पोषण के बारे में जाने और यही का सुरक्षा के तई और उत्पादन के तई जागरूक रहे, यही के तई यह दिवस मनावा जात है।
1: वाह बिटिया, बहुत ज्ञान की बात है, बताए बिटिया। और देखो कुछ बातें पर रह गई हैं, जैसे हमका अपने पर्यावरण का साफ सुथरा रखे कहे, ज्यादा ज्यादा पेड़ पौधा लगावे कहे, कहे जब हमारा पर्यावरण है ना रही तो ना मिली आलू और ना मिली हमका तरकारी। और चलत चलत हम याद कर ली अपन उन महापुरुष का जिनके जयंती हम 28 मई का मनाबे।
0: जी दीदिया, ई महापुरुष है विनायक दामोदर सावरकर,
1: जिनका हम पंचे वीर सावरकर के नाम ते जानी थे। वो भारत के आजादी के बहुत प्रयास के निन रहे, वो समाज सुधारक रहे, कवि, इतिहासकार, चिंतक, वक्ता रहे और दूरदर्शी नेता के रूप में वो सदा याद की जात रही है। तो हम अपन श्रद्धा सुमन उनका अर्पित करी थे और हम उनके बताए रास्ते पर चली, यह उनके तय सच्ची श्रद्धांजलि हुई है।
0: जी दीदिया, हम पंचन का आपन बड़े बुजुर्गन के बात मानक चाहिए और उनके अनुभव ते लाभ उठावे चाहिए।
1: बहुत अनेक बात कहे बिटिया।
2: तो हमारे साथ एक बाल गोपाल हैं, बड़ी देर तुम्हार मुस्कुरा रहे हैं और कुछ सुनावा चाहते, तो पहले इनका नाम जान लीन जाए। भैया आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम अनीस सहाय है।
2: अनीस भैया आप कहाँ से आए हो?
3: मैं मॉडल हाउस लखनऊ से आया हूँ।
2: आप कौनी कक्षा में पढ़ा था?
3: मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ।
2: तो भैया आज हमका पंचन को कुछ सुनाई हो?
3: हाँ दीदिया।
2: कहाँ सुनाई हो?
3: आज मैं आपको गंगा पे कविता सुनाने जा रहा हूँ।
2: तो चलो सुनाओ फिर।
3: हर हर करती बहती गंगा, सबका मन हर लेती गंगा, खेत सींचती प्यास बुझाती, प्यारी प्यारी न्यारी गंगा, मुझ में मत कचरा डालो, सबसे कहती है गंगा, साफ रहूंगी तो सबको रखती रहूंगी चंगा, हर हर गंगे।
2: अरे वाह भैया। तो अनीस भैया बहुत निक बताए, गंगा में गंदगी नहीं डायरेक्ट है। और दूसर भैया है, आपके क्या नाम है भैया?
4: अर्क श्रीवास्तव।
2: अर्क आप कौन सी कक्षा में पढ़ा थो?
4: मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ।
2: अर्क भैया, अर्क माने होत का है?
4: अर्क का मतलब होता है सूरज।
2: हाँ, अर्क के कई अर्थ होते हैं, तो एक तो सूरज होएगा, दूसरा रस होएगा। तो भैया तुम सूरज की तरह चमकी हो फिर, है ना?
4: जी।
2: आज कहाँ सुनाई हो बंजन का?
4: मैं आपके सामने गंगा की एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। अमृत जैसा पावन पानी, गंगा की है यही निशानी, तन मन को है शुद्ध बनाती, खुशी की जैसे लहर उठाती, निकल हिमालय से इठलाती, सागर में जाकर मिल जाती, पाठ एक का है पढ़ा, मिलकर जीना है सिखलाती।
1: और अब समय हम पंचन ते कही रहा है कि विदा लेओ।
0: दीदिया, आज केर कार्यक्रम तो ज्ञान केर पिटारा रहा, गंगा मैया का धरती पर अवतरण, आकाशवाणी ते समाचार के प्रसारण हुए, चाहे यही हफ्ता केर दिवस, सबते बहुते जानकारी मिली।
1: ऐसन कार्यक्रम सुने तई हमते जुड़े रहो आकाशवाणी की डोर ते। तो हमार बाल गोपाल अपन बातें हमते साझा करेक तई ईमेल लिख ले
0: bmbg.airlko@gmail.com।
1: तो यह ईमेल के उपयोग जरूर करो और हमते अपन अनुभव साझा कीनो। और अब तो विदा ले की बिरिया आ गए, अगले बाल गोपाल कार्यक्रम में फिरते भेंट हुई, तब तक के लिए दियो अनुमति
0: श्रेया का
1: और राजलक्ष्मी दीदिया का।
5: जय हिंद, जै हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल गोपाल। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म अपनापन का ये गीत, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

और अब लीजिए सुनिए फिल्म शोले का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है किशोर कुमार ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत आर डी बर्मन का है।

और अब लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म धर्मवीर का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

फांसी, ये नाम उस फिल्म का जिसका गीत अब आप सुनेंगे। स्वर मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित के हैं, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। तो लीजिए सुनिए फिल्म फांसी का ये गीत।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म फकीरा का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

फिल्म फकीरा के इसी गीत के साथ आज का सदाबहार नगमी कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 1 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार

0: जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांक्सी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 4.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित कुछ सूचनाएं सुनिए। प्रभारी विलुप्त व्यक्ति राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार कुंवर परीक्षित सिंह निवासी 18A अवधपुरी सर्वोदय नगर इंदिरा नगर लखनऊ से दिनांक 5 मई 2026 से कहीं लापता हैं। कुंवर परीक्षित सिंह की आयु 29 वर्ष, कद 5 फुट 5 इंच और औसत चेहरा है। यदि कोई भी व्यक्ति इनके विषय में कोई जानकारी देना चाहता है तो उसे 5,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया जाएगा। कुमारी सुदामा पुत्री गुड्डू निवासी ग्राम बसैना मजरा जलालपुर थाना महिगवां जनपद लखनऊ से दिनांक 26 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। कुमारी सुदामा की आयु 18 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, सांवला रंग और गोल चेहरा है। तेज बहादुर सिंह ने सूचित किया है कि उनकी पुत्री राधा सिंह दिनांक 8 मई 2026 से कहीं लापता हैं। राधा सिंह जिनकी आयु 29 वर्ष, कद 5 फुट, गेहुआ रंग और गोल चेहरा है,

0: मुस्कान बानो, पुत्री सरताज खान उर्फ बबलू, निवासी लकड़ी मोहल्ला सदर, थाना कैंट, जनपद लखनऊ से दिनांक 5 मई 2026 से कहीं लापता हैं। मुस्कान बानो की आयु 20 वर्ष, कद 151 सेंटीमीटर, गेहुआ रंग और गोल चेहरा है और इनके दाहिने आँख के ऊपर जले का निशान है। लक्ष्मी मौर्या, पुत्री भगवान दीन, निवासी ग्राम सरकपुर सरैया, थाना बीकेटी, कमिश्नरेट लखनऊ, जनपद लखनऊ से दिनांक 3 मई 2026 से कहीं लापता हैं। लक्ष्मी मौर्या की आयु 18 वर्ष, कद 148 सेंटीमीटर, सांवला रंग और सामान्य चेहरा है। जिस किसी भी व्यक्ति को इन खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कोई जानकारी हो या मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करें। पता है, प्रभारी विलुप्त व्यक्ति, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, महानगर लखनऊ। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
5: विज्ञान जगत, हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:10 हुआ चाहते हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
6: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सख्त गर्मी और बढ़ती हुई बिजली की मांग के दरमियान रियासत में बिला तातुल और मेयारी बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कहा कि हर सतह पर मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए ताकि आम लोगों, किसानों, ताजिरों और सनअतों को बिजली के बहरान का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि महकमा तवानाई को गर्मी के इस मुश्किल दौर में पूरी हसासियत और तंदही से काम करना चाहिए। आज वज़ीर तवानाई अरविंद कुमार शर्मा और रियासती वज़ीर अखिलेश सिंह राजपूत की मौजूदगी में वज़ीर आला महकमा तवानाई, पावर कॉरपोरेशन और तमाम डिस्कॉम के अफसरान के साथ बिजली की फराहमी के निज़ाम का जायज़ा ले रहे थे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मेहनत और रोज़गार महकमे की मुख्तलिफ़ स्कीमों और प्रोग्रामों पर एक जायज़ा मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने चाइल्ड लेबर एजुकेशन स्कीम के बारे में बातचीत की, जो इस वक्त 20 अज़ला में चल रही है, और हिदायत दी कि इसे रियासत के तमाम 75 ज़िलों में नई दफ़ात के साथ नाफिज किया जाए। एक रिपोर्ट।
7: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को

0: व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी है कि महसूलात के मामलात को तेज़ी के साथ शफाफ और मेयारी तरीके से निपटाने को हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि ज़मीन और रेवेन्यू से मुतालिक मामलात में गैर ज़रूरी ताखीर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। वज़ीर आला ने वाज़ह हिदायत दी कि मुकर्रा मुद्दत के बाद भी ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात में मुतालिका अफसरान और अहलकारों की जवाबदही तय करके ज़रूरी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। कल लखनऊ में रेवेन्यू अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात के निपटाने की पेशरफ्त का जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला ने कहा कि टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम, जवाबदही और बरवक्त काम के ज़रिए रेवेन्यू अदालतों को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में मौसम से मुतालिक इब्तदाई वार्निंग सिस्टम को ज़्यादा दुरुस्त, तेज़ और अवाम पर मरकूज़ बनाने की हिदायत दी है। कल लखनऊ में रिलीफ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की एक जायज़ा मीटिंग में वज़ीर आला ने कहा कि कुदरती आफात के दौरान बरवक्त और दुरुस्त मालूमात बहुत सी जानें बचा सकती है, इसलिए मौसम की पेशगोई और वार्निंग के निज़ाम को सिर्फ तकनीकी इंतज़ाम तक महदूद रखने के बजाय मुअस्सर तरीके से आखिरी फ़र्द तक पहुँचाने के इंतज़ाम किए जाएँ। उन्होंने गाँव और हसास इलाकों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत करने, IVRS पंचायत सतह के लाउड स्पीकर्स, मकामी FM रेडियो, मोबाइल अलर्ट्स और सोशल मीडिया का वसी इस्तेमाल करने की हिदायत दी। रियासत के शहरी तरक्की और तवानाई के वज़ीर AK शर्मा की हिदायत पर बिजली महकमे में काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इस सिलसिले में मेरठ में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर योगेश कुमार को महकमा जाती कामों में लापरवाही बरतने पर फौरी असर से मुअत्तल कर दिया गया है। वहीं गाज़ियाबाद में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राहुल को भी अपने फ़राइज़ में संगीन लापरवाही बरतने पर फौरी असर से मुअत्तल कर दिया गया। सिविल सर्विसेज के लिए प्रीलिम्स 2026 का इम्तिहान आज मुनक्किद किया जा रहा है। इस बार सिविल सर्विसेज के इम्तिहान के लिए मेरठ, कानपुर और भुवनेश्वर में नए इम्तिहान मरकज जोड़े गए हैं। UPSC के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार ने आज मेरठ में इम्तिहान मरकज KV डोगरा लाइन का मुआयना किया और बताया कि मेरठ में तमाम इम्तिहान मराकज पर सारे इंतजाम अच्छी तरह किए गए हैं। डॉक्टर अजय कुमार ने यह भी कहा कि कमीशन का मकसद इम्तिहानी अमल को आसान, काबिल रसाई और मुअस्सर बनाना है। उन्होंने कहा कि नए मराकज के इजाफे से उम्मीदवारों को बेहतर सहूलियात मुयसर होंगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ के ज़रिए मुनक्किद मुंशी मौलवी सेकेंडरी और आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड इम्तहान 2026 के नतायज का कल ऐलान कर दिया गया। इस साल मदरसा बोर्ड के इम्तहान का नतीजा 88.26% रहा, जिसमें लड़कियों ने लड़कों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। रियासत के तकरीबन तमाम अज़ला में इन दिनों शदीद गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर है। बेशतर अज़ला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ कर गया है। बांदा रियासत का गर्म तरीन ज़िला बना हुआ है। बांदा के एडिशनल ज़िला मजिस्ट्रेट कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि इंतज़ामिया ने गर्मी और बचाव के लिए वसी इंतज़ाम किए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई ख़बरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम
3: आज इतवार है। प्रस्तुत है हास्य नाटिका बरखा दूर तू न जा।

0: अरे मम्मी, माना कि बरसात का मौसम आ चुका है, लेकिन बारिश तो अभी हुई नहीं। और एक अपने पापा हैं जो बरसात की सारी तैयारी करे धरे दे रहे हैं, रेनकोट और रेनी शूज लेकर आ गए।
1: हाँ मम्मी, और कल तो पापा ने हदी कर दी, मुझसे कह रहे हैं सारी कॉपी किताबें पन्नी में लपेट कर बैग में रखो, जैसे कि मैं कपड़े का झोला लेके जाती हूँ स्कूल में।
2: अरे बच्चों, क्यों सर खपा रहे हो? ये रेन कोट, ये छाता, ये पन्नी, अरे तुम्हारे पापा तो ना झक्की हैं, छींक शाम को आए और मुंह सुबह से

0: खोल लो।
1: अरे सुशीला, दफ्तर को देर हो रही है, कहाँ हो तुम यार? मेरे टिफिन बॉक्स भी नहीं रखा, और हाँ छाता कहाँ रख दिया?
2: छाता ढूंढ रहे हैं
3: पापा।
1: आज लगता है
2: छाता ढूंढ रहे हैं।
1: पानी बरसने वाला है, ठंडी हवा भी चल रही है, वाह मजेदार मौसम है।

0: जाओ मम्मा, मौसम बड़ा सुहाना है, पापा बुला रहे हैं।
1: अच्छा तुम लोग भी ना।
2: अजी आ रही हूँ, क्या हो गया? अरे छत पे गई थी बढ़िया डालने, सुबह से धूप अच्छी खिली है तो सोचा यही काम निपटा लूं। और रोज सुबह शाम तुम तो यही कहते हो। ये जो तुम्हारा टिफिन बॉक्स है ना, ये मैंने पहले ही तैयार करके टेबल पर रख दिया, डाइनिंग टेबल से उठा लो ना।
3: और छाता वो कहाँ रख दिया?
2: इतनी तेज धूप खिली हुई है, बारिश का मौसम आया है, बारिश नहीं आई, छाता लटका के कहाँ जाओगे? बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे कि पानी बरसने वाला है, छाता छाता करके सुबह से आफत की है। ये बताओ ना मौसम विभाग वालों से कि तुम्हारी क्या सुबह सुबह बात हो गई थी?
3: उफ, बड़ी गर्मी है और उमस भी है, इस पर ये बेसाब पसीना। अरे पब्ली।
0: हाँ पापा।
3: गुड्डू।
4: हाँ।
3: कहाँ हो तुम लोग भाई?
4: यही हूँ पापा।
3: भाई कोई ठंडा पानी पिलाएगा?
0: आई पापा, ये लीजिए ठंडा ठंडा घड़े का पानी। अरे पापा ये क्या है, ये मोटा सा काला काला बंडल?
3: अरे ये प्लास्टिक शीट है, मोटी है और बड़ी मजबूत है बेटा। वो अपनी छत पिछले साल कहीं कहीं से टपक रही थी ना बेटा, तो ये उसी का इंतजाम है। और मम्मी कहाँ है तुम्हारे?
2: अरे तुम तो बस घर में घुसे नहीं कि माला जपने लगते हो। अरे आ गई भाई, अचार वचार भी मैंने कहा आज तेज धूप है, तुम्हारे हिसाब से तो बारिश आने वाली है, तो मैंने कहा जरा धूप दिखा दूं। और चाय बना रही हूँ, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ भी हैं, और सुबह धनिया की मैंने बिल्कुल शानदार हरी हरी चटकदार चटनी बनाई है।
3: अरे चाय तो ठीक है, पर पकौड़ी ना बनाना इतनी गर्मी में। वो तो मैं तभी खाऊंगा जिस दिन झमाझम पानी गिरेगा। आहा, भीगा भीगा मौसम और गर्म पकौड़ी, साथ में चटनी।
2: क्यों बच्चों, हम लोग तो पकौड़ियों के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग तो गर्म पकौड़ी खा रहे हैं ना।
0: हाँ मम्मी।
3: अरे काहे का इंतजार, बस तुम देखना जल्दी ही ये मौसम आएगा। और सुनो ये देखो, ये मोटी प्लास्टिक शीट भी मैं ले आया हूँ ऊपर छत पर डालने के लिए। अब मरम्मत तो हो नहीं पाई छत की, तो इस बार इसी से काम चलाना पड़ेगा। थोड़ा अंधेरा सा भी हो जाए तो चुपचाप हम लोग मिलकर ये शीट छत पर लगा लेंगे, बस फिर बरसात की अपने तैयारी पूरी।
2: ओहो इतनी जरूरत नहीं आ पड़ी है, क्यों आफती आए रहते हो? अरे भाई कहाँ बरस रहा है पानी, और इस बार तो बार बार अखबार में टीवी पे यही आ रहा है कि मौसम में सूखे के आसार दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई मौसम बरसात का जरूर शुरू हो गया है, लेकिन बरसात दिख नहीं रही है। एक दिन मिस्त्री को बुला लो, अभी टाइम है, छत की मरम्मत करा लेते। तुमने शीट में पैसा वैसे ही बर्बाद किया।
3: अरे भगवान बेकार नहीं खरीदी है, तुम देखना ये बड़े काम की चीज है। अच्छा तुम चाय बनाओ, और तब तक मैं इस शीट को छत पर डालकर इसकी जरा मजबूती देख लेता हूँ।
2: चलो ठीक है, तुम देखो और तुम इसको एडजस्ट करो, मैं तब तक चाय बनाती हूँ।
3: गुड्डू।
4: हाँ पापा।
3: इधर आओ बेटा।
4: आया पापा।
3: देखो इस शीट को तुम इधर से पकड़ो, ठीक है?
4: हाँ पापा।
3: और अपनी तरफ सरा जोर से खींचो।
4: खींच रहा हूँ पापा।
3: हाँ, थोड़ा और जोर लगा बेटा। हाँ अब बस यही रोके रखना, ठीक है?
4: ठीक है पापा।
3: और बबली।
0: हाँ पापा।
3: इधर आओ बेटा।
0: आई पापा।
3: देखो तुम इस तरफ से इधर से चलिए।
0: हाँ,
3: ठीक है?
0: हाँ,
3: और कस के पकड़े रखना शीट को। हाँ बेटा छोड़ना बिल्कुल मत।
0: हाँ।
3: बस बस बस बस बस
0: ऐसे।
3: हाँ बस बस ठीक है बेटा, ठीक ठीक यही ठीक है।
2: अरे भाई तुम्हारी पन्नी का साइज तो ठीक ही है, लेकिन सुनो तो जरा, ये रुकेगी कैसे? जब तुम्हारे हिसाब की झमाझम बारिश आएगी तो तेज हवा भी तो चलेगी ना।

0: अरे जरा धीमी बोलो सुशीला, क्या पड़ोसियों की भी बताओगी? लेकिन बात तो तुम्हारी सही है, इसको किसी तरह रोकना होगा, नहीं तो हवा इसको उड़ाकर हमारी छत से पांडी जी की छत पर ले जाएगी।
1: हाँ, और पांडे जी को मुफ्त में पन्नी मिल जाएगी। सॉरी, पन्नी नहीं, वो तुम्हारी मोटी प्लास्टिक।
2: पापा ऐसा करते हैं, इसके चारों कोनों को ईटे से बांध देते हैं। ईटे के वजन से ये उड़ेगी नहीं।
0: हाँ, ये हुई ना पते की बात।
1: और भाई, इंटेलिजेंट बेटा किसका है? आखिर पापा का इंटेलिजेंट बेटे ने कितनी अच्छी ट्रिक बताई। और गुड्डू, जरा नीचे देख लो, आंगन के कोने में पुरानी ईंटे रखी है, उन पे भी काई जमी हुई है, जरा ऊपर ले आओ। हाँ, और बबली, भैया के साथ तुम भी जाओ, भैया की हेल्प करो।
3: जी मम्मी। आ गई ईंटे। ओफो, कितनी भारी है, जल्दी से रख देती हूँ।
2: ये लो मम्मी।
1: अरे मुझे मत दे भाई, पापा को दे।
0: लाओ आटा, लाओ लाओ, शाबाश। अब इस पर वजन रख देते हैं। वाह, अब ये शीट उड़ेगी नहीं, अब रात में चैन की नींद भी आएगी। पानी भले कितना बरसे, हम तो भाई अब निश्चिंत हैं।

0: मम्मी पानी तो बरसा नहीं, आज फिर तेज धूप निकली है। आखिर कब बरसेगा पानी, कितनी गर्मी लगती है। और स्कूल से वापस आते टाइम तो हालत ही खराब हो जाती है।
1: हाँ बिटिया, गर्मी तो बहुत है, पानी बरसे ना बरसे, लेकिन ये जो तेरे पापा ने ना ईंट से दबा दबा के जो शीट लगाई है ना, अब इंद्र भगवान को सोचना पड़ेगा कि तेरे पापा ने इतनी मेहनत कर दी, भाई अब तो बरस जाए क्यों भाई।
0: अरे मम्मी, और तो और स्कूल में मैम बता रही थी कि दूसरे शहरों में खूब पानी बरस रहा है, कहीं कहीं तो भैया बाढ़ ही आ चुकी है और स्कूल कर दिए गए हैं बंद। पता नहीं हमारा स्कूल कब बंद होगा।
1: हाँ हाँ, मैं तो खूब जानती हूँ तुम दोनों के नखरे, बस स्कूल बंद करने का इंतजार कर रहे हो ना। अरे भाई, ऐसा भी होता है कि मौसम में कभी कभी बड़ा बदलाव आ जाता है। अरे हमारे बचपन में सर्दी की क्या धूप पड़ती थी, और एक महीने के लिए स्कूल बंद हो जाता था। तुम्हारी छुट्टियों की बात सुनकर मुझे अपनी छुट्टियां याद आ गई। और पता है बबली, स्कूल एक महीने बंद होता था ना जाड़े में, तो जगह जगह अलाव जलाते थे और हम लोग भी अंगीठी जलाकर तापते थे।
0: अच्छा।
1: और हाँ, बरसात भी खूब होती थी और हम लोग छतरी लेकर स्कूल जाते थे और रात को मेंढक टर टर करते थे, और हमारी अम्मा गर्मा गर्म गुलगुले और अनरसे और पकौड़ी बनाती थी।
0: वाह मम्मी, क्या बात है, मजे तो आप ही के थे। मम्मी, अब मौसम ऐसा क्यों हो गया है, हम बारिश की राह देख रहे हैं। और
1: बेटा, पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन है भाई, बढ़ती हुई आबादी, धुआं छोड़ती फैक्ट्री, गगनचुंबी इमारतें और हरियाली का कम होना, भाई इससे लगता है कि मौसम बदल रहा है। मौसम को क्या पता कि इस बारिश के साथ हमारी कितनी चीजें हमारे पेट से जुड़ी हुई हैं, क्यों भाई।
2: हाँ वो तो है।
1: तुम स्वाद की बात सुनकर इतनी ठंडी आहें क्यों भर रहे हो भाई।
0: तब तो मम्मी, हम लोगों को खूब सारे पौधे लगाने चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए और लोगों को भी इस बारे में बताना चाहिए।
1: बिल्कुल बेटा, ये तो जरूर करना चाहिए।
0: अरे मम्मी देखो ना, कितनी ठंडी हवा चल रही है, बदली सी आ रही है, देखो देखो लगता है पानी बरसने वाला है।
1: हाँ हाँ बेटा, लग तो मुझे भी रहा है। अरे बबली, दौड़कर छत के सूखे कपड़े उतार ले और वो जो दाले मैंने सूखने रखे वो भी उठा लाना बेटा। अच्छा चल, मैं भी चल रही हूँ।
0: हाँ मम्मी चलिए चलते हैं।
2: वाह वाह, आज तो खूब पानी बरसा भाई, मजा आ गया। अरे सुशीला कहाँ हो भाई, अब तो पकौड़ी खिलवा दो। जिंग जिंग।

0: अरे बारिश में ही तो तुम मुझे देखने आए थे पहली बार, और मैंने तब तुम्हें पकौड़ी ही तो बना के खिलाई थी।
1: बहुत याद है भाई, वाह।
0: और हाँ सुनो, आज तो पकौड़ी के साथ साथ मैं तुम्हें मीठे अनरसे की गोलियां भी खिला रही हूँ। अरे गुड्डू।
2: हाँ मम्मी। मम्मी आज हम लोग बरामदे में रस्सी बांधकर झूला झूलेंगे।
3: हाँ मम्मी, और ये देखो हमने मोटी रस्सी का इंतजाम भी कर लिया है, और मेरी कागज की नाव ये भी तो पानी में तैरेगी।
0: हाँ हाँ भाई, मोटी रस्सी इतनी, तेरे पापा झूले पे पीछे खड़े होके मुझे पेंगे देंगे ना, तो भाई रस्सी बहुत मजबूत होनी चाहिए। पापा का वजन पकौड़ियाँ खा खा के थोड़ा बढ़ भी गया है। और लेकिन एक बात ये है कि इस बार बबली गुड्डू हमें ढेर सारे पौधे लगाने हैं, और गुड्डू तू अपने स्कूल में भी पौधे ले जाना।
2: ओके मम्मा।
3: जी मम्मी।
0: तो ओके, फिर बारिश और बारिश की व्यवस्था ठीक?
3: एकदम ठीक।
0: तो बरखा दूर तू न जा, न जा, न जा, गर्मी बहुत लग रही है, बरखा दूर तू न जा, न जा,
4: न जा,
0: न जा, न जा।

0: लपक झपक तू वार पदर मरण परत तू कार पदर लपक झपक लपक झपक लपक झपक
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हास्य नाटिका बरखा दूर तू ना जा। आलेख विमल अवस्थी, भाग लेने वाले कलाकार सुरेंद्र राजेश्वरी, अनामिका, अनुष्ठा मिश्रा, संपूर्ण शुक्ला। निर्देशन एवं प्रस्तुति डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज इतवार है, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय वट।
1: अक्षय वट परंपराओं, संस्कृति, यादों, अनुभवों और संवेदनाओं का संगम।
2: श्रोताओं नमस्कार। अक्षयवट कार्यक्रम में मैं नीना सोनकर आप सबका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, कहा जाता है कि उम्र का बढ़ना लाजमी है। बढ़ती उम्र के साथ कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी होती हैं, और आज हमारी बातचीत का विषय भी यही है कि बढ़ती उम्र में होने वाली आम समस्याएं। आज बतौर एक्सपर्ट हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने वरिष्ठ फिजिशियन साथ ही रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी जी को। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि बढ़ती उम्र में कौन कौन सी समस्याएं अक्सर परेशान करती हैं।
3: बढ़ती उम्र में शरीर के सारे अंग पुराने होने लगते हैं और इसमें कई तरह की परेशानियां होती हैं। इसको बीमारियां न कह करके परेशानियां होती हैं। उन परेशानियों में जैसे ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज्यादा रहती है, शुगर की संभावना रहती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जोड़ घिसने लगते हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस रहती है, और जो संवेदन वाली इंद्रियां हैं जैसे कि हियरिंग, सुनने की क्षमता थोड़ी कम होती है, रोशनी भी कम होने लगती है, कैटरेक्ट और सब चीजें होती हैं। ये सब चीजें बायोलॉजिकल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। इसको रोग ना मान करके ये देखा

0: जाए कि ये समय के अनुसार होना होता है। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो मानसिक है, क्योंकि अवसाद होता है, घबराहट होती है, असुरक्षा की भावना होती है, और ब्रेन में भी इस तरह के परिवर्तन होते हैं जिससे कि पूरी तरह से मानसिक संतुलन हो सकता ना रह पाए। तो ये सब चीजों को हमें समझना होगा कि शायद ये बीमारी ना हो करके ये समय का ही प्रभाव है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, और इसमें हम इसको किस तरह से पॉजिटिव तरीके से समझें और लोग भी समझें जिससे इसको हम अच्छी तरह से डील कर सके।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत सी बीमारियों का जिक्र किया कि बढ़ती उम्र के साथ साथ ये समस्याएं होती हैं, और आपने ये भी बताया कि ये आम बात है, क्योंकि जब शरीर के अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ने लग जाते हैं तो इस तरह की समस्या होना लाजमी है। अब हम सिलसिलेवार बात करेंगे जिनका अभी आपने जिक्र किया कि अनिद्रा का होना, हृदय रोग का होना, और भी बहुत सी आपने बातें कही। तो सबसे पहले ये बताइए कि अनिद्रा की समस्या बहुत से बुजुर्गों में देखी गई है, सो रहे हैं अचानक से उनकी नींद टूटती है और वो उठकर बैठ जाते हैं, और कई बार तो बार बार रात में उठकर बैठना और फिर कुछ सोचते रहना, मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि उनका मन भी ऐसे समय में विचलित होता है। तो ऐसा क्यों होता है और अनिद्रा को हम कैसे दूर कर सकते हैं, एक अच्छी नींद वो कैसे ले सकते हैं?
0: इस उम्र में अनिद्रा प्रायः रोग की वजह से नहीं होता, यह सामाजिक पारिवारिक समस्याओं की वजह से होता है, क्योंकि उसमें अकेलापन महसूस होता है
1: जी।
0: और एक डर सा रहता है, हो सकता है कि अकेलेपन की वजह से जो मन की धारणाएं हैं, मन की बातें और सुनने वाला कोई ना हो, यही सब सोचते सोचते फिर नींद नहीं आती है। कुछ बीमारियां भी होती हैं जिसमें नींद कम आती है, लेकिन अधिकतर मैं देखता हूं कि अगर कोई संतुष्ट है, मन से संतुष्ट है, चिंता बहुत नहीं है, अपने को किसी कार्य में व्यस्त रखता है, तो अनिद्रा की समस्या फिर नहीं आने पाती है। इसको बीमारी न समझ के देखें कि ये क्यों ऐसा हो रहा है और किस तरह से अमुक परिवेश में अपने को इस तरह से ढालें, व्यस्त रखें कि जिससे कि नींद आए।
1: जी डॉक्टर साहब, अकेलापन और मानसिक तनाव ये भी कहीं ना कहीं वृद्धावस्था में बुजुर्गों को परेशान करते हैं कि उनको लगता है कि अब तो हम अकेले हैं, बच्चे बाहर चले गए हैं नौकरी करने के लिए, तो हम अकेले क्या कर पाएंगे, कहीं हमें कुछ हो गया। और ऐसे समय में ये भी देखा गया है कि वो एक तरह से सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि इनकी तो इतनी उम्र हो गई है, अगर इन्हें हम कभी बुलाते भी हैं तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बड़बड़ाते हैं। अक्सर लोगों को ये कहते भी सुना गया है कि हम इन्हें बुलाकर करेंगे क्या?
0: देखिए, हर उम्र में आदमी को अपने हिसाब से सामंजस्य रखना पड़ता है
1: जी,
0: बचपन में भी और जब नई उम्र होती है तब भी, और जब बुजुर्ग होते हैं तब भी। परिस्थिति के अनुसार से अपने व्यवहार को ठीक रखना बहुत ही आवश्यक है। इसको समझना चाहिए बुजुर्ग को भी, और इसको समझना चाहिए परिवार के लोगों को भी जो उनके साथ रहते हैं, कि जो मानसिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होने की वजह से उनकी भाषा में, उनकी शैली में, और जैसे गुस्सा होना, इस तरह ये चीज स्वाभाविक है, तो इसको समझें। हो सकता है उम्र का प्रभाव हो, ये कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है। और दूसरे जो बुजुर्ग हो रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि अगर ये परिवर्तन होते हैं तो उसको एक एजिंग प्रोसेस समझ करके बीमारी ना समझें, और देखें कि किस तरह से अपने व्यवहार में, अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, कई बार ये देखा गया है कि जब एज बढ़ती है तो शरीर में कमजोरी भी आती है
0: जी।
1: और कई लोगों को तो ये भी देखा गया है कि चलते चलते अचानक उनको ऐसा लगता है कि हम गिर जाएंगे, बैठ जाएं, पैरों में ताकत नहीं रह जाती है, और ऐसा लगता है कि दो कदम भी चलना दूभर है। क्या कहना चाहेंगे
0: इसमें? जैसे मैं देखता हूँ लोग अक्सर कमजोरी जो बताते हैं उसमें देखता हूँ कि ये देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर कई दवाइयां ले रहे होते हैं
1: जी,
0: ब्लड प्रेशर की है, शुगर की है, और जैसे नसों की न्यूरोपैथी उसकी दवाइयां हैं, कुछ दर्द की दवाइयां हैं। मैं अक्सर देखता हूँ इतनी सब दवाइयां लेने की वजह से कमजोरी बढ़ जाती है
1: जी।
0: और जैसे एक एग्जांपल दूं, ब्लड प्रेशर की दवा में एक दवा होती है जिससे पेशाब ज्यादा होता है, सोडियम कम हो जाता है
1: जी।
0: तो बुजुर्गी में अगर कमजोरी बहुत आ रही है तो हम इसको जरूर देखते हैं कहीं सोडियम कम तो नहीं है। दूसरे, अगर शुगर का रोग है तो शुगर में अगर कंट्रोल अच्छा नहीं है, कम होने की वजह से भी कमजोरी आती है और ज्यादा होने की वजह से भी कमजोरी आती है। और इसमें देखा होगा कि आपने बहुत लोग जैसे ठीक से भोजन नहीं कर पाते, खाना नहीं पचता है
1: जी,
0: या इतनी सुविधा नहीं है, तो भोजन में कुछ ऐसे तत्वों की कमी हो जाती है, उसमें विशेषकर हम बताना चाहेंगे आयरन की और विटामिन B12 की
1: जी।
0: इसकी कमी से बेहद कमजोरी होती है, नसों में कमजोरी होती है, और इसलिए अब चलने फिरने में लड़खड़ाहट भी हो सकती है। तो इस परिस्थिति में मेरा संदेश ये रहेगा कि जितनी भी दवाइयाँ चलती हैं, एक बार अपने अच्छे अपने फिजिशियन को दिखा के समझ लें कि दवाइयाँ

0: इतनी जरूरी है उतनी है, दवाइयों का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है और दवा की वजह से किसी नुकसान होने की संभावना तो नहीं है
1: जी।
0: एक और बताना चाहेंगे
1: जी
0: कि जो लड़खड़ाहट होती है, देखा होगा कि अनिद्रा की वजह से, घबराहट की वजह से बड़े आराम से दवा दे दी जाती है और लोग लेना भी पसंद करते हैं, इससे रिफ्लेक्सेस कमजोर हो जाते हैं
1: जी।
0: और अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग अगर गिरते हैं तो दवा की वजह से होता है कि दवा की वजह से सुस्ती रहती है, खड़े होते ही ब्लड प्रेशर फॉल करता है और गिर जाते हैं। तो इसलिए दवाइयों का प्रभाव भी अलग होता है क्योंकि दवा का जो पाचन है वो कम नहीं हो पाता।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है
1: जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने जो जिक्र किया कि हाई ब्लड प्रेशर की जब दवा ली जाती है तो शरीर में सोडियम की कमी होती है और मूत्र ज्यादा आता है, तो कई बीमारियों के लिए जो एक साथ दवाइयां बुजुर्ग लेते हैं वो खतरनाक भी हो सकता है। आपने ये भी बताया कि उससे भी कमजोरी आती है, पार्किंसंस का आपने जिक्र किया, अवसाद का, एसिड रिफ्लेक्स का जिक्र किया, आपने ये भी जिक्र किया कि हृदय की अगर कोई दवाई लेता है, मधुमेह की दवाई लेता है या फिर गठिया की दवाएं, यानी एक साथ जो दवाओं का मिश्रण है जो लिया जाता है वो कहीं ना कहीं बुजुर्गों में दिक्कत पैदा करता है।
0: बिल्कुल
1: जी। उम्र के साथ विशेषकर महिलाओं में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है जिसे समय पर पहचानना मुश्किल हो सकता है, तो महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर महिलाओं को ये लगता है कि अब उम्र बढ़ गई है, यानी 60 हो गई है, 65 हो गई है, कैंसर नहीं हो सकता। विशेष तौर पर हम स्तन कैंसर की बात करना चाहेंगे।
0: जैसे आपने कैंसर का जिक्र किया, कैंसर एक एजिंग प्रोसेस का रोग है
1: जी।
0: जैसे जैसे कोशिकाएं हमारी पुरानी होती हैं उनमें मरम्मत करने की क्षमता कमजोर हो जाती है और कैंसर की वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कैंसर की संभावना भी बढ़ती जाती है
1: जी।
0: वो कैंसर किसी भी अंग विशेष का हो सकता है, जैसे महिलाओं का आपने जिक्र किया तो इसमें यूट्रस से, सर्विक्स से संबंधित कैंसर हो सकता है
1: जी।
0: साथ में मैंने देखा है कि जो ब्लड बनता है जहां से, बोन मैरो से, वहां भी इतनी कमजोरी सेल्स कमजोर हो जाते हैं वहां कैंसर पैदा हो सकता है
1: जी।
0: तो इसके लिए अगर महिलाओं को कोई भी लक्षण हो, जैसे कोई गांठ के दिखाई पड़ा, तो संकोच न करें या ना सोचें कि ऐसा इस उम्र में क्या फायदा दिखाने से, अगर होगा अभी तो क्या ठीक हो सकता है, क्यों लोगों को परेशान करें, ऐसा ना सोचें, क्योंकि आजकल कैंसर का इलाज बहुत हद तक संभव है और अगर कैंसर अपने प्रारंभिक अवस्था में अगर उसकी डायग्नोसिस हो जाती है तो पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। इसलिए इसमें संकोच की आवश्यकता नहीं। अक्सर मैं देखता हूँ कि संकोच की वजह से लोग शुरू में बताते नहीं और मालूम तब पड़ता है जब ये लाइलाज हो जाता है
1: जी। डॉक्टर साहब, असुरक्षा की भावना, मान लीजिए कोई एक जना रह गया है, जीवन ऐसा ही है और कहीं कहीं पर पति पत्नी दोनों हैं, तो असुरक्षा की भावना हमेशा बनी रहती है, चाहे कोई अकेला है या फिर दो एक साथ रह रहे हैं पति पत्नी, तो जो असुरक्षा की भावना है वो बढ़ती ही जा रही है, खासकर शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, लोगों को अक्सर ये लगता है कि हम अकेले हैं, क्या कर पाएंगे, तो बुजुर्गों को आप क्या कहना चाहेंगे कि उम्र तो एकमात्र आंकड़ा है, कल 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 और हो सकता है कि उसके ऊपर भी जाना है, ये लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है आपकी जीवन शैली कैसी है, किस तरह से आप सोचते हैं, क्योंकि नकारात्मकता जो है, जो शरीर में अच्छे हार्मोन्स होते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं नष्ट करती है
0: जी। देखिए, जीवन तो उपहार है ईश्वर का
1: जी
0: और एक एक क्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
1: बिल्कुल।
0: बुजुर्ग हैं, जवान है, इसका कोई मतलब नहीं, बस सांस ऊपर वाला देता है और चलती रहती है, तो हमें इसको पॉजिटिव वे में लेना है और ये सोचना है कि किसी विशेष परिस्थिति में हमें किस तरह व्यवहार करना है, अपने लाइफ स्टाइल को क्या रखना है, अपने को व्यस्त कैसे रखना है, क्योंकि ये सोच करके आगे क्या होगा इससे कुछ हासिल नहीं होता। वर्तमान में जीने की कोशिश करें और अपने असुरक्षा ही नहीं बल्कि ये देखें कि अपने को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, उसमें सुरक्षित रखने के लिए ध्यान दें कि भाई आप अपने को गिरने से बचे, जैसे होता है कि फर्श बहुत चिकना ना हो, रोशनी अच्छी हो, उठें तो बहुत अचानक ना उठें, और दवा को समय से लें, समय समय पर जांच कराते रहें, पूरा व्यस्त रखें कि हम अपने शरीर को, अपने मन को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, और ईश्वर का धन्यवाद दें कि अगर उन्हें उम्र में मिली है तो उसको पॉजिटिव वे में लें और दोस्तों में समय बिताएं, जो पठन पाठन करते हैं उसमें ध्यान दें, बहुत तरह की अपना जो भी हॉबी है करें, इसको पॉजिटिव तरीके से लें कि हर दिन अपना एक उपहार समझें और उसको जीने की कोशिश करें।
1: डॉक्टर साहब, अब कुछ अन्य समस्याएं, रोजमर्रा के कामों में आने वाली समस्या के साथ साथ कभी कभी बुजुर्गों में व्यक्तित्व में बदलाव भी आता है। भाषा का संदर्भ या तात्पर्य इस बात से है कि जब उनकी सोचने समझने की क्षमता जाती रहती है तब उनको ये लगता है कि जो कुछ भी वो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। कभी कभी क्रोधवश वो कुछ अनाप शनाप घर के सदस्यों को, जहां बहुएं भी हैं, बेटियां भी हैं, बोलते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो क्या कहीं ना कहीं घर के सदस्यों का व्यवहार इस तरह से उनको कहना चाहिए कि प्रोवोक करता है कि ये उनकी भाषा हो गई है, क्योंकि हर बुजुर्ग को ऐसा नहीं होता है, क्या कहना चाहिए?

0: इसमें अगर ऐसा हो रहा है तो एक परीक्षण हो जाना चाहिए कि यह किसी रोग की वजह से है या बढ़ती उम्र से है या और किसी बात से है। जैसे अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है, आजकल दवाइयां भी आती हैं जो उसको किसी हद तक कंट्रोल भी कर सकती हैं। और इस बात को घर वालों को भी मालूम होना चाहिए कि जैसे छोटा बच्चा है, अगर वो ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, बच्चा है, वो नहीं समझ पाता, उसका भी ब्रेन उतना वाले डेवलप नहीं हुआ है, नहीं समझ पाया हो, इसी तरह से बुजुर्ग का होता है। लेकिन इसमें भी देखना चाहिए कोई बीमारी ना हो, कोई शारीरिक रोग ना हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एक उदाहरण बताएंगे, विटामिन B12 की कमी।
1: जी,
0: विटामिन B12 प्रायः दूध, दही, मांस, अंडे में होता है, ये वेजिटेबल में नहीं होता। तो जो इसका सेवन कम करते हैं, दूध, दही, ऐसी चीजों का, उनमें विटामिन B12 कम होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, और ये ब्रेन के और नसों के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरा उदाहरण है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की कमी में भी व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, तो लोग समझते हैं कि ये

0: रिएक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरा उदाहरण है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की कमी में भी व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, तो लोग समझते हैं कि ये बुजुर्गी की वजह से केवल है
1: जी।
0: तो इसके पहले कि समझें कि ये केवल एजिंग की प्रोसेस की वजह से है, और शारीरिक बीमारियों को भी परीक्षण करके देख लें कहीं ये रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है।
1: जी डॉक्टर साहब, कहने का मतलब ये है कि अगर उन्हें इस तरह की कोई समस्या हो भी रही है बुजुर्गों को, तो समय रहते विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। आपने ये भी बात कही कि एक पारिवारिक डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है, जिसे समय समय पर वो चेकअप कराते रहें कि कहीं उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। आपने पॉजिटिव रहने की बात की कि सकारात्मक रहें बुजुर्ग, ऐसा ना सोचें कि कहीं कुछ हो जाएगा, और प्रत्येक दिन को एक उपहार समझें, क्योंकि समय कभी ऐसा नहीं है कि बुजुर्गों के लिए ही ऐसा होता है, कभी भी किसी को भी कुछ भी हो जाता है, हम लोग सुनते भी हैं। तो लाइफ को, जीवन को एक उपहार समझे प्रकृति का, और उसे भरपूर जिए, और कुछ दे सकते हैं समाज को वो दें, अपने आप को व्यस्त रखें। डॉक्टर एके त्रिपाठी जी, आप कुछ और कहना चाहते हैं?
0: इसमें यह है कि जैसे आपने पारिवारिक डॉक्टर बताया
1: जी,
0: देखिए आजकल विशेषज्ञ का जमाना है, हर समस्या के लिए हर डॉक्टर होते हैं
1: जी।
0: तो मैं देखता हूँ कि इस समय उनको करीब 5-6 डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। जरूरी है, जाना भी चाहिए, लेकिन एक ऐसा फिजिशियन अपने पास रखें, अपने संपर्क में, कि जो सारी दवाइयों को देख करके समझा के देखे कि इसमें दवा किस तरह से ले जिससे कि कोई नुकसान ना होने पाए
1: जी।
0: क्योंकि जाते हर जगह है लेकिन यही शिकायत करते हैं, साहब अभी कमजोरी हमें लग रही है
1: जी।
0: इसका ध्यान रखें। और दूसरा यह है कि नजरअंदाज न करें, क्योंकि आजकल चिकित्सा विज्ञान इतना बढ़ गया है कि हर चीज का इलाज है, इसलिए कोई परेशानी हो तो ये सोच के नजरअंदाज ना करें कि उम्र हो गई है क्या फायदा
1: जी,
0: जिससे कि हर चीज को कंट्रोल रखें और जब तक जीवन है उसको खुशी खुशी और पॉजिटिव में बिता सकें
1: जी। डॉक्टर ए के त्रिपाठी जी, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी, जिसका विषय था वृद्धावस्था में होने वाली आम समस्याएं। आपने अपना कीमती समय आकाशवाणी लखनऊ को दिया, इसके लिए आपको हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं।
0: धन्यवाद।
2: अक्षयवट, परंपराओं, संस्कृति, यादों, अनुभवों और संवेदनाओं का संगम। अक्षयवट।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षयवट, हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:45 हुए हैं। दीजिए सुनिए संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:50 हुए हैं। प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जवानों के लिए।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म फौजी के इस गीत के साथ। स्वर मोहम्मद रफ़ी, मन्नाडे, आशा भोसले, मीनू पुरुषोत्तम का है। इसे लिखा है MG हसमत ने और संगीत सोनिक ओमी का है।

इस गीत को सुनना चाहते हैं। बुलंदशहर से राम प्रकाश टप्पा, राहुल, ललित, अनिल, पिंकू, विजेंद्र, आशा, सोनू और बघेल परिवार। अलीगढ़ से प्रेम शंकर, रोहित, शीतल, शिवानी, पूजा, अंजू, वर्षा और पवन। तो लीजिए सुनिए आप सबके अनुरोध पर फिल्म फौजी का ये गीत।

सुनने का अनुरोध करते हैं आप सब। रामजीत, अनुराग, आयुष, शौर्य, विराट, अशोक, सुरेंद्र शर्मा, केशव शर्मा, गौरव शर्मा, हर्षद सिंह, इंदिरा नगर लखनऊ से, राकेश कुमार वाराणसी रिजर्व पुलिस लाइन से, सुमित श्रीवास्तव, मोहित सिद्धू, संजय सिंह, राम अवध यादव हेड कांस्टेबल पुलिस लाइन प्रयागराज से, शिव प्रसाद, राम प्रसाद, विजय कुमार और बिट्टू हरिकेश हाई कोर्ट लखनऊ से, हेड कांस्टेबल लक्ष्मण प्रसाद, हेड कांस्टेबल विनेश यादव, हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह, शिवम देवांश माही, CISF दिल्ली से, रामजीत, अनुराग, आयुष और विराट, अशोक, कार्तिकेय कुमार, चंद्रमा यादव, घुड़सवार पुलिस सब इंस्पेक्टर, स्वर्ण पदक विजेता पुलिस लाइन लखनऊ से। तो दीजिए सुनिए आप सबके अनुरोध पर फिल्म दुश्मन का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कर्तव्य से स्वर लता मंगेशकर के, गीत के बोल कैफी आजर के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। सुनने का अनुरोध किया है सीआरपीएफ नई दिल्ली से हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव, अनामिका अनुराग और

बीर कुमार और उत्तरा केलकर ने इसे सुनने का अनुरोध किया है। बसंत कुमार ने ग्राम और पोस्ट पैतेपुर महमूदाबाद सीतापुर से, पुलिस लाइन बाराबंकी से रंजीत सिंह मुन्नी सिंह, पलिया मसूदपुर बाराबंकी से अंजनी कुमार, उजरवारा पुरवा फतेहपुर बाराबंकी से आदर्श वर्मा। तो लीजिए सुनिए आप सबके अनुरोध पर फिल्म इंसानियत का देवता का ये गीत।

इस गीत के साथ ही आज का जवानों के लिए कार्यक्रम अब समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा को। फौजी भाइयों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण

0: जाएं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
2: These would be the principles with which we would approach that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमरीकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या

0: बाबत जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @xiirnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेहुंग ने शांसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल विनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों

0: प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे दीप चंद्र निषाद से भेंटवार्ता, जिसका विषय है नींबू घास की उन्नत खेती। आपसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां आप औषधि खेती से जुड़े हैं और आपके पास ऐसी परती, बंजर या अनुत्पादक जमीन है, तो आप उसमें औषधि फसलों में लेमन ग्रास यानी नींबू घास की खेती कर सकते हैं। इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय औषधि और सगंध पौधा संस्थान लखनऊ से दीप चंद निषाद। स्वागत है कार्यक्रम में। दीपचंद जी, ये बताएं कि जहां किसान भाई बहन लेमन ग्रास यानी नींबू घास की खेती करना चाहते हैं तो क्या कुछ संभावना है?
4: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, नींबू घास जिसको जराकुश तथा मालावार घास के नाम से भी जाना जाता है,
3: और लेमन ग्रास भी,
4: इसको लेमन ग्रास भी कहते हैं, मुख्य रूप से किसान जो है जराकुश के नाम से जानते हैं। और इसकी खेती भारत के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु में की जाती है,
3: यानी कई राज्यों में संभावना है।
4: इसमें जो मुख्य पोषक तत्व पाया जाता है वो सिट्रॉल होता है
3: जी,
4: जिसका उपयोग हम साबुन, डिटर्जेंट, सगंध उद्योगों में किया जाता है,
3: यानी कॉस्मेटिक में भी होता है, दवाइयों में भी होता है
4: जी बिल्कुल,
3: और अरोमा थेरेपी में भी होता है।
4: हाँ, अरोमा थेरेपी में भी इसका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। ऐसे किसान जिनके पास बहुत सारे खेत ऐसे होते हैं जो परती पड़े हुए हैं, बंजर हैं, जिनमें वो बहुत सारी फसलें नहीं ले पा रहे हैं, उसरीली भूमियां हैं, तो उसमें किसान जो है लेमन ग्रास की खेती कर सकते हैं।
3: यानी अपने प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं हैं लेमन ग्रास की यानी नींबू घास की।
4: जी, अपने प्रदेश में लेमन ग्रास की बहुत सारी संभावना है, इसका जो है निर्यात भी अपार संभावना है।
3: अगर पैदा करेंगे तो ये कितने दिन की फसल है?
4: ये फसल एक बार लगाई जाती है तो 3 से 4 से 5 साल तक आप ले सकते हैं,
3: यानी 5 साल तक
4: आराम से उत्पादन ले सकते हैं। और ये फसल जब एक बार लगाई जाती है उसके बाद 5 से 6

0: महीने बाद पहली कटाई इसकी की जाती है, उसके बाद आप 85 से 90 दिन के अंतराल पे कटाई कर सकते हैं,
1: यानी हर 3 माह पर,
0: हर 3 माह पे कर सकते हैं।
1: तो उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं?
0: हमारे सीमैप द्वारा बहुत सारी प्रजातियां विकसित की गई हैं, जो इसमें मुख्य प्रजातियां हैं जैसे सिम शिखर है, कृष्णा है और सिम सोनडा है। कृष्णा की अच्छाई ये है कि इसमें सिट्राल की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, 80 से 90% पाई जाती है और किसान बहुत ऐसे जैसे बिहार वगैरह में कर रहे हैं।
1: और सिम सोनडा
0: में इसके बायोमास अधिक होता है और ये सूखा सहनशील प्रजाति है, जहाँ पे अगर लगता है कि
1: वर्षाधीन इलाका है,
0: वर्षाधीन इलाका है, सिंचाई की संभावना नहीं है, वहाँ पे आप सिम सोनडा को कर सकते हैं।
1: तो इनकी रोपण सामग्री क्या सीमैप लखनऊ से आसानी से मिल जाएगी?
0: जी बिल्कुल, इसकी रोपण सामग्री सीमैप से मिल जाती है किसानों को और किसान ले जाते भी हैं। उसके लिए हमारे अलग अलग क्लस्टर बने हुए हैं जहां से किसानों को प्रोवाइड किया जाता है।
1: तो इसके लिए खेत का चुनाव कैसा हो?
0: इसके लिए ऐसा खेत चुने जिसकी मिट्टी मुख्यतः ये तो दोमट और बलुई दोमट में बहुत अच्छी इसकी
1: ग्रोथ
0: होती है, उपज अच्छी आती है और इसको अम्लीय भूमि या क्षारीय भूमि में कर सकते हैं। और ध्यान ये देना चाहिए कि इसका जो पीएच वैल्यू हो वो 7 से 8.5 के बीच रहना चाहिए।
1: खेत की तैयारी में क्या कुछ खास है?
0: खेत की तैयारी में रोपाई से पहले भूमि को 2 से 3 बार जो है गहरी जुताई करके समतल कर लेना चाहिए और पाटा लगा के उसको करके फिर रोपाई करनी चाहिए।
1: तो इसका प्रवर्धन होता कैसे है, क्या स्लिप्स के माध्यम से?
0: जी, इसका प्रवर्धन स्लिप्स के माध्यम से होता है और ध्यान देना चाहिए कि स्लिप्स जिस पौधे से हम तैयार करें वो पौधा कम से कम 8 से 10 माह पुराना होना चाहिए।
1: अच्छा,
0: हाँ, इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तब स्लिप्स उसकी अच्छी मानी जाती
1: तो
0: है।
1: तो वहाँ से रोपण सामग्री यानी स्लिप्स लेनी पड़ेगी?
0: हाँ, सीमैप से भी आपको मिल जाएगी। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो बहुत जागरूक किसान हैं जो स्लिप्स अपन बेच भी रहे हैं।
1: तो प्रति एकड़ कितनी स्लिप्स की आवश्यकता होगी, अंतरण क्या होगा रोपाई का?
0: विशेष ध्यान रखना चाहिए फसल की रोपाई में कि अंतरण क्या रखते हैं। जहाँ सिंचित अवस्था में से रोपण किया जाता है वहाँ पे 60 से 30 मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते
1: हैं, यानी 2 फीट।
0: हाँ, और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं,
1: 1 फीट रखते हैं।
0: हाँ, 1 फीट रखते,
1: यानी 2×1 फीट।
0: उस अवस्था में 60 और 30 की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे स्लिप्स की जो संख्या होती है 22 से 25 हजार के आसपास स्लिप्स लग जाती है 1 एकड़ में।
1: हाँ,
0: और अगर असिंचित भूमि है जैसे आप जुलाई में करते हैं वहाँ पे
1: वर्षा के सारे खेती है
0: तो वहाँ पे 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए लाइन से लाइन की दूरी, और
1: यानी 1.5 फीट।
0: हाँ, और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए।
1: तो इसमें कितनी स्लिप्स लगी?
0: तो यहाँ पे स्लिप्स की मात्रा आपकी बढ़ जाती है जो 30 से 35 हजार स्लिप्स लग।
1: तो रोपाई का सबसे उपयुक्त समय क्या है नींबू घास यानी लेमन ग्रास का?
0: रोपाई का सबसे उपयुक्त समय जुलाई और अगस्त का महीना होता है।
1: जून जुलाई में भी कर सकते हैं?
0: जून जुलाई और अगस्त में कर सकते हैं, और लेकिन जहाँ सिंचित एरिया है वहाँ पे फरवरी और मार्च में भी करते हैं किसान।
1: तो रुपाई में कुछ खास?
0: रुपाई में कुछ खास ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी आप रुपाई करें तो उस समय सिंचाई जरूर कर दें।
1: लेकिन एक जगह कितनी स्लिप्स की रुपाई होती है?
0: एक जगह सिर्फ एक ही स्लिप्स की रोपाई करते हैं, अगर जैसे लगता है कि हमारी मिट्टी जो है उसरीली ज्यादा है तो वहाँ पे
1: दो स्लिप्स
0: लगा सकते हैं।
1: फसल की भूख मिटाने के लिए खाद और उर्वरक का प्रबंधन कब, कितना और कैसे करना?
0: फसल को खाद की जरूरत, जैसे अगर गोबर की खाद आपके पास उपलब्ध है तो आप 10 से 20 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, वो आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं।
1: अगर डाल दें तो अच्छा ही,
0: और अच्छा ही है किसानों के लिए। वैसे इसके लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता प्रति एकड़ प्रति वर्ष रहती है। लेकिन जो नाइट्रोजन आपका होता है उसको एक बार न देके तो 3 से 4 बार उसका छिड़काव करें किसान।
1: और फास्फोरस और पोटास
0: की मात्रा रोपाई के समय ही
1: बेसल डोज में
0: पूरी मात्रा फास्फोरस और पोटास की एक बार डाल दें और नाइट्रोजन की 2 से 3 बार में छिड़काव।
1: आपने कहा कि लेमन ग्रास की कटाई साल में कई बार होती है,
0: जी,
1: तो क्या हर कटाई के बाद भी फसल की भूख मिटाना है?
0: हर कटाई के बाद जरूरत नहीं है, साल में एक बार पोटास, जैसे जब आप रोपाई करते हैं उसी समय पोटास और फास्फोरस देना होता है। नाइट्रोजन की मात्रा जैसे एक कटाई के बाद हल्की आप कर सकते हैं,
1: यानी 1/4 मात्रा।
0: हाँ,
1: हर कटाई के बाद
0: हर कटाई के बाद 1/4 मात्रा देते हैं। और ध्यान देना चाहिए कि उस समय की आप जब भी कटाई करो उसमें निराई गुड़ाई करने के बाद और उसमें फिर अपना नाइट्रोजन स्प्रे करें।
1: फसल को प्यास भी लगती होगी?
0: आमतौर पर देखा जाता है कि सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है इस फसल को, लेकिन सर्दियों में जो है 2 से 3 सिंचाई इसके लिए आवश्यक होती है और गर्मियों में 4 से 5

0: सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है।
1: और रोपाई के तुरंत बाद भी सिंचाई?
0: बिल्कुल, रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई,
1: या तो बारिश हो रही हो तब स्लिप्स लगा दें।
0: तब सबसे अच्छा होता है कि अगर बारिश हो रही हो, जून का महीना हो, बारिश हो रही हो, तो किसान उसमें लगा दे तो उसकी सिंचाई बच जाती है और स्लिप्स भी अच्छा ग्रो करती है।
1: बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान खेत में उगाते हैं, तो खर पतवारों का प्रबंधन कैसे हो नींबू घास में?
0: नींबू घास में खर पतवारों के प्रबंधन के लिए प्रारंभिक अवस्था जैसे 2 से 3 महीने जब लगाते हैं उस समय थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सबसे अच्छा होता है किसान अगर के पास कुछ मल्चिंग के लिए बचे हों, जैसे खेत के
1: फसल अवशेष
0: बचे हैं, वो अगर लगा देते हैं तो उससे खर पतवार नियंत्रण हो जाता है, नहीं तो 2 से 3 निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए।
1: तो जब पहली कटाई होगी तो उसके बाद डिस्टिलेशन करना होगा, आसवन करना होगा?
0: जी, आसवन के लिए सबसे अच्छी विधि होती है, इसमें भाप आसवन विधि होती है, जिससे कि तेल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों अच्छी आती है, और इसमें जो है स्टेनलेस स्टील डिस्टिलेशन यूनिट सर्वोत्तम रहती है,
1: सबसे अच्छा रहेगा ताकि गुणवत्ता बनी रहे। अगर आय व्यय की बात करें कि 1 एकड़ खेती से कितना उत्पादन मिलेगा, कितना मुनाफा होगा, तो
0: इसकी उपज की बात की जाए तो जो हमारी कृष्णा प्रजाति है उसमें 80 से 100 किलोग्राम तेल प्रति वर्ष प्राप्त होता है प्रति एकड़
1: जी,
0: और ये सिंचित अवस्था में होता है। असिंचित अवस्था में देखा जाए तो वो मात्रा जो है 50 से 60 किलोग्राम तेल प्रति वर्ष प्रति एकड़ प्राप्त होता है, और हरी घास की बात की जाए तो 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त होती है, और आय व्यय की हम बात करें आपसे तो इसमें जो है प्रति एकड़ प्रति वर्ष जो आय सिंचित अवस्था में प्राप्त होती है 30 से 35 हजार प्रति एकड़ प्राप्त होती है, वही असिंचित अवस्था की बात करें तो 20 से 25 हजार प्रति एकड़ इसकी व्यय होती है।
1: दीपचंद निषाद, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे नींबू घास की उन्नत खेती के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 8542 010 762, 8542 010 762।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का नींबू घास की उन्नत खेती के बारे में दीपचंद?
0: जी बिल्कुल, नींबू घास के बारे में एक विशेष बात है कि अगर फसल कटने में देरी हो जाए और फूल निकल आता है तो उस समय जो फूल तेल की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, तो इस चीज का किसान विशेष ध्यान रखें ताकि फसल समय से कटाई करें उसकी।
1: दीपचंद निषाद, आज आप कार्यक्रम में आए और नींबू घास यानी लेमन ग्रास जराकुस की उन्नत खेती की क्या कुछ संभावना है व्यावसायिक रूप से, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नींबू घास की उन्नत खेती, अभी आप इस विषय पर दीपचंद्र निषाद से भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट की डॉक्टर सुशील कुमार राय ने। इसके साथ ही आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 27 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
4: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बहराइच,
3: ग्राम्य विकास विभाग, विकास भवन बलिया,
4: बलरामपुर चीनी मिल बलरामपुर,
3: DSA ऑफिस बस्ती,
4: नगर निगम परिषद देवरिया,
3: बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड कुंडर की गोंडा,
4: वरुण बेवरेजेस गीडा गोरखपुर,
3: नगर पालिका परिषद पडरौना कुशीनगर,
4: नवजीवन मिशन स्कूल आनंद नगर महाराजगंज,
3: रैना पेपर मिल खलीलाबाद संत कबीर नगर,
4: ग्राम्य विकास विभाग, विकास भवन श्रावस्ती,
3: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सिद्धार्थ नगर।
5: बड़ी बहू,
6: ये तुम्हारी ना,
5: इतनी भी क्या जल्दी थी?
6: अरे और छोटी, ये तुम्हारी ना,
5: और ये मेरी गुड़िया की ना।
7: पर दादी, आपके नाम?
8: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
6: शुभ शुभ बोलो।
8: क्या RBI कहता है?
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 27 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
4: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बहराइच,
3: ग्राम्य विकास विभाग, विकास भवन बलिया,
4: बलरामपुर चीनी मिल बलरामपुर,
3: DSA ऑफिस बस्ती,
4: नगर निगम परिषद देवरिया,
3: बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड कुंडर की गोंडा,
4: वरुण बेवरेजेस गीडा गोरखपुर,
3: नगर पालिका परिषद पडरौना कुशीनगर,
4: नवजीवन मिशन स्कूल आनंद नगर महाराजगंज,
3: रैना पेपर मिल खलीलाबाद संत कबीर नगर,
4: ग्राम्य विकास विभाग, विकास भवन श्रावस्ती,
3: डिस्ट्रिक्ट

0: सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, सिद्धार्थनगर।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए, रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
3: NCRT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाह्न के, क्षमा कीजिएगा, अपराह्न के 2:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पूजा तोमर के गाए कुछ अवधी लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं आपके गाए इस खेमटा के साथ।

अभी आपने सुना पूजा तोमर के स्वर में ये छप रही है। इसके साथ ही आज का लोक माधुरी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से।

और अब लीजिए सुनिए फिल्म नैया का ये गीत, गीत और संगीत रविंद्र जैन का, स्वर येसुदास की।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म नैया का ये गीत। इसके साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:15 हुए हैं। प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर विपिन कुमार झा, संस्कृत विभाग, BBA संस्कृत विश्वविद्यालय से वार्ता। विषय है गंगा महात्म्य।
2: लोकहिताय प्रवहता दियं जाह्नवी। भारतीय संस्कृतौ गंगा नदी न केवलं काचित् जलधारा अपितु साक्षात् चिन्मयी शक्तिः करुणामयी जननी च वर्तत। अनंतकालात् इयं जाह्नवी भारतस्य हृद्भूमौ लसन्ति, अनारतं प्रवहन्ति, आध्यात्मिकं भौतिकं च पोषणं कुर्वन्ति, अस्मान् आप्लावयन्ती अस्ति। गंगाया स्वरूपं वर्णनम् अतीतम् अस्ति, यतः सा भगवतः विष्णोः पादपंकजात् निर्गता, महादेवस्य जटासु विस्तृता, भागीरथस्य तपोवलेन पुण्यलोकात् इहमर्त्यलोके च धरायां समागता। अतः इयं विष्णुपदी शिवमौली विहारिणी इति च नामभिः त्रैलोक्यं पावयति। गंगायाः साहित्यिकं सौन्दर्यम् अनुपमं वर्तते। कवीनां कल्पनायां सा आकाशस्य धवलकान्तिः इव भासते, या हिमालयात् अवतीर्य वसुधार्थं मुक्ताहारः इव प्रसरति। गंगायाः कलकल कल्लोलनादः ओंकारस्य प्रतिध्वनिः इव श्रूयते, यः श्रोतॄणाम् अन्तःकरणे शान्तिं सुधां च सिञ्चति। तस्याः तटेषु विकसितं तपस्विनां ध्यानं भारतीयदर्शनस्य मूलस्रोतः। आध्यात्मिकदृष्ट्या गंगा मोक्षदा इति कथ्यते। गंगास्नानमात्रेण पापक्षयः सम्भवति इति पुराणाम् उद्घोषः अस्ति। गंगाजले सा दैवी शक्तिः अस्ति, या मानुषाणां केवलं कायिकं मलिनत्वं न नाशयति, अपि तु चित्तस्य गूढं तमः अपि दूरीकरोति। गंगायाः दर्शनमात्रेण आत्मज्ञानस्य ज्योतिः प्रज्वलिता भवति। सा पतितपावनी अस्ति, या पातकी जनानां जनानपि स्वस्य अंके गृह्णाति, तेभ्यः च परं पदं प्रयच्छति। वैज्ञानिकदृष्ट्यापि गंगायाः जलम् अमृततुल्यम् अस्ति। अस्मिन् जले केचन एतादृशाः सूक्ष्मजीवाः सन्ति ये जलं कदाचित् दूषितं भवितुम् अवकाशं न ददति। हिमालयात् आगच्छन्ति इयं नदी अनेकासां दिव्यौषधीनां सत्त्वं स्वस्मिन् समाहितं करोति। अतः एतस्य जलपानं रोगनाशकम् आरोग्यप्रदं च भवति। अद्यतनकाले अस्माकं परमं कर्तव्यं वर्तते यत् वयम् अस्याः दिव्यनद्याः निर्मलतमां रक्ष्यं। गंगा न केवलं पूजा विषयरूपा अपि तु सा अस्माकं सभ्यतायाः प्राणवायु अस्ति। यदि गंगा अस्ति तर्हि भारतीयसंस्कृतिः अमृता अस्ति। अतः नमामि गंगे इति मन्त्रं मनसि धृत्वा तस्याः सेवा करणीया। गंगा भारतस्य आत्मा कृते संस्कृतेः वाहिनी, मोक्षस्य च सोपानम् अस्ति। तस्याः पावनधारा

0: यथार्थं गंगा महात्म्यं भवति। गंगा सर्वान् पुनातु, सर्वान् रक्षतु, सर्वान् मोक्ष च प्रयच्छतु इति शम।
1: गंगा महात्म्य, अभी आप डॉक्टर विपिन कुमार झा से ये संस्कृत वार्ता सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का संस्कृत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

हम अपने सुनने वालों को एक बार पुनः याद दिला दें कि आज शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में आप सुनेंगे अनिल कुमार सिंह से भेंटवार्ता, सफलता की कहानी, कृषि विविधीकरण, इस विषय पर आपसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे लोकभाषा अवधि में कहानी पाठ, जिसका शीर्षक है अन्हरिया में बिजुरी। इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे आद्या प्रसाद सिंह प्रदीप।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी कि 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है रिकॉर्डेड फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।

0: अब सुनिए हमारा आज का ये कार्यक्रम। हेलो डॉक्टर।
1: दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस विशेष कार्यक्रम में। और दोस्तों जैसा आपको पता ही है कि हम इस कार्यक्रम में किसी ऐसे विशेषज्ञ को लाते हैं, किसी ऐसे चिकित्सीय विशेषज्ञ को लाते हैं जो आपकी जो चिकित्सीय समस्याएं हैं उन्हें दूर करते हैं, वो समस्याएं दूर करते हैं, आपके भ्रम दूर करते हैं और ढेरों आपको ऐसे परामर्श देते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होती हैं। तो जो आज का विषय है दोस्तों वो है अस्थि एवं जोड़ संबंधी विकार, कारण, लक्षण और उपचार। दोस्तों हम बहुत बार देखते हैं कि हमारे हड्डियों में, हमारे जोड़ों में दर्द रहता है। बहुत बार हम जान नहीं पाते कि ये क्या दिक्कत हो रही है और कभी कभी बहुत भयावह स्थिति वो ले लेता है। तो वो क्या कारण है, वो क्या दिक्कत हो रही है, आज हम जानेंगे डॉक्टर संजय श्रीवास्तव से। आप एक वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं और विगत कई दशकों से इस विधा में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी।
1: सर जो हमारा शरीर है, जैसे हम जब कहते हैं कि भाई हड्डियों से बना है, 206 हड्डियों से जुड़कर बना है, वास्तव में वो कौन कौन सी मूल समस्याएं इन हड्डियों में होती हैं?
2: देखिए हड्डियों की जो मूल समस्याएं हैं वो विशेषकर हड्डियों की कमजोरी या हड्डियों पे जो मांसपेशियां जुड़ी होती हैं उनसे संबंधित होती हैं। हर उम्र की हड्डियों की समस्याएं अलग अलग होती हैं, बच्चों में, किशोरों में और युवाओं में। खासकर वो जो आजकल की वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें जो हड्डियों के दर्द, और इनमें खास मैं कहना चाहूंगा गर्दन, पीठ और कमर के दर्द, ये अक्सर बहुतायत में देखे जाते हैं। और इसका एक मुख्य कारण है दोषपूर्ण मुद्रा, सही तरीके से उठना बैठना नहीं, सही तरीके से खड़े होना और चलना नहीं, और वजन वगैरह उठाने में लापरवाही करना, अचानक झटके से चीजों को उठाना, जो अक्सर कमर दर्द को, पीठ दर्द को या गर्दन की तकलीफों को जन्म देता है। इसके आगे अगर हम बात करें वयस्कों की, तो वयस्कों में जो मूलतः हड्डी की बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है वो होती है पीठ दर्द, कमर दर्द। और ये बीमारी अक्सर महिलाओं में, और खासकर तब जब उनकी महावारी बंद हो जाती है, हड्डियों के कमजोर होने से, जिसे हम लोग अपनी मेडिकल भाषा में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उससे होती है। और इसका एक मुख्य कारण रजोनिवृत्ति के पश्चात महिला हार्मोनों की कमी, कुछ पोषण में भी लापरवाही, कुछ व्यायाम को महत्व न देना और तनाव में रहना, ये सब मिला जुला करके उनको इन कमर दर्दों का, पीठ दर्दों का एक रोगी बना सकती है।

0: वृद्ध की है, जब आप बात आप कैटेगराइज कर रहे थे बच्चों की, आपने बात कर ली यंग एज की बात कर ली, वृद्धों में क्या दिक्कत आती है?
1: वृद्धों में दो तरह की बीमारियां, एक तो एक कमर दर्द की परेशानी तो मैंने आपको अभी बताई ही बताई है, और साथ में जोड़ों की बीमारी भी होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके जोड़ घिसते जाते हैं, विशेषकर घुटने के जोड़। तो वृद्धों में कमर दर्द, पीठ दर्द हड्डियों की कमजोरी की वजह से, रीढ़ की हड्डी की जोड़ों की गठिया की वजह से, और या फिर कूल्हे या घुटने में भी उम्र की गठिया यानी जोड़ों के घिसाव की वजह से अक्सर परेशानियां देखी जाती हैं।
0: आपने एक मेजर प्रॉब्लम बताई कि पोस्चर की, कई बार युवावस्था में लोग गलत ढंग से बैठते उठते हैं, या वो जैसे कंप्यूटर पर काम करना हुआ या ढेरों ऐसे काम, क्या वो कोई लक्षण पहले ही दिखाने लगता है कि जिससे हम समझ लें कि ये दिक्कत शायद हमें हो सकती है?
1: देखिए ऐसा है, जब हम एक दोषपूर्ण मुद्रा में कार्य शुरू करते हैं तो शरीर के कुछ हिस्सों पर अत्यधिक दबाव रहता है, खासकर जैसे गर्दन का। आपने अपना सही मुद्रा नहीं रखी, गर्दन झुका के काम कर रहे हैं, कीबोर्ड को आप कीज को चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी गर्दन की मांसपेशियां, आपकी पीठ की मांसपेशियां और हाथों की मांसपेशियां तनाव में रहती हैं, इनमें दर्द होने लगता है। और यहां तक कि कभी कभी यह भी देखा गया है कि जब आप लंबे समय तक कंप्यूटर पर बैठ के कार्य करते हैं तो हाथों की उंगलियों में झुंझुनी या सुन्नपन भी होने लगता है, जिसको आजकल मेडिकल भाषा में टेक्स्ट नेक सिंड्रोम कहते हैं। तो इस तरह की लक्षण, अगर आपको बेवजह के दर्द या ज्यादा देर बैठने के बाद मांसपेशियों में तनाव, अकड़न, जकड़न महसूस हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आपकी मुद्रा सही नहीं है और आपको इसको सही करने के सारे प्रयास करने हैं।
0: वृद्धावस्था की आपने बात की कि वृद्ध में ये दिक्कत आती है, क्या वहां भी वो प्री कोई ऐसे लक्षण देने लगता है, पूर्व के लक्षण से दिखाने लगता है कि जिससे कि आगे ये दिक्कत बहुत बड़ी हो जाएगी, चलने उठने में दिक्कत हो जाए?
1: वृद्धों में भी परेशानी अक्सर रीढ़ की हड्डियों से या कमर से ही शुरू होती है। जरा सा झुके और अचानक से कमर ऐंठ गई, अकड़ गई, या कभी कभी पैरों में झुंझुनी या सुन्नपन भी होने लगा। क्योंकि जब आप अचानक से झुकते हैं या उम्र के साथ आपकी जो रीढ़ की हड्डी की डिस्क है अगर वो घिस गई है तो आपकी जकड़न भी होगी और उसकी वजह से आपको पैरों में दर्द, झंझनाहट, जिसको सामान्य भाषा में शियाटिका या अर्कुन्निसा कहते हैं, वो भी हो सकती है। इसके अलावा जो जोड़ों की गठिया की मैंने आपसे बात करी, जो उम्र के साथ होती है, उसमें जब आप भारतीय शैली के कमोड पर बैठते हैं और आप जब खड़े होते हैं तो आप कुछ देर के लिए सीधे नहीं खड़े हो पाते, आपको थोड़ा टाइम लगता है सीधा खड़ा होने में, या जब आप जीना चढ़ते उतरते हैं तो आपको घुटने के आगे वाले हिस्से में तकलीफ होने लगती है, जोड़ों में से चुरचुराहट की आवाज आने लगती है, ऐसा लगता है जैसे जोड़ों के अंदर कोई चीज आपस में रगड़ खा रही। ये उम्र के साथ होने वाली गठिया के प्राथमिक लक्षण हैं, जिनके चलते आपको थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए और उचित उपाय और इलाज करना चाहिए।
0: वैसे तो हर उम्र की आपने बात की कि आपने कहा कि भाई जो यंग एज की जनरेशन है उनके लिए या जो वृद्धावस्था में जो दिक्कतें होती हैं, क्या कोई ऐसे मूलभूत उपाय हैं जिनसे या जिसे अपनाकर हम इन बीमारियों से बच सकते हैं या कुछ हद तक हम इसे कम कर सकते हैं?
1: देखिए हड्डी और जोड़ भी आपके शरीर का हिस्सा है जी। आपके संपूर्ण स्वास्थ्य में न सिर्फ आपका शरीर बल्कि जोड़ और हड्डियां भी बहुत अहम भूमिका अदा करती हैं, और जैसा कि एक सामान्य तौर पर कहा जाता है, आपका स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक चार चीजों पर आधारित होता है। पहली चीज है पोषण या आहार, दूसरी चीज है जीवन शैली व्यायाम, तीसरी चीज है नींद और चौथी चीज है तनाव मुक्त जीवन या तनाव के प्रभाव। सारा का सारा खेल इन चारों ही बिंदुओं पर केंद्रित होता है, जो न सिर्फ आपको हड्डी और जोड़ों की तकलीफों से भी निजात दिला सकता है बल्कि आपको एक स्वस्थ सुखी जीवन जीने के लिए भी सहायक हो सकता है।
0: अगर आपने ये चारों चीजों की बात की, एक सारांश के तौर पर हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे कि आप इन चारों को कैसे ठीक रखें या ये ठीक करके आप बीमारियों से बच सकते हैं, हमारे श्रोताओं को इससे संबंधित बात?
1: मैं एक एक पॉइंट पर थोड़ा थोड़ा आपसे चर्चा कर लेता हूं। आहार की जहां तक बात है, हमें प्रयास ये करना है, बचपन से ही हमें आदत डालनी होगी बच्चों में कि वो एक संतुलित आहार लें, घर का ताजा बना शुद्ध खाना खाएं। ये जो आजकल बच्चों में जो पैकेज्ड फूड का ट्रेंड है, इसको रोकना है, क्योंकि खाने में प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सब होना चाहिए। कोशिश ये करिए कि आपके खाने में लगभग 60% ऊर्जा प्रोटीन से आए, लगभग 30% ऊर्जा शर्कराओं से यानी कार्बोहाइड्रेट से आए और बाकी 10% फैट्स। सभी का अपना अपना रोल है, सभी इंपॉर्टेंट, और साथ में आजकल कुछ पोषण तत्व और कुछ विटामिन, खासकर विटामिन डी, ए, बी, सी, के वगैरह की

0: भी इंपॉर्टेंस है, इनसे संबंधित जो भी खाने में चीजें हैं वो अवश्य लें। इतनी बात आहार के विषय में मैं कहना चाहूंगा। व्यायाम के बारे में आपसे इतना कहना जरूर चाहूंगा कि जितना आपका शरीर चलता रहता है उतना ही आप एक्टिव रहते हैं। न सिर्फ हड्डी और जोड़ बल्कि आपकी मांसपेशियां, आपका हृदय का स्वास्थ्य, आपकी रक्त वाहिनियां, आपके गुर्दे, आपके फेफड़े, सब चीज आपकी पूरे अपने क्षमता से कार्य करती है, आपको स्वस्थ रखने में सहायक होती है। और सबसे आसान चीज है हल्के फुल्के व्यायाम, खासकर सैर करना, टहलना। कहते हैं कि अगर 30 से 45 मिनट आप हफ्ते में 5 दिन टहल लेते हैं तो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है, सुंदर रहता है। नींद की अगर बात करें तो नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है। बच्चे तो बहुत लंबी नींद लेते हैं, लेकिन एक वयस्क के लिए औसतन 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए, क्योंकि जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी जब खत्म हो जाती है तो उसको चार्ज करते हैं, इसी तरह आपके शरीर की जो बैटरी रूपी ऊर्जा है वो जब कम हो जाती है तो नींद में ब्रह्मांडी ऊर्जा से वो चार्ज होती है। और इसके अलावा रोजमर्रा के कार्यों में आपके शरीर के जो भी ऊतक क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनकी रिपेयर करने का मौका शरीर को मिल जाता है। बात तनाव की करें तो आजकल हर कोई तनाव में है, हर कोई परेशान है। बच्चा है तो उसकी अपनी परेशानी, युवा है तो उसकी परेशानी, गृहस्थ जीवन की अपनी परेशानियां हैं। लेकिन जितना आपका तनाव ज्यादा होगा उतना ही आपके शरीर में नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, तनाव को कम करने के लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूं अक्सर, 5-7-5 का। यानी कि सुबह उठ के अगर आप 5 मिनट अपने शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से, मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो आपका पूरा दिन का कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है। अगले 7 मिनट आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, मन पे नियंत्रण, शांत रखने के लिए प्राणायाम या ध्यान की प्रक्रिया या संगीत सुनना वगैरह भी कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के इन 12 मिनट के बाद अगला 5 मिनट आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य पे देना है। हल्के फुल्के व्यायाम, शरीर के सारे जोड़, कंधे, कोहनी, हाथ वगैरह वगैरह, कूल्हे, घुटने, टखने सब चला लेने हैं। वो आसन योग के करने जिनको आप आसानी से, सुख से और क्षमता से अपनी कर सकते हैं। थोड़ा सैर करना, टहलना, ये भी आपके लिए बहुत मददगार होता है। और मेरी आपको सबको राय ये है कि अगर आप बहुत कठिन व्यायाम न करें, सरल सहज व्यायाम करें, वो आसन करें जो आप आसानी से कर सकते हैं। सैर सबसे बढ़िया है, हल्के फुल्के कदमों से चलते रहिए, पूरा का पूरा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सही रहेगा। और अगर कर सकते हैं तो थोड़ी तैराकी या साइकिल चलाना वगैरह भी आपके लिए लाभप्रद हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अच्छी आपने बात बताई, हमारे श्रोता इससे लाभान्वित भी होंगे। मुझे उम्मीद है कि ढेर सारी आपने ऐसी जो बातें, आपने जो फॉर्मूला बताया, विशेष करके ये कि भाई आप व्यायाम करते रहें, खुश रहें। आपने एक गठिया बीमारी का जिक्र किया, क्या जोड़ों से संबंधित और भी अन्य बीमारियां होती हैं और क्या उम्र विशेष में होती हैं?
0: यस, गठिया के 2 मेन प्रकार हमको जानने होते हैं। जवानों में होती है गठिया, जो अक्सर हाथ और पैर के छोटे छोटे जोड़ों से शुरू होती है, जिनमें जोड़ों में दर्द रहता है। सुबह के समय जोड़ जकड़ जाते हैं, 1/2 घंटे-1.5 घंटे जकड़े रहते हैं, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। ये जवानी की गठिया जो है, जो अक्सर 20-30 वर्ष की उम्र में शुरू होती है, महिलाओं में ज्यादा होती है। और इसके विरुद्ध जो बुजुर्गों में होती है वो उम्र के साथ होने वाली गठिया, जिसे हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, वो होती है, जिसमें जोड़ शरीर के उम्र के साथ घिसते हैं, सूजते हैं और दुखते हैं। इन 2 गठिया के अलावा रूमेटॉइड और ऑस्टियो के अलावा संक्रमण, बैक्टीरियल, वायरल, कोई भी आर्थराइटिस हो सकती है। यूरिक एसिड भी अगर शरीर में ज्यादा जमा हो गया तो वो भी जोड़ों की गठिया कर सकता है। डायबिटीज वगैरह के रोगियों में, जिनमें नसों की सुन्नता आ जाती है, उनमें भी जोड़ों का एहसास दर्द का कम हो जाता है और उसमें भी एक न्यूरोपैथिक ऑर्थोपैथी टाइप की चीज हो जाती है। मोटे मोटे तौर पर इस तरह की कई सारी गठियों की वैरायटी है। लेकिन एक सामान्य आदमी के लिए जवानी की गठिया रूमेटॉइड, जो हाथों और पैरों के जोड़ों से होती है, और बुजुर्गी की गठिया जो मुख्यतः घुटनों में या कूलों में होती है, ये अक्सर पाई जाती है।
1: डॉक्टर साहब, हम इस कार्यक्रम को यूं ही जारी रखेंगे पर हम अपने श्रोताओं को प्यारे प्यारे गीत भी सुनवाते हैं। आपका कोई ऐसा पसंदीदा गीत हो जो आप श्रोताओं को सुनाना चाहें?
0: किशोर कुमार का गाया हुआ गाना जी, पल पल दिल के पास, ये मेरा बहुत अच्छा एक पसंदीदा गाना है और अक्सर गुनगुनाता भी रहता हूँ, और जहाँ कहीं लोग फरमाइश करते हैं तो सुना भी दे।
1: तो श्रोताओं लीजिए, सुनिए ये प्यारा सा ट्रैक।

0: देखिए, गठिया के कारण मोटे तौर पे ज्ञात नहीं होते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि ये प्रतिरोधक प्रणाली के गड़बड़ होने की वजह से होता है और परिवारों में रन करता है, वंश में अनुवंशिक भी होता है। इसलिए इसके बारे में जागरूकता कि आपके जोड़ों में दर्द है, आपके परेशानी है, आप एक उचित सलाह अपने डॉक्टर से ले लें। कारण पता करने की कोशिश आपके डॉक्टर करते हैं जांच के द्वारा, और अगर कोई कारण मिलता है तो उसका एक पूर्ण इलाज करके आपको गठिया के रोग से काफी कुछ निजात भी दे सकते हैं।
1: एक हमारे श्रोता है, उन्होंने पूछा कि सर, बहुत बार जब मैं कोई काम करता हूँ, कोई ऐसा वजनदार या शारीरिक कोई श्रम कर लेता हूँ, कोई वजन उठा लेता हूँ, कभी कभी हेयरलाइन फ्रैक्चर की स्थिति होती है, और जो हम दिखाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं ऐसे ही ठीक हो जाएगा, पर वो बहुत दर्द असहनीय सा होता है। क्या ये ऐसे ही ठीक हो जाता है या कोई इलाज भी इसका करना पड़ता
0: है? देखिए, हर फ्रैक्चर कुदरत जोड़ती है, डॉक्टर तो सिर्फ उसकी मदद करता है। कुदरत जोड़ करके ही हर फ्रैक्चर को हील करती है, और जो साइलेंट फ्रैक्चर जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये अक्सर कमजोर हड्डियों में होते हैं। जरा सा भी आपके शरीर पे लोड पड़ा, ये फुट से हड्डी चटक जाती है। डॉक्टर इलाज करते हैं, अपने आप भी जुड़ जाते हैं, ऐसा नहीं जुड़ते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर की मदद ले ली जाती है तो ये सही समय में और लगभग पूरी तरीके से जुड़ के ठीक भी हो जाते हैं।
1: आपके इसी सवाल से एक संदर्भित हम सभी का सवाल है, और शायद हम सभी देखते भी रहते हैं कि हम कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे हमारी हड्डी टूट गई है या हेयरलाइन फ्रैक्चर की बात की, हम डॉक्टर को नहीं दिखाने दे जाते हैं, या हम खुद जाते ही नहीं, हमें लगता है कि शायद ठीक हो जाएगा, हम मसाज करा लेंगे, घर में ही कोई पट्टी बांध लेंगे, कुछ सिकाई कर लेंगे। क्या अगर हम डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं और कोई हड्डी टूट गई है या कोई इस तरह के ऊतक दिक्कत कर रहे हैं, वो क्या कोई गंभीर बीमारी का रूप ले सकते हैं?
0: ले सकते हैं। जो हड्डी टूटी है वो अगर प्रॉपरली उसको हमने इमोबिलाइज यानी स्थिर नहीं किया तो वो हड्डी के सिरे आपस में टकराते रहते हैं, हड्डी जुड़ नहीं सकती। हड्डी जुड़ती है एक ग्लू के द्वारा, गोंद टाइप का बनता है जो कुदरत बनाती है। अगर हड्डी के सिरे हिलते रहेंगे तो वो ग्लू डिस्टर्ब होता रहेगा, हड्डी नहीं जुड़ेगी। इसलिए डॉक्टर के पास जाके आप अगर उसको स्थिर करने का इंतजाम कर लेते हैं, चाहे प्लास्टर के द्वारा, चाहे पट्टी के द्वारा, या किसी भी तरीके से, तो आपकी हड्डी लगभग 95-98% केसेस में जुड़ जाती है, अपने आप भी जुड़ जाती है। लेकिन उसको थोड़ा सा नेचर को हमें असिस्ट अगर कर देने का मौका मिलता है, हम कर देते हैं तो हमारे रिजल्ट्स बेटर रहते हैं।
1: तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं, खुद डॉक्टर ना बने, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है कि भाई आप जो उसका तकनीकी जो इलाज है, जो उसका तकनीकी रिफॉर्म है, वो जरूर अपनाएं कि जिससे आपकी हड्डी जुड़ जाएगी। डॉक्टर साहब, एक और साथी हमारे साथ लाइन पर हैं, जी अपना सवाल पूछें।
2: डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या खान पान का अस्थि रोग से सीधा संबंध है?
0: खान पान का अस्थि रोग से बिल्कुल सीधा संबंध है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन कम है, देखिए शरीर का हर ऊतक, चाहे वो हड्डी हो, चाहे जोड़ हो, या कोई भी अंग हो, वो बनता प्रोटीन से है। अगर प्रोटीन खाने में कम है तो वो नेचुरल सी बात है, बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है तो बिल्डिंग कमजोर बनेगी। तो खाने में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में लें। हम हिंदुस्तानियों में खाना जितना भी हम खाते हैं, पर्याप्त प्रोटीन न होने की वजह से शरीर अंदरूनी रूप से कमजोर रहता है। दूसरी चीज ये है शर्कराएं। शर्कराएं इसलिए जरूरी हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स या शर्कराएं आपके एनर्जी का रेडी सोर्स है, आपके शरीर को ऊर्जा की जरूरत है, फट से दे देंगी। वसाएं भी आपके लिए जरूरी, लोग आजकल फैट से बड़ा और ऑयल से बड़ा परहेज करते हैं, लेकिन फैट्स आपके लिए जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि आपके खाल में जो फैट बनी है, जो फैट जमा है, सूरज की रोशनी में वही विटामिन डी में कन्वर्ट होती है, और विटामिन डी आजकल शरीर की हर जैविक प्रक्रिया के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपका मस्तिष्क, दिमाग और उससे जुड़ी सारी तंत्रिकाएं, नसें फैट से बनती हैं। तो अगर आप फैट अपने खाने में नहीं लेंगे तो इनके कार्य पे भी असर पड़ेगा। इसके अलावा विटामिन डी के लिए आप अपने को सूरज की रोशनी में अगर 15-20 मिनट बैठ के एक्सपोज कर देते हैं, विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में बन जाता है, नहीं तो फिर दवाओं के जरिए लीजिए। और भी विटामिन है, ए है, के है वगैरह, उनकी भी जरूरतें आपको पूरी करनी है। इसके अलावा आजकल स्वास्थ्य में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि जिंक है, मैग्नीज है, या सेलेनियम है, इनके रोल भी देखे गए हैं। तो अपने खाने से ये सब चीजें मिल जाती हैं, लेकिन किन्हीं वजहों से अगर आप रोगग्रस्त हैं, खाना आप अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इसको दवाओं के जरिए जरूर लें।
1: एक हमारे श्रोता है, उन्होंने अपना संदेश भेजा कि सर, मेरी उम्र 30 बरस है, मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है, और मेरा वजन वो 90 किलो का है, क्या वजन बढ़ने से कोई दिक्कत हो सकती है?
0: वजन बढ़ने से दिक्कत होती है जी। आप जितने भारी होते जाते हैं उतने आपके पैर के जोड़ों पे लोड पड़ता है। यूं समझ लीजिए, आपका ट्रक का शरीर है और घुटने आपके मारुति के पहिए।

0: श्रोताओं, एक बार पुनः आपका कार्यक्रम में स्वागत है और ढेर सारे हमारे श्रोता जो हमें फोन भी करते हैं, हमें मैसेज भी करते हैं, अपने फोन कॉल रिकॉर्ड कराते हैं, हम उनके कुछ फोन कॉल और कुछ मैसेज आपको संदर्भित कर रहे हैं। जी
1: डॉक्टर साहब नमस्कार। सर मेरा एक ये सवाल है कि एक्चुअली एक गठिया रोग है मेरी पत्नी को, तो इसका क्या कोई घरेलू उपचार भी है या केवल हॉस्पिटल में आके ही इसका इलाज कराया जा सकता है?

0: कुदरती तौर पे क्या होगा, घुटनों पे लोड पड़ेगा, पहिए घिसेंगे, आपको दुख देंगे। तो वजन पे नियंत्रण आपकी लंबाई और ऊंचाई के हिसाब से जो एक मापदंड है वजन का, अगर आप उसको मेंटेन करेंगे तो आपके पैरों के जोड़ों पर, पैरों की मांसपेशियों पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये लंबे समय तक आपकी आखिरी सांस तक आपके जीवन को सहज और सरल बनाने में कामयाब हो पाएंगे। बहुत ज्यादा वजन कभी भी अच्छा नहीं है, वजन नियंत्रण में रखना चाहिए। वजन से न सिर्फ पैरों के जोड़ों पर असर पड़ता है बल्कि और रोग जिन्हें आजकल लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, डायबिटीज है, इनके भी होने की संभावनाएं बढ़ती जाती
1: है। एक प्रत्यारोपण संबंधी आपके यहाँ एक इलाज है जो नी हो गया या कूल्हे का प्रत्यारोपण हो गया, बहुत बार हमारे श्रोताओं में भ्रम की स्थिति होती कि क्या ये कराना ठीक है।
0: देखिए, जहां तक प्रत्यारोपण का सवाल है
1: जी,
0: एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो आपके जोड़ है ये कुदरत की दी हुई एक बेशकीमती चीज है, बेशकीमती उपहार है
1: जी।
0: आप जब तक अपने इन कुदरती जोड़ों पे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, व्यायाम के द्वारा, खान पान के द्वारा, दवाओं के द्वारा, कोशिश करिए कि ये आपके साथ रहें
1: जी।
0: लेकिन अगर आपके जोड़ों में इतनी तकलीफ है कि आप अपने रोजमर्रा के कार्य ही नहीं कर पा रहे हैं, खा पी नहीं पा रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम नहीं जा पा रहे हैं, कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं, रात में सोते सोते आपको दर्द चीखें निकलती हैं और आप परेशान हो जाते हैं, या आपकी बिल्कुल ही जीवन शैली खराब हो गई है, उस स्थिति में प्रत्यारोपण जरूर करा लेना चाहिए। प्रत्यारोपण के परिणाम भी अच्छे हैं और ये देखा गया है कि काफी केसेस में मरीज बहुत कुछ अच्छा भी हो जाता है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर। लेकिन देखना यही है कि आप अपने घुटनों के साथ कितने कंफर्टेबल हैं। अगर अनकंफर्टेबल हैं, प्रत्यारोपण जरूर करा लें, जिंदगी आपकी बेहतर हो जाए।
1: एक हमारे युवा श्रोता है, उन्होंने हमसे पूछा कि आजकल का जो जिम कल्चर है, क्या हम, जैसा आपने कहा भी कि व्यायाम करके हम खुद को फिट रख सकते हैं, या हमें हाईली जिम करने की जरूरत है कि हम बहुत ज्यादा कई घंटे जिम करें? आजकल जिम में कई ऐसी दिक्कतें भी हो रही हैं, हमारे श्रोताओं को इससे संबंधित, खास करके हमारे युवा श्रोताओं को क्या सुझाव देंगे?
0: देखिए, जिम बेसिकली आदमी जाता है अपने बॉडी बिल्ड करने के लिए, मसल्स को बिल्ड करने के लिए। तो अगर आपको एक स्मार्ट लुक, एक हैंडसम लुक चाहिए, मसल्स को बिल्डअप जिसे कहते हैं सिक्स एब्स जो कल्चर आ गया है, उसके लिए जिम आपका सहायक है। लेकिन जिम में कोई भी वजनी व्यायाम करने से पहले आप एक बार डॉक्टर से अपना चेकअप जरूर करा लें, क्योंकि आजकल हर आदमी तनाव में है और तनाव की वजह से आपके हृदय की या और शरीर के हिस्सों की धमनियां क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, रोगग्रस्त हो सकती हैं। तो ऐसे में जब आप भारी व्यायाम करते हैं, भारी चीजें उठा के व्यायाम करते हैं, तो वो परेशानी आपको दे सकती हैं। और इसीलिए आपने सुना होगा कि बहुत दफे युवा जिम में अचानक कोलैप्स कर गए, डेथ हो गई, उसका कारण वही होता है, छिपा हुआ धमनियों का रोग या छिपा हुआ कोई हृदय का रोग जो जाहिर नहीं है लेकिन आपके इस हैवी एक्सरसाइज से उभर जाता है। तो इसलिए कोई भी एक्सरसाइज धीरे धीरे बढ़ाइए, ये नहीं कि एकदम से करना। और यही यहां पे एक बात और भी कहना चाहूंगा कि जब भी कभी आप जैसे खेलने जाते हैं या कोई भी काम करने जाते हैं, पहले प्रॉपरली वार्म अप हो जाइए। वार्म अप होने से आपकी मांसपेशियां जब एक्टिव हो जाती हैं तो आपके जोड़ों को भी प्रोटेक्ट कर देती हैं, आपके शरीर को चोट होने से भी रोक देती हैं। इसलिए जिम जाकर अपने शेड्यूल को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाइए, ये नहीं कि पहले दिन से ही आपको हैवी एक्सरसाइज पे फोकस करना है। तो आप इससे होने वाली और परेशानियों से भी, और अगर शरीर में भगवान ना चाहे कोई रोग है तो उसके दुष्प्रभावों से भी अपने आप को बचा सकेंगे।
1: वैसे डॉक्टर साहब, ढेर सारी ऐसी चिकित्सीय बातें हैं, ढेर सारी ऐसे भ्रम हैं, पर अगर हम अपने श्रोताओं को कुछ शब्दों में उनकी अस्थियों को सुरक्षित रखने, उनके जोड़ों को सुरक्षित रखने या उनको स्वस्थ रखने के उपाय के बारे में बताना चाहें, हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे?
0: देखिए, एक चीज मैं आपसे यहां कहना चाहूंगा, हड्डी और जोड़ आपके शरीर रूपी इमारत की सरिया है। आप भी जानते हैं बिल्डिंग बनती है सरिया से, कंक्रीट से, सीमेंट से। अगर सरिया आपकी जंग लगी होगी तो बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह से अगर आपके हड्डी और जोड़ अगर आपके कमजोर हैं तो आपकी शरीर रूपी इमारत ढह जाएगी। तो इसको करने के लिए आपको अपने हड्डी और जोड़ के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए, रोगों से बचने के लिए अपने आहार पर ध्यान दीजिए, पर्याप्त प्रोटीन लीजिए, विटामिन लीजिए, हल्का फुल्का व्यायाम तो जरूर करें और अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम को घटाएं या बढ़ाएं। एक अच्छी नींद जरूर लें, 6 से 8 घंटे की एक स्वस्थ नींद आपको तमाम रोगों से दूर रख सकती है। और तनावग्रस्त न रहें, जिंदगी बहुत छोटी है, इसका आनंद लें।

0: और ये मान के चले कि जितने दिन के लिए भी हम इस ग्रह पर हैं, हमें एक सुखी स्वस्थ जीवन जीना है। इस सकारात्मक विचार के साथ आप अपनी जीवनचर्या को और अपनी जीवन शैली को ढाल लें।
1: तो श्रोताओं, आपने डॉक्टर साहब को सुना ही, और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो भी आपको बातें बताई हैं, विशेष करके स्वस्थ रहने की और जो तनावपूर्ण हमारा जीवन है उसे दूर करके खुद को अच्छी जीवन शैली में ढाल कर खुश रहने की बात, और आपके जो ढेरों भ्रम रहे, आपके जो हड्डियों संबंधित, आपके जोड़ों से संबंधित ढेरों भ्रम रहे, वो डॉक्टर साहब ने दूर भी किए होंगे। हमें यूं ही सुनते रहें, हमें फोन करते रहें, अपने मैसेज भेजते रहें और लगातार इस कार्यक्रम का आनंद उठाते रहें। डॉक्टर साहब, आपने हमें इतना बहुमूल्य समय दिया और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, हमें यूं ही सुनते रहें, और हमारा जो अगला विषय है वो है चिकित्सीय जांचें जरूरी क्यों। आप हमें फोन कर सकते हैं, अपने संदेश भेज सकते हैं, हमें यूं ही सुनते रहें। नमस्कार।

0: ये था हमारा आज का कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया सुभाष खन्ना ने। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं। अब प्रस्तुत है दिव्यांगजनों हेतु कार्यक्रम संकल्प। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर कृष्ण दत्त से भेंटवार्ता, जिसका विषय है दिव्यांगजन का मानसिक स्वास्थ्य। आपसे भेंट कर रहे हैं राघवेंद्र सिंह।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम संकल्प में कीजिए स्वीकार। राघवेंद्र का नमस्कार। श्रोताओं, पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा से हम सभी परिचित हैं। सन 2011 में एक दुर्घटना के कारण अपने पैरों को खोया, लेकिन प्रबल मानसिक शक्ति को अपना साथी बनाकर सन 2013 में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को अपने कदमों तले लाकर मन के हारे हार है और मन के जीते जीत इस सूत्र वाक्य को चरितार्थ किया। श्रोताओं, हमारा आज का विषय दिव्यांग जनों का मानसिक स्वास्थ्य भी इसी से संबंधित है। श्रोताओं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं KGMU के पूर्व मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कृष्ण दत्त जी। डॉक्टर कृष्ण दत्त जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहेंगे कि आखिर ये मानसिक स्वास्थ्य क्या है।
3: जी राघवेंद्र जी, अपने हिंदी में मानसिक स्वास्थ्य बड़ा अद्भुत है। दरअसल ठीक से कहें हम तो स्वास्थ्य शब्द में ही मानसिक स्वास्थ्य शामिल है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ होता है जो व्यक्ति स्व में स्थित है वो स्वस्थ है, और जो स्व में स्थित है वो मानसिक स्वास्थ्य उसका पहले ही ठीक होगा। जैसे जो गृह में स्थित है उसे गृहस्थ कहते हैं, तो जो स्व में स्थित है उसे स्वस्थ कहते हैं। तो स्वास्थ्य शब्द ही इस बात को इंगित करता है कि पहले मानसिक स्वास्थ्य फिर शारीरिक स्वास्थ्य।
2: डॉक्टर साहब, शारीरिक स्वास्थ्य किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है?
3: जी, ये दोनों दरअसल एक दूसरे पर न सिर्फ निर्भर हैं, एक दूसरे को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। एक जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, जिस व्यक्ति का पेट खराब रहता है, हाजमा खराब रहता है, थोड़े दिनों में उसे डिप्रेशन हो जाता है। और जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, जिनको अवसाद होता है, थोड़े दिनों में उनका पेट खराब होने लगता है। तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का भी मन पे प्रभाव पड़ता है, और मन का प्रभाव भी शरीर में गहन रूप से पड़ता है। बहुत सारी बीमारियां तो ऐसी हैं जो मन के कारण होती हैं।
2: जी, दिव्यांगता भी किसी तरह से क्या मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है?
3: जी, दिव्यांगता थोड़ी अलग स्थिति है। एक बीमारी तो अलग हो गया, लेकिन दिव्यांगता का अर्थ है कि किसी विशेष क्षेत्र में उनमें कुछ कमी है। लेकिन यहाँ मैं एक बात को जोड़ देके कहना चाहूंगा कि परम सत्ता का ऐसा विधान है कि किसी व्यक्ति में किसी क्षेत्र में अगर कोई न्यूनता रह जाती है तो किसी दूसरे क्षेत्र में परम सत्ता उसकी भरपाई करती है। जैसे अक्सर देखने में आता है कि जो दृष्टि बाधित होते हैं उनकी स्पर्श करने की शक्ति बहुत व्यापक होती है, बहुत तीक्ष्ण होती है। वो स्पर्श से बहुत सारी बातें समझ सकते हैं जो सामान्य जन हम सब नहीं समझ सकते। ठीक इसी भांति जो श्रवण बाधित होते हैं तो उनको शंका रहती है कि जैसे उनसे कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ नहीं बताया जा रहा है। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि जो इनकी विशेष मनोदशा है उसको ख्याल में रख के इनसे बातचीत करी जाए, क्योंकि ये लोग थोड़ा सामान्य लोगों से ज्यादा संवेदनशील होते हैं, इनकी संवेदनशीलता बढ़ी हुई होती है। तो उसी ढंग से इनसे वार्तालाप करना चाहिए और उसी

0: से इनके साथ व्यवहार करना चाहिए।
1: जब हम मानसिक बीमारी की बात करते हैं और इसी के साथ एक और शब्द आता है मानसिक मंदता, तो ये मानसिक मंदता मानसिक बीमारी से किस तरह से भिन्न है?
0: जी, ये राघवेंद्र जी आपने बहुत ही सुंदर सवाल किया है, क्योंकि अक्सर दोनों को लोग एक ही करके देख लेते हैं और सामान्य जन में धारणा रहती है कि वो पागल है।
1: जी,
0: तो पहली बात तो है कि पागल किसी मानसिक बीमारी का भी नाम नहीं है। दो चीजें हैं, एक है मानसिक बीमारी, तो जैसे शारीरिक बीमारी होती है किसी भी समय इंसान को हो सकती है और इलाज से वो ठीक हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से मानसिक बीमारी होती है जो होने के बाद इलाज से ठीक हो जाती है। लेकिन जो मानसिक मंदता है ये एक तरह से कमी का प्रतीक है। जैसे हाथ में पांच उंगलियां हैं, ये सबसे बड़ी है, ये इससे छोटी है और ये सबसे छोटी है, लेकिन इनमें से बीमार कोई नहीं है।
1: जी जी,
0: यानी ये इससे छोटी है साइज में
1: जी,
0: लेकिन बीमार नहीं है। तो मानसिक मंदता का अर्थ है कि उनमें मानसिक क्षमता, मानसिक दक्षता सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम होती है।
1: जी,
0: जैसे मंद बुद्धि से कहा जाता है ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को मंद बुद्धि कहा जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बच्चों की बात की तो बच्चों में आजकल ऑटिज्म जैसी समस्या काफी ज्यादा देखी जा रही है।
0: जी,
1: तो इसे मानसिक मंदता में माना जाए या मानसिक बीमारी में?
0: थोड़ा सा ये इन दोनों से डिफरेंट है इस सेंस में कि चूंकि ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है तो उस तरीके से बीमारियों से इसकी तुलना नहीं हो सकती। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का अर्थ ये होता है राघवेंद्र जी कि ये बच्चे सामान्य पैदा होते हैं, सामान्य ढंग से बैठना शुरू करते हैं, सामान्य ढंग से चलना शुरू करते हैं, लेकिन जो ही बोलने की बारी आती है तो बोलना और भाषा विकास ये इनका अवरुद्ध होने लगता है। और उसके दो प्रमुख कारण है, एक तो इनमें अति चंचलता होती है। चंचलता बच्चों का स्वभाव है, बच्चा है तो चंचल होगा, लेकिन अति चंचलता। और ठीक इसी प्रकार से दूसरी टेंडेंसी होती है, अपने में गुम होने लगते हैं, अपने में ही सेल्फ एब्जॉर्ब, अपने में ही लीन रहते हैं। ऑटिज्म का हिंदी शब्द बड़ा प्यारा है, स्वलीनता, ये अपने में लीन रहते हैं।
1: जी,
0: तो इसको हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे किसी को वैराग्य हो गया तो दुनिया से मतलब नहीं रहता, वो वनगमन की ओर जाता है, जैसे सिद्धार्थ जी चले गए थे। तो कुछ कुछ ऐसी ही स्थिति इन बच्चों की होती है, बस दोनों में फर्क ये है कि उन्हें संसार का ज्ञान हो गया इसलिए वैराग्य हो गया, और ये एक चूंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है इसकी वजह से दुनिया से कटे कटे रहते हैं और अपने में लीन रहते हैं। तो जैसा अभी हमने कहा, इस टोटल नाम को कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इसमें जो ट्रेनिंग है वही इनका इलाज है, इनका इलाज दवा में नहीं है, ट्रेनिंग दी जाती है। जिनमें स्वलीनता का तत्व ज्यादा है उन्हें सामाजिकता की ओर ले जाना होता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलना, दूसरे बच्चों से जोड़ना। माँ को बताया जाता है कि अगर छोटा बच्चा है तो उसे गोद में लें, उसको किस करें, हक करें। अब देखिए मित्र, इसको उसी बात से जोड़िए, सिद्धार्थ के पिता सुद्धोधन ने भी क्या किया था?
1: जी, जी।
0: कि इसको राग रंग में उलझा दो, शादी कर दो और ये जीवन के वैभव सुख में उलझ जाएगा। हाँ। तो वैराग्य खत्म हो जाएगा।
1: जी, जी।
0: तो ये बच्चे भी चूंकि विरागी हैं अपने ढंग से, तो इनको भी हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। छोटा बच्चा है तो माँ उसे किस करे, हक करे, थोड़ा बड़ा हो गया है दूसरे बच्चों के साथ खेले जुड़े, क्योंकि जितनी रिलेटेडनेस होगी, जितना दूसरे बच्चों के संपर्क में आएंगे तो धीरे धीरे विकसित होने लगे।
1: अभी आपने बच्चों में स्वलीनता की बात की, आपने बताया कि ऑटिज्म को हिंदी में स्वलीनता कहा गया है, लेकिन अगर हम ऑटिज्म को बाहर कर दें, सिर्फ स्वलीनता शब्द को लें, तो स्वलीनता जो होती है कभी कभी युवाओं में या वृद्धजनों में भी देखने को मिलती है, तो ये कब किसी भी व्यक्ति के लिए मानसिक समस्या का रूप ले सकती है?
0: हाँ, दरअसल जैसा मैंने इंगित किया, वो बचपन में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, उसमें स्पीच एंड लैंग्वेज, बोली और भाषा, इसका विकास नहीं होता है, वहाँ उसे स्वलीनता कहते हैं।
1: जी, जी।
0: इसी कारण से हम लोग किसी उसमें लीन है, कुछ सोच रहे हैं या डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ये स्थिति बिल्कुल फर्क है, ये स्थिति बिल्कुल दूसरी।
1: अगर किसी दिव्यांग जन को मानसिक समस्या हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें परिवार की और समाज की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है?
0: जी, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि ये बीमारी नहीं है, किसी कारण से इनकी क्षमता थोड़ी सी कम है, तो हम पहले इनका आकलन कराएं मनोवैज्ञानिक कि उनकी क्षमता है कितनी, उस क्षमता के अनुसार ही उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और वो कार्य करने लगते हैं। यहाँ मैं एक बात फिर विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, जिसका मैंने जिक्र किया था शुरू में, कि परम सत्ता हमेशा सबके साथ न्याय करती है, तो वो किसी विशेष क्षेत्र में उनकी क्षमता सामान्य से कई बार ज्यादा भी होती।
1: जी,
0: जैसे मेरा अपना सेंटर था तो उसमें बच्चों को देखने में आता था कि बच्चा मानसिक दिव्यांग है प्रथम श्रेणी का, लेकिन उसकी आर्ट बहुत अच्छी बनती है, कोई बच्चा गा बहुत सुन

0: लेता है, कोई बच्चा लिख बहुत सुंदर लेता है। तो जो उनकी विशिष्ट प्रतिभा है उस क्षेत्र में ही उनको आगे बढ़ाना होता है, और बाकी चीजों में वो उसकी कम क्षमता के अनुसार उसका समायोजन बिठाना होता है। तो संदेश ये है अभिभावकों के लिए और उनके लिए कि उनको दया की जरूरत नहीं है, दरअसल आपके सहयोग की जरूरत है, उनकी क्षमता को पहचाने, विशिष्ट प्रतिभा को जाने और उधर ही उसको आगे बढ़ाए।
1: डॉक्टर साहब, आपने एक लंबा समय KGMU जैसे संस्थान के साथ गुजारा, तो सरकार के द्वारा इस समस्या की ओर क्या क्या प्रयास किए जाते हैं कि जो भी लोग, जो दिव्यांग जन मानसिक समस्या से ग्रसित हैं, मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं, मानसिक मंदता से ग्रसित हैं, तो उनको सामान्य धारा से जोड़ा जाए, इसके लिए सरकार क्या प्रयास करती है?
0: एक तो सरकार ये करती है कि दिव्यांग जनों का सर्टिफिकेशन होता है, तो वो सर्टिफिकेशन CMO के द्वारा हो जाता है, तो सरकार उनको कुछ जो आर्थिक श्रेणी में निम्न स्तर पे आते हैं उनको आर्थिक सहायता भी मिलती है, यातायात में उनको सुविधा मिलती है, चाहे वो बस सेवाएं हो और चाहे रेल सेवाएं हो, तो उनमें इसकी सुविधा मिलती है। दूसरी बात कि पढ़ने लिखने में भी इनको थोड़ी विशेष सुविधा दी जाती है। एक व्यवस्था है नेशनल ओपन स्कूल की, तो नेशनल ओपन स्कूल से इनको परीक्षा दिलवाई जाती है, और उसमें ये व्यवस्था होती है कि एक सत्र में अगर उन्होंने दो विषय निकाल लिए और दूसरे सत्र में दूसरे दो विषय निकाल लिए, तो धीरे धीरे उनकी प्राथमिक शिक्षा भी हो जाती है। बस गौर ये करना होता है कि इन्हें अनावश्यक दूसरी चीजें नहीं सिखाई जाती। हम लोग उसको इस तरह से समझें कि चूंकि सीमित क्षमता है तो हमेशा वही चीजें सिखाने का प्रयास करना है जो जीवन में उपयोगी है, जिससे उनकी ऊर्जा, उनकी क्षमता व्यर्थ में जाया न हो।
1: कई बार परिवारजनों को लगता है कि उनका बच्चा जो है या उनके जो युवा है जो उनके घर में, वो समस्या से ग्रसित है, तो पता नहीं उसके भविष्य का क्या होगा, ये चिंता परिवारजनों को सताती है। तो ऐसे में परिवारजन क्या कदम उठा सकते हैं ताकि वो जो उनका बच्चा है, बेटा है, बेटी है, सामान्य धारा में जुड़ जाए और जो कार्य, जो भविष्य है उसको भी अपना सुरक्षित रख सके?
0: जी, इसमें अक्सर लोग आते हैं पेरेंट्स और बड़े भावुक होकर के कहते हैं कि इसके भविष्य का क्या होगा। तो हम लोग इसको थोड़ा एक दूसरे उदाहरण से बताते हैं कि भविष्य तो जो बच्चा आपका जीनियस है उसका भी आप नहीं जानते कि उसका भविष्य क्या होगा। तो संसार में हम सबके रोल हैं, संसार में हम सबको अपना किरदार निभाना है, हम भविष्य के नियंता नहीं बन सकते। तो समझना यह है कि उसकी कम क्षमता के अनुसार कैसे उसको सुनियोजित ढंग से प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके, और जो सीखने लायक है वो उसको कार्य सिखाए जाए जिससे कुछ थोड़ा उद्यम भी कर सके।
1: डॉक्टर साहब, आपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मनोवैज्ञानिक के तौर पर गुजारा है, जिसमें आप बहुत ऐसे व्यक्तियों से भी मिले होंगे जो दिव्यांगजन होंगे, किसी मानसिक समस्या से भी ग्रसित होंगे, लेकिन उन्होंने बाद में बहुत अच्छा कार्य किया होगा। तो अगर कोई ऐसा उदाहरण है तो हमारे श्रोताओं को कृपया बताएं।
0: बिल्कुल, एक बच्ची हमारे ही सेंटर में पढ़ती थी और वो इंटरनेशनल ओलंपिक्स में पदक लाई, तो उनके अभिभावकों ने कहा कि देखो जो हमारा बच्चा पढ़ने में बहुत तेज था उसने उतना गौरवान्वित हमको नहीं किया जितनी ये हमारी बच्ची स्लो लर्नर दीपिका, और इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक लेके आई। तो अगर हम लोग अपना किरदार निभाते रहें, रोल निभाते रहें, तो प्राकृतिक न्याय अद्भुत होता है, जिसको जहां तक जाना है वहां तक जाएगा। आप अपना प्रयास कर सकते हैं, आगे प्रभु की इच्छा।
1: डॉक्टर साहब, हमारे कई दिव्यांगजन साथी भी इस समय रेडियो को सुन रहे हैं और उनके परिवार से जुड़े लोग भी सुन रहे होंगे, तो उन सब के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, सबसे पहला प्रमुख संदेश ये है कि संसार में जो भी उथल पुथल और जो भी गड़बड़ मची हुई है वो ज्यादा बुद्धिमान लोगों की वजह से मची हुई है। दिव्यांग जनों की वजह से संसार की कभी कोई क्षति नहीं हुई। तो इनके साथ सहयोग करें और उनकी क्षमता को समझ करके उनको विकसित करें और उनकी विशिष्ट प्रतिभा मनोवैज्ञानिक ढंग से जांच करके उस क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, तो कई बार ये बच्चे आपको गौरवान्वित महसूस करा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: श्रोताओं, कार्यक्रम संकल्प के आज के अंक में इतना ही, अगले अंक के साथ हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिव्यांगजन का मानसिक स्वास्थ्य, अभी आप इस विषय पर डॉक्टर कृष्ण दत्त से भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट की राघवेंद्र सिंह ने। इसके साथ ही आज का संकल्प कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर पत्र संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना

जानता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटो यूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 4:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। इस फिल्म का गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण और संगीत मदन मोहन का है।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म दादा का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और शैलेंद्र सिंह ने। गीत के बोल असद भोपाली की और संगीत उषा खन्ना का है।

फिल्म दादा के इसी गीत के साथ चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक झंकार। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं सुरेश प्रसाद कुशवाहा और साथी। आज आप इनसे सुनेंगे कुछ भोजपुरी लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं आपके गाइस खेमटा के साथ।

लोक झनकार कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कलाकार हैं सुरेश प्रसाद कुशवाहा और साथी। अब लीजिए सुनिए आपके स्वर में ये लाचारी।

लोक झनकार कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं सुरेश प्रसाद कुशवाहा और साथियों के स्वर में कुछ भोजपुरी लोकगीत। अब लीजिए सुनिए ये कहरा।

0: अभी आपने सुना ये निर्गुण स्वर सुरेश प्रसाद कुशवाहा और साथियों के थे। इसके साथ ही आज का लोक झंकार कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि
0: मीडियम वेव 401.5

मतलब 6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि व्यापार समझौता वार्ता को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने ऊर्जा व्यापार में इसके विस्तार का स्वागत किया और कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में ऊर्जा आपूर्ति विविधता महत्वपूर्ण है। ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के हित ये सुनिश्चित करने में है कि वैश्विक ऊर्जा मूल्य निचले स्तर पर बने और व्यापार निर्बाध हो।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
2: These would be the principles with which we would approach that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। इससे पहले बातचीत की शुरुआत में डॉक्टर जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक स्तर पर भागीदारी का उल्लेख किया। श्री रूबियो 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के मतों की गिनती के 20वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। मतगणना डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय में चल रही है। भाजपा के देवांशु पांडा ताजा समाचार मिलने तक 1,04,000 मतों से आगे चल रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, जबकि कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे स्थान पर हैं। तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान चौथे स्थान पर चल रहे हैं। महाराष्ट्र की नासिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया, जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। बोर्ड के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में शुल्क खाते में लौटा दी जाएगी। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में कोलकाता में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा।

0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण आज के शेष व कल के विशेष कार्यक्रमों का। पहले एक नजर आज के शेष कार्यक्रमों पर।

रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण समय होगा आज रात 10 बजे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। युवा तरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से थोड़ी ही देर में शाम 5:10 पर। कार्यक्रम में आज स्ट्रेस मैनेजमेंट पर आप सुनेंगे विष्णु प्रिया से ओबी आधारित रिकॉर्डिंग। शाम 5:45 पर हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम नई उड़ान। लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे आद्या प्रसाद सिंह प्रतीप से लोक भाषा अवधि में कहानी पाठ। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में सफलता की कहानी के अंतर्गत अनिल कुमार सिंह से सुनिएगा कृषि विविधीकरण के बारे में और इनसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम होगा आज शाम 7:31 पर। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी नीना सोनकर और सुमोना एस पांडे। आज रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष और अवध के क्रांतिकारी। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अमित राय। इलियास खां के गाय और गीतों और भजनों का आनंद श्रोता ले सकेंगे आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:10 पर। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब सुनिए कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। कल शाम 5 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे नागरिक अलंकरण समारोह का भाग एक का सीधा प्रसारण। कल सवेरे 6:05 पर कृषि चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी से जानिएगा जल प्रबंधन की उन्नत तकनीक विषय के बारे में। स्वास्थ्य चर्चा में कल सवेरे 7 बजे ORS 1 फायदे अनेक विषय के बारे में चर्चा करेंगी नीना सोनकर। कल सवेरे 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में विषय होगा विश्व फुटबॉल दिवस। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सवेरे 7:30 पर आप सुनेंगे नरेश मल्होत्रा का ख्याल गायन और रात 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे विदुषी गिरिजा देवी का ख्याल गायन। जिले की हलचल का प्रसारण समय होगा प्रातः 9:15। उर्दू प्रोग्राम में कल सवेरे 9:30 पर समाज फरमाइएगा नगमगी। कल दिन में 1:15 पर बहनी सुनेंगी कार्यक्रम घर आंगन। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में कल दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे जायद फसलों में नैनो उर्वरकों का प्रयोग विषय पर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता। युवा तरंग कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होते हैं शाम 5:10 पर। वहीं कार्यक्रम नई उड़ान आप सुनेंगे शाम 5:45 पर। लोकायतन कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा कल शाम 6:30। खेती किसानी कार्यक्रम में कल शाम 6:50 पर आप सुनेंगे डॉक्टर संतोष कुमार द्विवेदी से भेंटवार्ता। विषय होगा पशुओं में गला घोंटू कारण और निवारण। से भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। कल शाम 7:31 पर होगा कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। स्वास्थ्य वार्ता स्वास्थ्य मैगजीन के अंतर्गत कल आप सुनेंगे थायराइड ग्रंथि की समस्या। विश्व थायराइड दिवस पर विशेष कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष यादव और इनसे भेंट करेंगे आशीष चतुर्वेदी। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे चक्कर आने के कारण और कान की समस्या। इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर मनीष

चंद से आशीष चतुर्वेदी की ये भेंटवार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे विमल किशोर श्रीवास्तव का काव्य पाठ, कैलाश जोशी की गाई गजलों का आनंद आप ले सकेंगे कल के सुगम संगीत के कार्यक्रम में, और कार्यक्रम का प्रसारण समय आपको बता दें कल रात 8:10। कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ।

मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। शाम के 5:10 हुए हैं। अब सुनिए नई सोच और नई उमंग के साथ कार्यक्रम युवा तरंग।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट और दोस्त मांडवी, लेकर हाजिर हो गई हूँ आपका अपना प्रोग्राम युवा तरंग, जहाँ हम बात करते हैं देश की, दुनिया की और आपकी अपनी। दोस्तों, दुनिया चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो देशों को भी एक दूसरे से जोड़ते हैं। रिश्ते सहयोग के होते हैं, संस्कृति के, विकास के और आपसी सम्मान के। और आज का हमारा विषय भी कुछ ऐसा ही है। विषय है कॉमनवेल्थ डे, एक ऐसा अवसर, एक ऐसा दिन जो दुनिया के अलग अलग देशों को एक साझा मंच पर लाने का काम करता है। जब हम कॉमनवेल्थ शब्द सुनते हैं तो ये सिर्फ देशों का एक समूह नहीं लगता, बल्कि ये एक परिवार जैसा महसूस होता है, जहां अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और ट्रेडिशंस होते हुए भी शेयर्ड भावना मौजूद है, साथ मिलकर आगे बढ़ने की भावना है ना। और जब हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी ने दुनिया को पहले से कहीं ज़्यादा कनेक्टेड बना दिया है। अब देखिए ना, आप और हम रेडियो के ज़रिए हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन और भी कई माध्यम हैं। इंटरनेट के ज़रिए हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और ये जो कनेक्शन है ये बना ही रहना चाहिए। और ऐसे समय में जब हम लोग इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ग्लोबल फ्रेंडशिप के महत्व को बढ़ा रहे हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, हमें आपकी और अपनी स्थिति का पता चलता है, देश दुनिया को पता चलता है कि इस देश में क्या हो रहा है और उस देश में क्या हो रहा है। और आज तो हम वैसे बात कर रहे हैं कॉमनवेल्थ डे की, तो कॉमनवेल्थ डे इसी सोच को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो आइए आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में जानते हैं क्या है कॉमनवेल्थ, क्यों मनाया जाता है आज का दिन, और दुनिया के देशों के बीच कॉपरेशन और यूनिटी में इसकी क्या भूमिका है। और आगे हम आपको बताएंगे इसके बारे में, लेकिन उसके पहले सुनेंगे।

0: दोस्तों, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन दुनिया की कई इंडिपेंडेंट कंट्रीज का एक ग्रुप है। इसमें ऐसे देश शामिल हैं जो कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रहे थे, जिनका ऐतिहासिक संबंध उनसे रहा था। लेकिन आज कॉमनवेल्थ केवल इतिहास तक सीमित नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट, यूथ डेवलपमेंट और इंटरनेशनल कॉपरेशन जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करती है। इसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, पैसिफिक और कैरेबियन रीजन के जो देश हैं वो भी शामिल हैं। यानी ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां अलग अलग कल्चर्स और सोसाइटीज एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, है ना। और आपको बता दें कि हर साल मार्च मंथ के सेकेंड मंडे को कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इसका एक ये भी है कि 24th ऑफ मई एक फिक्स डेट भी है, और उसके अलावा हम लोग सेकेंड मंडे को भी सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन का एक उद्देश्य ये है कि मेंबर कंट्रीज के बीच फ्रेंडशिप, पीस और शेयर्ड वैल्यू को सेलिब्रेट करना। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अलग अलग देशों के बीच कॉपरेशन कितना ज़रूरी है, क्योंकि आज दुनिया जिन चैलेंजेस का सामना कर रही है, जैसे क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, हेल्थ और टेक्नोलॉजी, उनका सॉल्यूशन मिलकर काम करने से ही संभव है। साथ ही हम लोग और भी बातें करेंगे कॉमनवेल्थ डे पर, लेकिन उसके पहले आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता, माफ कीजिएगा, एक वार्ता जिसका विषय है पतंजलि योग दर्शन में शारीरिक स्वास्थ्य की उपयोगिता। आज के संदर्भ में वार्ताकार हैं सार्थक द्विवेदी, जो के लखनऊ विश्वविद्यालय से शोध के छात्र हैं। आइए सुनते हैं।
1: मेरा नाम सार्थक द्विवेदी है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय से शोध का छात्र हूँ। आज हम बात करेंगे पतंजलि योग दर्शन में शारीरिक स्वास्थ्य की उपयोगिता आज के संदर्भ में। आधुनिक समय बहुत ही तेजी से बदलता जा रहा है। विज्ञान और तकनीक ने मनुष्य का जीवन बहुत ही आसान बना दिया है। मोबाइल, कंप्यूटर और मशीनों ने काम को सरल बना दिया है। वहीं दूसरी ओर मनुष्य का जीवन तनाव, चिंता और बीमारियों से भी भरता जा रहा है। आज अधिकांश लोग शारीरिक और मानसिक समस्याओं से परेशान हैं। ऐसे समय में ये प्रश्न उठता है कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित सिद्धांत आज के संदर्भ में कितने उपयोगी और लागू हैं? क्या योग सूत्र के अनुशासनात्मक उपाय आधुनिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं? भारत की प्राचीन विद्याओं एवं छह आस्तिक दर्शनों में योग एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। योग को केवल शारीरिक व्यायाम के रूप में देखना इसकी सीमित समझ ही होगी, क्योंकि ये आत्मशुद्धि, मानसिक अनुशासन और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। योग की इस गूढ़ पद्धति को महर्षि पतंजलि ने सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया, जिसे हम आज पतंजलि योग सूत्र के नाम से जानते हैं। ये ग्रंथ योग दर्शन का मूल आधार है और आज भी मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी और मार्गदर्शक है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र संस्कृत भाषा में एक संक्षिप्त किंतु गहन ग्रंथ है, जिसमें कुल 195 सूत्र हैं। इस ग्रंथ में योग को मन और शरीर के नियंत्रण, आत्मानुशासन तथा चेतना

की उच्च अवस्था तक पहुंचने का साधन बताया गया है। पतंजलि ने योग को 8 अंगों में विभाजित किया, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा रचित पतंजलि योग सूत्र में वर्णित ऐसी साधना पद्धति है, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य में मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अष्टांग योग, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, 8 अंगों वाला योग, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि आते हैं। यम अष्टांग योग का पहला अंग यम है। यम बाहरी आचरणों की शुद्धि करता है। मनुष्य का चरित्र शुद्ध होने पर ही वो साधना में प्रवृत्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। यम द्वारा अच्छे संस्कारों का उदय भी होता है। यम शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की दो धातुओं से मानी जाती है। पहला है यम उप्रमे। यम उप्रमे का अर्थ है ब्रह्म में रमण करना, और दूसरा है यम बंधने, अर्थात सामाजिक बंधन। यमयंती निवर्त्यंती इति यमा, अर्थात जो अवांछनीय कार्यों से मुक्ति दिलाता है वो यम कहलाता है। पतंजलि योग सूत्र में 5 प्रकार के यमों का वर्णन किया गया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 प्रकार के यम हैं, जिसमें पहला है अहिंसा। मन, वचन एवं कर्म से किसी भी प्राणी के प्रति वैर भाव नहीं रखना ही अहिंसा कहलाता है। ये अहिंसा भाव रूप में भी होनी चाहिए और क्रिया में भी। ऐसा ना हो कि भाव तो अहिंसा का रखते हैं लेकिन क्रिया रूप में हिंसा भी हो रही है। अतः भाव और क्रिया रूप से किसी भी प्राणी को वाणी तथा कर्म से किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं देना ही अहिंसा है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो शब्दों से, विचारों से और कर्मों से किसी को अकारण हानि नहीं पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। दूसरा है सत्य। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के विषय में हम जो कुछ या जैसा भी जानते, समझते या सुनते हैं, उसे वाणी से उसी रूप में व्यक्त करना ही सत्य कहलाता है, तथा वह सत्य जो प्रिय तथा हितकर भी हो और जिससे किसी भी प्राणी को दुख न पहुंचे। तीसरा है अस्तेय। सामान्य शब्दों में कहें तो चोर प्रवृत्ति का न होना या चोरी नहीं करने का भाव अस्तेय कहलाता है। सांसारिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी संसाधनों का स्वामित्व किसी न किसी के पास होता ही है, अतः बिना स्वामी से पूछे किसी भी वस्तु को न लेना अस्तेय कहलाता है। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या में अपने जीवन को ढालना ही ब्रह्मचर्य है। अन्य शब्दों में कहें तो चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना तथा सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना ब्रह्मचर्य कहलाता है। पांचवा है अपरिग्रह। जीवन निर्वाह के मध्य विभिन्न संसाधनों का उपयोग एवं प्रयोग स्वाभाविक है, और जितने की आवश्यकता से मनुष्य का जीवन निर्वहन हो सके उतने में ही जीवन को जीना ही अपरिग्रह है। अगर हम ये कहें कि अपरिग्रह का अर्थ आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना और दूसरों की वस्तुओं की इच्छा नहीं करना ही अपरिग्रह है। नियम। यमों के साथ नियमों का पालन भी आवश्यक है। यमों में मानसिक भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, तो नियम से मनुष्य जीवन का नियमन होता है। यम और नियम साधक के लिए क्रमशः सामाजिक और वैयक्तिक उपलब्धि है। वेदों में यम और नियम को पक्षी के दो पंखों के समान कहा गया है। जिस प्रकार पक्षी अपने दोनों पंखों के फड़फड़ाने पर ही आकाश में विचरण करते हैं, उसी प्रकार योगी को भी यम नियम का समान भाव से पालन करना अनिवार्य है, तथा इसके पालन से ही वो योग साधना के पथ पर अग्रसर होता है। वैदिक मत के अनुसार 5 प्रकार के नियमों का उल्लेख संहिताओं में मिलता है, जिनका उल्लेख महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में इस प्रकार किया है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 प्रकार के नियम हैं। आधुनिक समाज में जहां आत्म केंद्रता और हिंसा बढ़ रही है, वहीं पतंजलि के यम नियम सामाजिक सौहार्द, करुणा और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देते हैं। अष्टांगों में तृतीय स्थान आसन को दिया गया है। आसन शब्द से संस्कृत के अस उपवेशने धातु से लुट प्रत्यय लगकर बना है, जिससे उसका अर्थ है स्थिरता से बैठना। वेदों में विभिन्न अवसरों में बैठने के अर्थ में आसन शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे अध्ययन के लिए निषिद्धत शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो अच्छी प्रकार सुखपूर्वक बैठने का परिचायक है। इस प्रकार वेदों के अनुसार योग के अभ्यासी को स्थिरता के साथ किसी एक स्थिति में बैठना चाहिए, जिस अवस्था में वो एक प्रहर या 3 घंटे तक बिना कष्ट के निश्चल बैठ सके। दूसरे अर्थ में आसन का अर्थ ये है इस प्रकार बैठने की वो अवस्था जिसमें शरीर, मन और आत्मा एक साथ और स्थिर हो जाती है, तथा उससे जो सुख की अनुभूति होती है वो स्थिति आसन कहलाती है। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण तथा आयाम। प्राण का अर्थ है वो वायवी शक्ति जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। प्राण एक जीवनी शक्ति है, तथा आयाम का अर्थ है नियंत्रण करना या विस्तार करना। इस प्रकार प्राणायाम वो प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शरीर की प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति को बढ़ाना। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को इस प्रकार परिभाषित किया है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः, अर्थात आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति का नियमन करना ही प्राणायाम है। इस आसन से

0: बीमारी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से सही हो जाती है। योगांगों में पांचवा अंग प्रत्याहार को दिया गया है। प्रत्याहार की साधना अति आवश्यक व कठिन साधना है। इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अंतर्मुखी बनाना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार का सामान्य अर्थ होता है पीछे हटना। इस प्रकार इंद्रियों का अपने विषय से अलग होकर अंतर्मुखी हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। इस आसन से हम एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और मन की व्याकुलता कम हो सकती है। धारणा, योगांगों में छठा अंग धारणा है। मन को बाहरी या आभ्यंतर किसी एक स्थान में बांधना ही धारणा है। प्राणायाम के सतत अभ्यास से जब धारणा की सामर्थ्य आ जाती है, तब चित्त को अपने शरीर के अंदर या बाहर किसी एक स्थान पर केंद्रित कर देना ही धारणा है। महर्षि पतंजलि के अनुसार देश बंधस चित्तस्य धारणा, अर्थात मन का किसी एक स्थान में ठहरना ही धारणा है। धारणा से एकाग्रता में सुधार होता है, जिससे हम आप रोजमर्रा के कामों में ध्यान लगाने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ध्यान, तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम, अर्थात जहां मन को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। एक तार से अभिप्राय है एक सा बना रहना। धारणा में चित्त को किसी एक स्थान पर ठहराया जाता है या स्थिर किया जाता है, जबकि ध्यान में चित्त एक स्थान पर स्थिर हो जाता है तथा निरंतर उसी में एक तार स्थिर रहता है, तो उसी को ध्यान कहते हैं। धारणा और ध्यान में यही अंतर है। विचारों का प्रभाव ध्यान में बंद हो जाता है तथा वृत्ति का प्रभाव केवल ध्येय मात्र की तरह ही हो जाता है। इस समय अन्य कोई वृत्ति भी नहीं उठती। धारणा से मन की शुद्धि होती है। ध्यान के स्थिर होने पर साधक का अहम भाव भी समाप्त हो जाता है, जिससे समाधि की प्राप्ति होती है। आठवां अंग है समाधि। तदैवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, अर्थात चित्त जिसका ध्यान कर रहा हो उसका स्वरूप शून्य होकर जब केवल ध्येय मात्र की प्रतीति होती है, वो स्थिति समाधि कहलाती। अष्टांग योग में समाधि का विशेष स्थान है। ये साधना की वो चरम अवस्था है जिसमें साधक का बाहरी जगत से संबंध टूट जाता है। इस अवस्था में योगी उत्कर्ष की प्राप्ति कर मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। यही मोक्ष प्राप्त करना मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अतः मोक्ष प्राप्ति से पूर्व मनुष्य को समाधि की स्थिति को प्राप्त करना आवश्यक है। समाधि मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन है। इस प्रकार समाधि को किया न कहकर उपलब्धि कहा जा सकता है। ये साधना न होकर एक घटना है जो कि ध्यान के स्थिर होने पर स्वयं घटित होती है। योग सूत्र में वर्णित आसन और प्राणायाम के अभ्यास से शरीर लचीला, ऊर्जावान और रोगों से मुक्त रहता है। नियमित योगासन हृदय, पाचन तंत्र और स्नायु प्रणाली को सुदृढ़ बनाते हैं। ये डिजिटल थकान और स्क्रीन टाइम के प्रभाव को भी कम करता है। इस अष्टांग योग से हम अधिक से अधिक बीमारियों से लड़ सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र न केवल भारत की आध्यात्मिक धरोहर है, बल्कि ये आज के वैश्विक मानव के लिए जीवन का मार्गदर्शन भी है। ये शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, नैतिक व्यवहार और आत्मिक उन्नति चारों ही स्तरों पर व्यक्ति का उत्थान करता है। आज के समय में आवश्यकता है इस अमूल्य ग्रंथ को केवल ग्रंथालयों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक जीवन में लागू भी किया जाए। पतंजलि योग सूत्र आधुनिक मानव के लिए एक शाश्वत दर्पण है, जो उसे स्वयं को देखने, सुधारने और विकसित करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद
1: दोस्तों। अभी आपने सुनी एक वार्ता जिसका विषय था पतंजलि योग दर्शन में शारीरिक स्वास्थ्य की उपयोगिता आज के संदर्भ में। वार्ताकार थे सार्थक द्विवेदी। आइए अब सुनते हैं ये गीत।

0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 27 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
1: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बहराइच,
0: ग्राम्य विकास विभाग, विकास भवन बलिया,
1: बलरामपुर चीनी मिल बलरामपुर,
0: BSA ऑफिस बस्ती,
1: नगर निगम परिषद देवरिया,
0: बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड कुंडर की गोंडा,
1: वरुण बेवरेजेस गीडा गोरखपुर,
0: नगर पालिका परिषद पडरौना कुशीनगर,
1: नवजीवन मिशन स्कूल आनंद नगर महाराजगंज,
0: रैना पेपर मिल खलीलाबाद संत कबीर नगर,
1: ग्राम्य विकास विभाग, विकास भवन श्रावस्ती,
0: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सिद्धार्थ नगर।

दोस्तों, भारत भी कॉमनवेल्थ का एक महत्वपूर्ण मेंबर है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी भारत ने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहने का फैसला किया। भारत ने हमेशा डेमोक्रेसी, पीस और डेवलपमेंट की भावना को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और शायद यही वजह है कि आज भारत ग्लोबल लेवल पर एक मजबूत रिस्पॉन्सिबल नेशन के रूप में देखा जाता है। जब कॉमनवेल्थ की बात होती है तो सबसे पहले कई लोगों को याद आता है कॉमनवेल्थ गेम्स। ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट मेंबर कंट्रीज के खिलाड़ियों को एक मंच देते हैं, एक स्टेज देते हैं। ये सिर्फ कंपटीशन नहीं होता, यहाँ फ्रेंडशिप और यूनिटी का भी प्रतीक होता है। इंडिया ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार परफॉर्मेंस दी है और कई खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग अपने प्रोग्राम में सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बातें थोड़ी करते हैं, हम लोग इंटरटेनमेंट की भी करते हैं। अभी आपने सुना है इश्क सूफियाना, लेकिन किसी शायर ने कहा है इश्क जावेदानी है। खैर, जो कर रहे हैं वो जान रहे हैं, तो हम लोग सुनते हैं एक और गीत।

0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 27 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
1: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बहराइच,
0: ग्राम्य विकास विभाग, विकास भवन बलिया,
1: बलरामपुर चीनी मिल बलरामपुर,
0: बीएसए ऑफिस बस्ती,
1: नगर निगम परिषद देवरिया,
0: बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड।

0: कुंडर की गोंडा,
1: वरुण बेवरेजेस, गीडा गोरखपुर,
0: नगर पालिका परिषद पडरौना कुशीनगर,
1: नवजीवन मिशन स्कूल आनंद नगर महाराजगंज,
0: रैना पेपर मिल खलीलाबाद संत कबीर नगर,
1: ग्राम्य विकास विभाग विकास भवन श्रावस्ती,
0: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सिद्धार्थ नगर।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दोस्तों, आज के युवाओं के लिए कॉमनवेल्थ डे एक बहुत अच्छा मैसेज लेकर आता है कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन ज़रूरी है, लेकिन कंपटीशन के साथ साथ जो कॉपरेशन होता है वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अलग अलग कल्चर्स को समझना चाहिए, डाइवर्सिटी का सम्मान करना चाहिए और ग्लोबल सिटीजनशिप की भावना को अपनाना चाहिए, क्योंकि आज का युवा सिर्फ अपने शहर या देश तक सीमित नहीं है, वो ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा है। तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमने जाना कि कॉमनवेल्थ सिर्फ देशों का ग्रुप नहीं है, बल्कि कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट और यूनिटी की भावना का एक प्रतीक भी है। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन पीस, जिसे हम कहते हैं शांति और सहयोग की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। और आइए इसी के साथ सुनते हैं ये गीत।

जी दोस्तों, जिंदगी है और जिंदगी है तो दंगल तो होते रहेंगे, और दंगलों को जीतना हमारा काम है। और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अपनी दोस्त मांडवी को दीजिए इजाजत, और आपको छोड़े जा रही हूँ इस गीत के साथ। सुनिए दंगल दंगल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा तरंग मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब सुनिए कार्यक्रम नई उड़ान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा तरंग, मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब सुनिए कार्यक्रम नई उड़ान।

साथियों, आज का नई उड़ान कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त पारुल का नमस्कार। दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। ये भारतीय संस्कृति का एक ऐसा मूल मंत्र है जो आज के वैश्विक परिदृश्य में भी बेहद प्रासंगिक है। जब हम वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के बीच सहयोग, शांति और एकजुटता की बात करते हैं तो हमारे सामने कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन आते हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है राष्ट्रमंडल। इस संगठन की एकता, इसके साझा इतिहास और भविष्य के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए हर साल राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में राष्ट्रमंडल दिवस हर साल 24 मई को मनाया जाता है। वहीं वैश्विक स्तर पर इसे मार्च महीने के दूसरे सोमवार को भी मनाने की परंपरा है। ये दिवस केवल एक तारीख नहीं बल्कि दुनिया भर के 56 देशों को एक मंच पर लाकर उनके बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का एक प्रतीक है। राष्ट्रमंडल उन स्वतंत्र देशों का एक स्वैच्छिक संघ है जिनमें से अधिकांश कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में दुनिया के 56 देश शामिल हैं। इन देशों की कुल आबादी लगभग 250 करोड़ से अधिक है, जो दुनिया की कुल आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा है। इसमें अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप और प्रशांत क्षेत्र के विकसित और विकासशील दोनों तरह के देश शामिल हैं। खास बात यह है साथियों कि इस संगठन में शामिल सभी देश पूरी तरह से संप्रभु और स्वतंत्र हैं और कोई भी देश किसी के अधीन नहीं है। राष्ट्रमंडल दिवस का इतिहास ब्रिटिश साम्राज्य के उत्थान और पतन के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो देश के सामने बड़ा सवाल था कि क्या उसे राष्ट्रमंडल का हिस्सा बने रहना चाहिए। कई नेताओं का मानना था कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर सदियों तक राज किया उसके बनाए किसी संगठन में शामिल होना स्वतंत्रता का अपमान होगा। लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक दूरदर्शी निर्णय लिया। उन्होंने अप्रैल 1949 में हुए लंदन घोषणा पत्र के तहत ये स्पष्ट किया कि भारत एक पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य रहेगा, लेकिन वो राष्ट्रमंडल का सदस्य भी बना रहेगा। भारत ने ब्रिटिश क्राउन, जो कि महारानी या राजा थे, को केवल राष्ट्रमंडल के एक प्रतीकात्मक प्रमुख के रूप में स्वीकार किया, न कि भारत के शासक के रूप में। भारत के इस कदम ने आधुनिक राष्ट्रमंडल की दिशा ही बदल दी। भारत के शामिल होने के बाद ये संगठन एक औपनिवेशिक क्लब से बदलकर स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों का एक बहु सांस्कृतिक और बहु जातीय संगठन बन गया। आज भारत राष्ट्रमंडल का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली सदस्य देश है। साथियों, जैसे कि हम आज राष्ट्रमंडल दिवस मना रहे हैं, ऐसे ही एक प्रमुख दिवस हम आज और भी मनाते हैं जिसके विषय में आपसे आगे चर्चा करूंगी, लेकिन इस बीच सुनते हैं एक संगीतमय अंतराल।

दोस्तों, प्रकृति ने हमारी धरती को अनगिनत अद्भुत और खूबसूरत जीवों से नवाजा है। इनमें से कई जीव ऐसे हैं जो अपने अनोखे रूप और पर्वतों पर रहने की अपनी अद्भुत क्षमता के कारण पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करते हैं। ऐसा ही एक अद्वितीय वन्यजीव है, मारखोर। मारखोर को अपनी शानदार कदकाठी और घुमावदार सींगों के कारण पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है। साथियों, जैसा कि मैंने संगीतमय अंतराल से पहले कहा था कि आज हम एक और विशेष दिवस मनाते हैं, तो वो विशेष दिवस है मारखोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब आप सोच रहे होंगे कि मारखोर होता क्या है। तो दोस्तों, मारखोर जंगली बकरी की एक प्रजाति है जो मुख्य रूप से मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के ऊंचे पथरीले और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। मारखोर नाम फारसी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, मार यानी सांप और खोर यानी खाने वाला, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है सांप खाने वाला। हालांकि मारखोर पूरी तरह से एक शाकाहारी जीव है जो घास, पत्तियां और झाड़ियां खाता है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये सांपों को मार देता है या इसके मुंह से निकलने वाला झाग सांप के काटने के इलाज में काम आता है, जिसके कारण इसका ये नाम पड़ा। दोस्तों, मारखोर की सबसे बड़ी विशेषता इसके सिर पर मौजूद बड़े पेचदार या घुमावदार सींग होते हैं। एक वयस्क नर मारखोर के सींग 5 फीट यानी करीब 160 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। इनके शरीर पर घने बाल होते हैं जो इन्हें पहाड़ों की अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। साथियों, मारखोर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। इसके अलावा ये भारत में जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उसे

उज़्बेकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। प्रकृति चक्र में हर छोटे बड़े जीव की एक निश्चित भूमिका होती है। मारखोर भी हमारे पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मारखोर खाद्य श्रृंखला का संतुलन बनाए रखता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये मारखोर शीर शिकारियों जैसे कि हिम तेंदुआ, भेड़िए और सुनहरे बाज का मुख्य भोजन है। यदि मारखोर की संख्या कम होती है तो हम हिम तेंदुए जैसे दुर्लभ जीवों के अस्तित्व पर भी संकट आ जाएगा। इसी तरह ये पहाड़ी वनस्पतियों का नियंत्रण भी करते हैं। शाकाहारी होने के नाते मारखोर ऊंचे पहाड़ों की घास और झाड़ियों को खाकर वहां की वनस्पतियों को संतुलित रखता है, जिससे नए पौधों का उगने का मौका मिलता है। इको टूरिज्म में भी मारखोर का महत्वपूर्ण योगदान है। मारखोर को देखने के लिए दुनिया भर से ट्रैकर्स और वन्यजीव प्रेमी आते हैं। इससे स्थानीय समुदायों को रोजगार मिलता है और पहाड़ों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। साथियों, मारखोर के सामने मुख्य चुनौती है ऐसी कि एक समय ऐसा था कि जब मारखोर विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट में इसे लुप्त प्राय यानी कि एंडेंजर्ड श्रेणी में डाल दिया गया था। मारखोर के शानदार घुमावदार सींगों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग रहती है। तस्कर इसके सींगों और मांस के लिए इसका अवैध शिकार करते हैं। जंगलों की कटाई, पहाड़ों में बढ़ती इंसानी बस्तियां, सड़कों का निर्माण और खनन के कारण इनके रहने की जगह कम होती जा रही है। स्थानीय चरवाहे जब अपनी बकरियों और भेड़ों को ऊंचे पहाड़ों पर चराने ले जाते हैं तो मारखोर के लिए भोजन यानी कि घास की कमी हो जाती है। साथ ही घरेलू पशुओं से बीमारी का भी खतरे का डर बना रहता है। मारखोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है दोस्तों कि इसके संरक्षण के प्रयासों को वैश्विक स्तर पर गति मिली है। मारखोर को बचाने में सबसे बड़ी सफलता स्थानीय समुदायों को शामिल करने में मिली है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देशों में ट्रॉफी हंटिंग का एक नियंत्रित कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके तहत विदेशों से आने वाले शिकारियों से भारी फीस ली जाती है और केवल बूढ़े नर मारखोरों के शिकार की अनुमति दी जाती है। इस फीस का 80% हिस्सा स्थानीय गांव के विकास जैसे कि स्कूल, अस्पताल, रोजगार आदि पर खर्चा होता है। जब स्थानीय लोगों को समझ आया कि जीवित मारखोर उनके विकास का जरिया हैं तो उन्होंने खुद बंदूक उठाकर अवैध शिकारियों से मारखोरों की रक्षा करना शुरू कर दिया। इन प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि मारखोर की आबादी में धीरे धीरे सुधार हुआ और IUCN ने इसकी स्थिति को लुप्त प्राय से बदलकर संकट के निकट की श्रेणी में डाल दिया। ये वन्यजीव संरक्षण के इतिहास की एक बड़ी सफलता है। तो साथियों, मारखोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें ये याद दिलाता है कि पृथ्वी केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर रहने वाले अद्भुत जीव हमारी पारिस्थितिकी तंत्र की एक मजबूत कड़ी है। मारखोर को बचाना केवल जानवर को बचाना नहीं है बल्कि उन पेड़ ऊंचे पहाड़ों, ग्लेशियरों और वहां की संपूर्ण प्रकृति को बचाना है तो अंततः इंसानी जीवन को भी प्रभावित करते हैं। और साथियों, जो हमारा OB का सेगमेंट होता है, जैसा कि आप रोज ही सुनते हैं हमारा कार्यक्रम, उसमें आज हमारी साथी अमिता चित्रांशी ने बात की नीति निर्माण का आधार है जनगणना, इस पे हमारी भूमिका क्या होगी, इस विषय पे लोगों से बातचीत की। तो आइए सुनते हैं उनकी बातचीत।

हर तरफ हर जगह लोग ही लोग, भीड़ बढ़ती जा रही है, जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, और इन्हीं बढ़ती जरूरतों के बीच एक सवाल बार बार सामने आता है, क्या हमारे पास सही जानकारी है कि देश को आखिर कहाँ क्या चाहिए, कहाँ नए स्कूल बनने चाहिए, कहाँ अस्पतालों की जरूरत है, किस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने होंगे। इन सभी सवालों का जवाब छिपा है जनगणना में। जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, बल्कि देश के भविष्य की तस्वीर है। सरकार जब स्कूल बनाती है, सड़कें तैयार करती है, नई योजनाओं को लागू करती है, तो उसका आधार यही आंकड़े होते हैं। अगर सही जानकारी होगी तभी सही नीति बनेगी और तभी विकास

0: हर व्यक्ति तक पहुंच पाएगा। तो आज के विकासवाणी के सफर में जानेंगे नीति निर्माण का आधार जनगणना, हमारी भूमिका। जनगणना के माध्यम से किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या का विस्तृत विवरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, साक्षरता दर, लिंग अनुपात, आवास की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, शौचालय जैसी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की जाती है। ये प्रक्रिया सरकार की नीतियां बनाने और संसाधन आवंटन में मदद करती है। अगर किसी गांव की आबादी सही दर्ज ही ना हो तो वहां अस्पताल कैसे बनेंगे? अगर बेरोजगार युवाओं की संख्या सामने ना आए तो रोजगार योजनाएं कैसे तैयार होंगी? जनगणना देश की धड़कनों को सुनने का माध्यम है। ये सरकार और जनता के बीच विश्वास का पुल है। तो आइए जानते हैं लोगों की राय, आपके अनुसार जनगणना क्यों जरूरी है।
1: मेरा नाम प्रदीप कुमार है। वर्तमान में होने वाली जनगणना के बारे में जनगणना अधिकारियों से अपनी सही सही जानकारी साझा करें और जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
2: जनगणना होगी, सारी सही जानकारियां दी जाएंगी सरकार को, जैसे घर की बत्ती हुई, पानी हुआ, सीवर हुआ और हॉस्पिटल हुए, स्कूल हुए, तो इससे मतलब बहुत फायदा होगी। जरूरी इसलिए है, जब सारी जानकारी मिलेगी तो उस हिसाब से दूर हॉस्पिटल हैं तो नज़दीक हो जाएंगे, दूर स्कूल हैं तो नज़दीक हो जाएंगे। जनसंख्या के आधार पे ऐसे क्या है, शहरों से देहातों मारे मारे घूमते रहते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है जनगणना।
3: मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। देखिए, जनगणना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे देश की इसके जनगणना इस समय जातिगत भी हो रही है, तो इससे सरकार ये जान पाएगी कि बेरोजगारी कहाँ पे है और किस उसका दर क्या है, तो उससे जो है बेरोजगारी दूर करने में सरकार को मदद मिलेगी। वो अपनी योजनाओं को उसी हिसाब से बनाएगी कि किस स्तर पर कहाँ से कैसा हो रहा है, गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करेगी और लघु उद्योग को जो है बढ़ावा मिलेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं जी, जो विकास की दिशा तय करने में मदद करेगी।
0: के साथ बातचीत के दौरान हमारी मुलाकात हो गई एक शिक्षक से जो कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक हैं और अर्थशास्त्र विषय के साथ जुड़े हुए हैं, और उनसे पूछते हैं कि जनगणना के आंकड़े सरकार की नीतियों को बनाने में कैसे मदद करते हैं।
4: गुड इवनिंग साथियों, मेरा नाम आनंद किशोर है, सहायक अध्यापक हूँ। आज के दौर में जनगणना सरकार की नीतियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही है। जैसे ही हमें किसी भी एरिया के जब रिलायबल डेटाबेस मिलता है तो उसकी मदद से सरकार द्वारा बनाई जाने वाली पॉलिसीज काफी हद तक सुचारू रूप से काम करती है। जैसे हेल्थ केयर में या एजुकेशन विभाग में जब कोई भी पॉलिसी बनानी होती है तो उसके लिए एक प्रॉपर डेटा सरकार को चाहिए होता है। वर्तमान में भारत एक पॉपुलस कंट्री है, अगर हमारे पास रिलायबल डेटा नहीं होगा तो हम जो भी पॉलिसी सरकार बनाएगी उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया जा पाएगा।
0: डिजिटल जनगणना नीति निर्माण को कैसे बेहतर बना सकती है?
4: देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो पेपर वर्क होता था उसमें काफी टाइम लगता था और वो लॉन्ग प्रोसेस था, जैसे कि काफी पेपर वर्क से जो हमें पॉलिसीज होती थी वो डिले हो जाती थी और सही समय पर जनसंख्या को सही स्कीम का लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन जैसे इस बार की जो डिजिटल जनगणना है ये इस समय को कम करेगी, रियल टाइम का एक्यूरेट डेटा हमारी स्कीम को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी देख सकते हैं कि डिजिटल जनगणना से अगर हम किसी विलेज का या किसी नगर का पिन पॉइंट लोकेशन लेंगे तो उससे हमें उसकी छवि बिल्कुल क्लियर मालूम चल जाएगी कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कितनी प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर की कितनी प्रॉब्लम है, सीवेज का क्या समस्या है। तो ये सारी समस्याएं जब सामने होंगी तो उनको देखते हुए एक सही स्कीम तैयार की जा सकती है जिसका लाभ हमारे सीधे समस्या से ग्रस्त लोगों को सीधे लाभ मिल पाए। ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की गवर्नेंस हमारी डिजिटल इंटीग्रेशन के साथ मजबूत होगी जिसका लाभ सीधे सीधे तौर पे जनता को होगा।

0: साथियों, जनगणना 2027 सफलता के साथ आगे बढ़े, इसी उद्देश्य को सफल बनाने के लिए विभिन्न चरणों पर अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि प्रत्येक जानकारी सही, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संकलित हो सके।
1: साथियों, देश के विकास और सरकारी योजनाओं में जनगणना के आंकड़ों की क्या भूमिका रहती है, आइए जानते हैं जनगणना 2027 के लखनऊ के मास्टर ट्रेनर विनय भूषण जी से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी विकास की योजना बनाने में आंकड़ों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। विकास के लिए सबसे मूलभूत आधार जो है हमारा, वो है रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे हम कहते हैं। तो मकानों की स्थिति अगर हम जानना है, पेयजल की व्यवस्था में कैसी है, उसके बाद जो हमारे परिवार के पास किस तरह के कम्युनिकेशन की सुविधाएं उपलब्ध है, इन सारी चीजों की जानकारी इस जनगणना के थ्रू एकत्रित की जाती है। और ये आंकड़े भारत सरकार हमेशा उसी को रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज करती है आगे की योजनाएं बनाने में, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है जनगणना का।
1: जी हाँ, तो जनगणना का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप मास्टर ट्रेनर के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या है?
2: जी, मास्टर ट्रेनर दरअसल हर डिस्ट्रिक्ट में, ये पूरे देश में जो जनगणना 2027 चलाई जा रही है, इसमें 32 लाख लोगों से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं जनगणना प्रोसेस को कार्यान्वित करने में। जैसे एक मास्टर ट्रेनर अगर 50 फील्ड ट्रेनर को ट्रेंड कर रहे हैं, तो वो 50 फील्ड ट्रेनर जो है वो कम से कम 2000 लोगों को ट्रेनिंग देंगे आगे। तो ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है फोर्स को, ताकि वो बेहतर ढंग से ट्रेनिंग प्रदान की जा सके और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ ये करवाया जाता है।
1: जनगणना को सफल बनाने में आम जनता की क्या भूमिका है आपको लगता है?
2: सबसे बड़ी भूमिका जो है कि हर सवाल का सही जवाब, इसमें अपने सवालों के सही जवाब देना और एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की भूमिका के रूप में अपने को स्पष्ट करना, वो जरूरी है।
1: जी,
2: सरकार की हर योजना, ना केवल योजना बल्कि अभी देख रहे हैं कि महिला आरक्षण जो संसद में देने की बात है, या फिर परिसीमन की बात है संसदीय व्यवस्था में, हर जगह पर इसको कोट किया जाता है। और आरक्षण से लेकर के किसी भी तरह की फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाने में जनगणना का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे संवैधानिक व्यवस्था में ये एक महत्वपूर्ण इकाई है।
1: साथियों, जनगणना देश के भविष्य की योजना बनाने का आधार है। ऐसे में हम रुख करते हैं फील्ड के स्तर की ओर और देखते हैं कि वहाँ के हमारे फील्ड ट्रेनर की क्या तैयारी है।
3: मैंने जनगणना में फील्ड ट्रेनर को हर घर में जाके हमें हर एक घर से डेटा को कलेक्ट करना है और हर एक घर की सारी जानकारी को कलेक्ट करना है। फील्ड ट्रेनर की मैम बहुत भूमिका है, क्योंकि जितने आंकड़े हम अच्छे से अच्छे उनसे कलेक्ट कर पाएंगे, हमको जो भी सरकार हमारे लिए जो भी बेनिफिशियल योजनाएं चलाती है, उतना ही हमको अच्छा उसका लाभ होगा। ये है कि कई कई जगह पे ऐसे है, स्कूल का स्तर जो है वो बहुत डिस्टेंस पे है, या पानी की जो पेयजल की समस्या है बहुत दिक्कत कर रही है। हमको इस हिसाब से जनगणना के, चूंकि 2011 का जो सेंसस हुआ था और उसमें जो भी जनगणना की जो भी आंकड़े कलेक्ट किए गए थे, वो हमको दो, चूंकि 2021 में कोरोना की वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन 2027 की फिर जनगणना हो रही है, उन्हीं जो भी हमारा कार्यक्रम रुका था उसको हमें अब आगे फिर से आगे प्रोसीड करना है कि हम जनगणना के किस स्तर पर थे और आज के दौर में हम कहां तक अपने उन लाभकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं या आगे फ्यूचर में कितना करेंगे। तो फील्ड ट्रेनर मैम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि वही एक प्रगणक ऐसा व्यक्ति है जो घर घर जाके हर एक जानकारी को कलेक्ट करेगा।
1: तो आपको क्या लगता है कि जनगणना देश के भविष्य की योजनाएं बनाने का आधार है?
3: जनगणना का अर्थ है जन से लेकर जन कल्याण तक, इसी में मैम सारी बातें छिपी हुई है। हर एक जन एक एक बूंद से ही सागर भरता है, इसी तरह मैम जनगणना भी है। एक एक जन को जब लेंगे तभी मैम उसका जन कल्याण होगा, चाहे वो कोई भी उसकी

0: गतिविधियां हों।
1: नमस्कार, मैं विष्णु, सहायक अध्यापक। जनगणना 2027 में मैं एक प्रगणक के रूप में कार्य कर रहा हूं। भारत सरकार द्वारा आयोजित जनगणना 2027 देश के विकास की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है। यह केवल लोगों की गिनती नहीं है, बल्कि हर नागरिक की पहचान, आवश्यकताओं और भविष्य की योजनाओं का आधार है। जनगणना के माध्यम से सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सही जानकारी प्राप्त होती है। आपकी दी गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाती है। जब जनगणना अधिकारी आपके घर आएं, तो उनसे सहयोग करें और सही जानकारी प्रदान करें। अपने परिवार के सभी सदस्यों का विवरण अवश्य दर्ज कराएं, ताकि कोई भी सरकारी सुविधाओं और योजनाओं से वंचित ना रहे। याद रखिए, सही जनगणना सशक्त भारत की पहचान है। आइए जनगणना 2027 को सफल बनाएं और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हमारी जनगणना,
2: हमारा विकास। साथियों, जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है, बल्कि ये देश की सुनियोजित विकास और प्रभावी नीति निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। तो प्रशासनिक स्तर पर इस प्रक्रिया को किस प्रकार देखा जा रहा है, जानने के लिए हमारे जनगणना कार्य निदेशालय के कार्यालय में हमारे साथ है निदेशक महोदया शीतल वर्मा जी। आकाशवाणी लखनऊ के नई उड़ान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद अमिता, मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए।
2: कार्यक्रम में जैसा कि हमारा विषय है नीति निर्माण का आधार जनगणना, तो कैसे जनगणना नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभाती है?
3: आपके श्रोताओं को मैं अवगत कराना चाहूंगी कि जनगणना हमारे किसी भी नीति का मूल आधार होती है। जनगणना हमारे देश में दो चरणों में संपादित होती है। प्रथम चरण, जिसको हम कहते हैं मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, जिसमें हम आवासीय सुविधाओं और परिसंपत्तियों का डेटा एकत्रित करते हैं, और दूसरा हमारा चरण होता है जिसको आप लोग कहते हैं जनगणना, जिसमें हम प्रत्येक व्यक्ति तक जाकर उसकी शिक्षा, उसकी व्यक्तिगत कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डेटा एकत्रित करते हैं। तो जो हमारा प्रथम चरण है वो अभी शुरू हो चुका है, और 22 मई से 20 जून के मध्य हमारा मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्यक्रम चलेगा। इससे पहले हमारे नागरिकों के पास स्वयं गणना की भी सुविधा थी, बहुत अधिक संख्या में परिवारों ने इस बार स्वयं गणना भी की। वर्तमान में प्रगणक आपके घर आएगा और आपसे 34 प्रश्नों पर डेटा लेगा। वो 34 प्रश्न बहुत ही सरल प्रकार के हैं, आपको कोई दस्तावेज नहीं दिखाना है, आपको कोई अपना व्यक्तिगत बैंक अकाउंट नंबर या कोई भी ऐसी कोई गोपनीय सूचना नहीं देनी है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। तो पहले होता था कागज गुम गया, प्रगणक ने इंफॉर्मेशन सही नहीं भरी, हमें ये अवसर ही नहीं मिला कि हम अपनी इंफॉर्मेशन खुद दे पाते। ये सभी चीजों को इस बार डिजिटल रूप से इसका एक सुधार किया गया है, तो हमारा ये आशा है कि इस बार बहुत बेहतर आंकड़े हमें प्राप्त होंगे। आपके माध्यम से मैं सभी श्रोताओं से एक अनुरोध करना चाहूंगी कि जो जनगणना का कार्य है वो हमारा दायित्व है अपने राष्ट्र के प्रति, कि हम सटीक आंकड़े उपलब्ध कराएं और जनगणना में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। मैं ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि जो जनगणना के आंकड़े होते हैं उनको कभी आपके विरुद्ध किसी साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लाया जाता है। जो एक बार आपने जब जनगणना की प्रश्नावली भर दी, चाहे वो कागज के माध्यम से हो, चाहे वो स्वयं गणना के माध्यम से हो, या वो आपके प्रगणक के माध्यम से हो, वो एक बार जब भर लिया जाता है वो प्रश्नावली कॉन्फिडेंशियल हो जाती है, जो कोई देख नहीं सकता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप लोग इस बात को समझें कि ना तो कोई दस्तावेज आपसे लिया जा रहा है और ना ही इन आंकड़ों को किसी भी प्रकार से आपके विरुद्ध यूज किया जाएगा, क्योंकि हम केवल स्टेटिस्टिक्स जनरेट करते हैं कि कितने घर ऐसे हैं जिनके पास एक्स सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो कौन से घर हैं ये कभी भी जनगणना में नहीं बताया जाता है। तो बिल्कुल निडर होकर प्रत्येक व्यक्ति ये हमारी जनगणना में सहभागिता करे, यही हम लोगों का संदेश है।
2: बहुत ही अच्छी जानकारी। जनगणना से प्राप्त आंकड़े साथियों देश की योजनाओं, संसाधन के वितरण और विकास की दिशा को तय करते हैं, तो ऐसे में सही जानकारी आपके द्वारा दी जाना बहुत जरूरी है। तो आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर इतनी जानकारी देने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू सो मच अमिता जी।
4: तो साथियों, हम बात कर रहे थे आज के विकासवाणी के सफर में

0: नीति निर्माण का आधार जनगणना और हमारी भूमिका। चलते चलते आपसे बस यही कहेंगे कि देश केवल सीमाओं से नहीं बनता, देश बनता है लोगों से, और लोगों को समझे बिना विकास की कोई कहानी पूरी नहीं होती। तो आइए जनगणना को केवल सरकारी काम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का अभियान समझें।
1: साथियों, हमारा कार्यक्रम नई उड़ान तब और बेहतर बनेगा जब आप अपने सुझाव और अपनी बातें हमारे तक पहुंचाएंगे, जिसके लिए आपको ईमेल आईडी पता ही है। अब हमारी घड़ी की सुई मुझसे कह रही है कि मुझे आपसे विदा लेनी होगी, तो अपनी रेडियो दोस्त पारुल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान, मीडियम वेव के मीटर पर आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
1: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424242 पर।
1: 8700001424242।

श्रोताओं, आपको बता दें आज शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद, जिसकी प्रस्तुतकर्ता होंगी सुमोना एस पांडे और नीना सोनकर।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। शाम के 6:20 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी।

0: पंचो जय हिंद।
1: अभिषेक भैया।
0: हाँ विवेक भैया,
1: देखो अपन जब गांव से निकले रहन ना, अतनी तेज घाम रहा है, मोढ़े पर यहाँ इससे मालूम दे जैसे मालूम दे गरम गरम कोई आग फेंकती है और मार शरीर पूरा झुलस जावती है।
0: अरे भैया आजकल तो पूछबे न करो, और जो भैया तनको सावधानी न बरते हो तो जर भुनके बाहर आई जी हो। और भैया उससे ज्यादा दिक्कत अब होने वाली है, काहे ते कल तो शुरू होने वाला है नौ तपा।
1: अरे दादा रे तो का है वही मां देखो गमछा तो दरबाई करे हैं, मूल खोपड़ी पर यहाँ इतनी तेज घाम चलते है कि अपन अगर शरीर के सुरक्षा भैया ना करे हो तो अगर तनिको रोग दोग लगेगा तो मालूम दे बहुत परेशानी उठावे
0: पड़ जाएगी। तो भैया जैसे बताए कि नवतपो भैया है तो अपन जैसे तुम बता रहे हो अंगोछा छतुरी चश्मा और टोपी लगाए चलबे करे संगे अपने लड़का बच्चन का, और बूढ़ में नहीं जौन है और घर में कौन अगर गर्भवती महिला है उसका विशेष ध्यान रखें, उसका बाहर जाए से बचावे, और हो सके अपनो भैया दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक ना निकले अगर ऐसी घामे से ऐसे लोक से बचक है और ये नवतपा से ने हमका जीतक है अपने स्वास्थ्य के हैं बचावक है। तो
1: बिल्कुल सही कहो, अब देखो घामे में जब निकल रहो जब बहुत जरूरी है तब है निकलो,
0: बिल्कुल
1: और निकलो तो पूरी सावधानी से निकलो भैया कि तनिको जौन है धूप लगे ना पावे और एक साथ में यह पानी कर जाओ, बोतलवा रख लो
0: बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत
1: हाँ, उस समय समय पर भैया पानी जरूर पिए चाहिए।
0: पानी अगर मनो नहीं कह रहा तब हो पियो।
1: हाँ बिल्कुल, काहे कर शरीर हम तनिको अगर पानी कमी हुई गई तो तब मालूम देर बीमारी लग जाए तो बहुत पैसा खर्चा हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाए।
0: सही बात विवेक भैया। और जौन तरल पदार्थ है जैसे नींबू पानी
1: बिल्कुल
0: है ना, चीनी के यार घोल, और भैया आमक पना,
1: अरे वाह,
0: और भैया और इसके साथ में सतुआ, ये सब चीजें पियो तो शरीर एक ठंडक पहुंची
1: बिल्कुल,
0: और जन पानी कमी है वह पूर हो जाए, और साथ साथ अगर ORS घोल है भैया वो जरूर पिए।
1: अब भैया अपनों पियो साथ में संग परिवार में जितने लोग हैं सबका पियो
0: भैया बहुत जरूरी
1: है। सर अपन सुरक्षा तब है हुई पाई जब हम सबकी सुरक्षा कर पाईबा, तो ये सब चीजन के यहाँ विशेष ध्यान रखेगा। और भैया देखो अब देखो सब बच्चन के जो है छुट्टी चल रही है तो वह सब घूमे जोन है कहूं ना कहूं जौते हैं, तो इससे कहो थे जगह जगह जब लोग जावती हैं तो आपन सुरक्षा तो लेके जावत है, मूल कहूं हम जाइत है तो हम हुआं देखित है कि हुआ के खान पान है, हुआ के जौन है सांस्कृतिक है चीजें हैं, हुआ के जौन है पहनावा है, कितना अपन जौन है देश के अच्छा लगत है कि हर जगह के हम लोगों का यहाँ अलग अलग विविधता में यहाँ रंग दिखाई देते।
0: बिल्कुल बिल्कुल विवेक भैया, जैसे हम सबको खाना मान लो खा जा रहे हैं तो थरिया में यहाँ सब रंग हो, दाली हो, सब्जी हो, रोटी हो, तनुक अचार हो, तनुक मर्चा हो, तो कितनी बढ़िया थरिया लागत है, और वह जगह पर और खाली का छोड़ नमक धरा हो तो नीक लगी भैया, खाली मिर्चा हो तो नीक लगी, ये तनापन भैया भारत देश है
1: बिल्कुल
0: है न, कोनो कोनो देश है कहूँ कहाँ है, सबकी अलग अलग वेशभूषा है, पहनावा अलग है, कोनो धोती कुर्ता पहने से कोनो लुंगी पहनते है, कोनो कुछ खाते है, कोनो भाई हमारे भाषा हिंदी है तो कहूं के अवधी है, कहूं के मराठी है, कहूं के मद्रासी है, सबकी अलग भाषा, और वह थरिया तना भैया हमारे भारत देश है,
1: और तब है जौन है ई सब मिल करके एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनत है
0: बिल्कुल,
1: जिससे की हम लोगों का विविध विविध रंग जौन है दिखाई देते है, तमाम तन के लोगन से जौन है मुलाकात होते है, तमाम तन के जौन है बातें उमा होती है, और तमाम तन की चीजें हम लोग जानी थे की हुआ कई जौन है कैसे लोग रहते हैं, कैसे लोग खाद पियते हैं, कैसे लोग हुआ के जौन जीवन व्यापन करत हैं, तो यह तन के जौन है अपन कितना बढ़िया जौन है अपन भारत पूरी दुनिया में यह नाम रोशन कर रहा है
0: बिल्कुल, एक भारत श्रेष्ठ भारत भैया तब है देखो बन सकते है जब हम सबको अपन अपन जौन सांस्कृति है, जौन वेशभूषा है, जौन खान पान है वो दूसरे देश राज्य के यहाँ पहुंचेबे, और उसी राज्य में रहे वाले लोग का करते हैं कैसे का खाते हैं उनका अपनेबे, तब है हमारे देश एक भारत श्रेष्ठ भारत।
1: अब जैसे पारंपरिक चीजन की बात करी तो लोग जो ने बाहर रहते हैं तो अपने ही यहाँ का होता है कि हर महीना देखो कोनो कोनो त्योहार

0: पति पूजा पाठ हो तमाम तन के। अब जैसे जेठ चल रहा है, जेठ के देखो कितना महत्व जो हो रहा है यह सीजन के यहाँ। तो अपन जो दूसरी जगह जाये थे जब उनका हम बताई थे तो उनका यू लगा था कि हाँ कितना महत्व है इस सीजन के यहाँ, कितनी चीजें हैं हम लोगों के जो है शामिल है जिससे कि उन लोगों का एक नई नई चीजें देखे मिला थे और हम लोगों के यहाँ नई नई चीजें जो है जानने को मिला थे।
1: बिल्कुल विवेक भैया, मान लो कोनो तुम्हारे यहाँ पहुना आएगा वो कोनो दूसरे राज्य में यहाँ रहा थे भैया, अब उनकी भाई सब कुछ अलग हुई भाई, वेशभूषा जो पहने थे वह अलग हुई, उनका खानो पान अलग हुई की बोलू तो भैया उनका हमका हंसी नहीं उड़ा हुई, अरे यू इतना बोले थे। मान लो कोनो मद्रास ते नहीं आएगा, बिहार ते नहीं आएगा, उनकी बोली अलग है भैया, तो हमका उनका वो नहीं करे है, हमके उनके दो चार शब्द सिखाऊ कहे
0: बिल्कुल
1: अपन बनाओ कहे अपने घर में भैया बैठाए के यहाँ कुछ खवाओ पियाओ, उनका बताओ की हमारे यहाँ खावा जाते हैं, और जब कह दो हम भैया तुम रहे हो तो हमका सब बताओ है ना, उनकी जो उन चीजें हैं सीखक हैं, तब भैया एक बढ़िया चिन्ह जौन
0: अपन जौन भारत के निर्माण होते हैं और कितनी जौन है समानता होते हैं इन सब चीजन में है, और देखे में कितना अच्छा लगता है कि हम सब यू सब इस सब चीजन से भैया का होते एकता के जौन है जुटक प्रचार हुई जाता है कि हम सब एक हैं, हमार भारत जौन है पूरा एक साथ है
1: भैया। ये सब चीजें जब अपनेबे तब है अपन भारत देश दुनिया में सबसे आगे निकली, मतलब सबसे श्रेष्ठ बनी है न, तो ये सबका हमका ध्याकक है। और ये तना हमें खाली नहीं, अपन जैसे स्कूली लड़का बच्चा हैं अपन पढ़त लिखत हैं उन्होंने के यहाँ हम तो कहीं एक दूसरे के यहाँ देखो सरकारी कोशिशों करते हैं, सरकार की जो योजना है वो तो या और लोगों तक
0: भाई
1: राज्य तक ले जाते हैं या वही राज्य ने यहाँ आवते हैं दूसरे राज्य में यहाँ, जिससे उनका बोली भाषा उनके संस्कृति का है उनके पहनावा का है सब जान जाते हैं।
0: बिल्कुल भैया, और यह विविधता में जो एकता होते हैं यो हमारी शान होते हैं और यह शान से हमारे जो भारत महान होते
1: भैया। बिल्कुल भारत महान होते और महान तब हो जाते जब कुछ बढ़िया अपन कहानी पाठ सीख लीन जाते अपने बड़े बुजुर्ग ग्रंथ।
0: सही कहो,
1: तो कहानी पाठ सीख आज देखा तीन लोक भाषा अवधि में आए हैं आद्या प्रसाद सिंह प्रदीप भैया जौन सुना रहे हैं कहानी अन्हरिया में बिजुरी, तो सुना जाए या लोक भाषा अवधि में कहानी पाठ।
0: बिल्कुल भैया सुना जाए।
2: आदित्य घरे सहन बेसान के लड़की चलन बन गई रही कि पढ़ब ना चाहत आजा पर पाजा में क्यों गांव के स्कूल पास के पे रामगढ़ पढ़ाई गए, पता ना कौन देवी देवता के भगवान भगवती के ऋषियाई हो गए कि स्कूल से उतरे भरे में जूड़ी बुखार अस कटोट के पकड़ेस कि दुआ दवाई एक काम न कहस बिहना भाई चल व्यसन, तबई से उनके घरे में ये रूढ़ बन गई कि गांव के स्कूले से ज़्यादा पढ़ाई ना सहत, आजू परपाजू मरद की कह गई रही कि लड़कियन के गांव के स्कूले से ज़्यादा जिन पढ़ाया, पुरानिया के बातियों तो बमक ली किया कह के मरी रही, अब है कुछ हो जात तो पछताई के परत। आदित्य का मन पढ़ाई में बहुत लागत रहा, पचय में पहुँच के वो बहुत हैरान भ कि अगले साल वह के पढ़ाई रुकी आए, विद्यालय की राही में एक सी संत का आश्रम परत है, लड़कियाँ तो सब हैं मुझे वही के सुन्नर रूप होनहर स्वभाव स्नेह भरी बोली सबका आपन कर लेती रही, जौने से आश्रम के संत महात्मा आदित्य के कुल लड़कियन से ज़्यादा मानत रहन। एक दिन साधु बाबा के गोड़ छुए के बाद पूछे कि बाबा हमार शिक्षा कहाँ ले बा, वही के हाथ देख के साधु बाबा बताएं कि बेटवा तू तो बहुत भाग्यवान है, तोहरे शिक्षा इतनी बा जितनी पूरे गांव में केहू के ना ब्या। इस सुन के कुल लड़कियाँ हंस पड़न, साधु ये हंसी का मतलब का जाने, पूछे पे एक लड़कियाँ बताए सी कि आदित्य के परिवार में शिक्षा ना चाहत जे ज़्यादा पढ़त है वो मर जात है, साधु बताएं ये तो माई बाप का भरम या। कक्षा पाँच पास कहे के बाद आदित्य का पढ़ाई छूट गई, मूल आदित्य पढ़ाई से मन ना हटाए, खेले कूदे के बहाने कुटी पे पढ़े आवे लाग, कापी किताबों आई गई वही के रुचि देखा चुप्पे चुप्पे तीन साल का पढ़ाई पूर कर ली है, माई बाप तक ना भनक पड़ी, एक दाएँ कुछ भनक लगभग कीन तो डांट फटकार के छुपाई गए, वही के पढ़ाई के अपने रव से चलत रहिए। साधु बाबा का बात कि मेहनत से बच्चा जिल मोरा

0: का ऊ कबहन भूलै, जमन कुछ पढ़े गुनत धुनत याद हो जाए। फल ई मिला कि कुल किताबिये ओका याद हो जाए। दसाएँ पढ़ाई कुटी और कुछ जगह से पढ़ के तैयार कर लिहस। हाई स्कूल की इम्तिहान हो गए, साथी लोगे व्यंगव बोलें कि स्कूल से पढ़े ना मिलत, ये चला है कुटियवा से पढ़ाई। आदित्य कुल प्रश्न का उत्तर सुंदर ढंग से लिखेस, साधु बाबा के आशीर्वादों तो काम के हैस। रिजल्ट आए पे और साथी तो कौन तरह से पास भय, मूल आदित्य के देखा प्रदेश में स्थान आइए, वही के फोटो अखबार में छपा। माई बाप का पता चला तो बहुत प्रसन्न भय, वही के भल बदे सत्यनारायण का कथा सुनें प्रसादक बाँटें। असहनहर लड़किया साधु बाबा इतना कुल न कहे होते न, तो तीनों लड़कियन की न्याय वह अनपढ़ ही रही जात। आखिर होनहर बिरवक चिक्कन पात होते, साधु बाबा का आदेश लेके आदित्य का नाम शहर के बड़े स्कूल में लिख गया। विद्यालय की तरफ से कापी किताब हॉस्टल भोजन कुल से तय मिले लाग। अतनी सुविधा पाई के आदित्य विद्या बुद्धि के आदित्य हो गए। वही के भोलापन मधुर बोली और विनीत भाव गुरुजनन का मन मोह लेस। आदित्य वही विद्यालय में उपमान के रूप में जान जाए लाग। आदित्य समय पालन साहस ईमानदारी मेहनत प्रेम भाव जैसन गुणन का स्वरूप हो गए। ओके बचपन का उदासीनता फुर्र हो गए, ओकरे दमकत मुहे प्रसन्नता का लहर आवे लाग। एक दिन रास्ता में एक ठी चमड़ा का झोला गिरा पायस, देखे सुह में ढेर के रुपया और कुछ कागज रहा। नाव वो पता पढ़ के वो करे घरे लैया के पहुँचाए लेस। वहीं झोला में वो कई गाढ़ी कमाई और बहुत जरूरी कागज रहा। वो आदित्य का अपने लड़किया की न्याय माने लाग। अपने दो लड़किया के साथे साथे आदित्यों के तीसर का लड़किया माने लाग। एक दिना कुछ लड़के एक ठे रास्ता भुलान बूढ़ी के पागल कह के परेशान करत रहन। आदित्य सबका डांट के दूर कहस। अब बूढ़ा माई के गठरी लय के उनके घरे पहुँचाए के ढेर के आशीष लय के आए। सवेरे पास पड़ोसी में क्यों ये सुनाज बचत रहा, जैसे जर्मी पर लगी कह के आशीर्वाद न ले ले। उस सबका समझावे सबके आशीष पावे वाले की जिंदगी में उतरा था, सबके आशीष जरूर ले के चाही। कुकुरो बिलार निक विकार पहचाना थे, जमुना कुकुर बज्र कट रहा। मूल आदित्य के देखे पे पूछ हिलावत की गोड़े पर लोट पड़ा था। आदित्य के मेहनत अब सबके आशीष फलित हुआ। वो इम्तहान पास कई के डीएम हो गए। वो करे यही सफलता पे पूरा पवस्त खुशी में बूढ़े उतरा लाग। जहाँ आदित्य अन्हेरिया में बिजली ये अजोर फैलावे में कौनो कोर कसर ना छोड़ेस, वहीं गांव में रमेश विपिन मतोले के बेटवा गुंडई चोरी छिनैती कह के अपन अलग स्वरूप बनैले हैं। दलपत के घरे बीमार महतारी बाप को दवाई के पैसा ना रहत, मूल उनकी दवाई के पैसा दारू के पैसा संझा तक पहुँच जात रहा। एक बात के बटवे की जे जौने पैड़ा पकड़े वही पैड़ा पे चल के वह कई वही गति होते। आदित्य गांव में डीएम बन के आए, सब में गांव ओकरे दुआरे इकट्ठा हो गए। दूसरे दिन सबके घरे घरे जाए के सबके हाल चाल लेस, अपने साथे के कुल लड़कियन के बटोरेस और सबका समझाएस। भयवा सब वहीं पैड़ा पे चला जौने सब तोरे पीछे चले में गर्व करे। वाल्मीकि डाकू के क्यों ना जानत, लेकिन वाल्मीकि कवि के संसार जानत है। अन्हेरिया दूर कह के अजोरिया फैलावा, सब हमार कहा माना, सब अपन धंधा बिजनेस कह के जिंदगी के सुतार बनवा, हम सब कई मदद करब। आदित्य गांव के कुल लड़कियन के सरकारी योजना से जोड़ के अपने रोजगार की ओर चलाए, सब कमाई करे लागिन और उनके परिवार सुखी हो गए। आदित्य अपने अजरोर से गांव के अन्हेरिया के मिटाए देस।
1: अभिषेक भैया,
2: विवेक भैया,
1: देखो कत्ती बढ़िया जौन है ये कहानी रहा है कि आदित्य कतनी मेहनत करके जौन है पढ़ लिख करके अपन गांव के नाम रोशन करीस,

0: अपन देश के नाम रोशन करिस और कुछ बन कर दिखाइस।
1: बिल्कुल भैया, इका कहत भैया जहाँ चाह वहाँ रह।
0: बिल्कुल इके खातिर जौन है अपन जौन कहानीकार भैया हैं आद्य प्रसाद सिंह प्रदीप भैया, इका बहुत बहुत धन्यवाद जौन हम लोगन के यहाँ अनहरिया माँ बिजरी कहानी जौन है बहुत बढ़िया सुनाइन।
1: बिल्कुल भैया कहानी सुनाइन, इसे सब भैया सीख ले चाहे जौन लड़का पढ़े लिख रहे हैं या जौन पंच भैया के लड़का बच्चा है कि भाई उनका देखो पहली बार रुआकक नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: और रुकी हो तो वो फिर कुछ न कुछ अलग काम भाई करत
0: है। सही कहो,
1: है ना। तो जैसे अपन भैया पढ़ लिख के डीएम अच्छा तक बन गए हैं ना भैया, तो हमू सबका सीख है कि पढ़ाई लिखे में कोनो रुकावट ना आवे।
0: बिल्कुल सही कहो।
1: तो भैया अब देखो बारी है का,
0: अब जो उन्हें गौ नहीं कर बारी है।
1: तो भैया गौ नहीं बहुत जरूरी होते, कहे थे आजकल गर्मी हुई रही है इतनी, भाई आदमी बैठ रहा थे तो कुछ नीक गाना वाना जब सुने मिल जाते तो तनु राहत मिलत है।
0: सही कहो,
1: है ना, ऐसे गर्मी में यहाँ चिपचिपा रहा पूरा देह, वही पसीना और बिजली देखो वैसो आजकल बहुत दिक्कत कह रही है। तो भैया जब कुछ गीत गौनी हो जाए तो मन खुश हो जाते।
0: बिल्कुल
1: तो भैया का गाना है, का सुपन लोकगीत है, सुनाई।

0: तो भैया गौन ही बहुत जरूरी होते। कहे थे आजकल गर्मी हुई रही इतनी, भाई आदमी बैठ रहा थे तो कुछ नीक गाना वाना जब सुने मिल जाते तो तनु राहत मिलत है, है ना। ऐसे गर्मी में यहाँ चिपचिपा रहा पूरा देह, वही पसीना और बिजुरी देखो वैसो आजकल बहुत दिक्कत कह रही है। तो भैया जब कुछ गीत गौनी हो जाए तो मन खुश हो जाते।
1: बिल्कुल।
0: तो भैया का गाना है, का सुपन लोक गीत है, सुनाई दो।
1: बिल्कुल भैया, लोक गीत है अपन सोहर गीत जी का, गाय रही है पूजा द्विवेदी बहिनी, और सुना जाए
0: सुना जाए भैया।

0: भैया विवेक बताओ।
1: कतना जो है आनंद आवा है।
0: आनंद भैया देखे रहे हो, मार खिलखिलाए बैठे हैं और सुनने वाले पंच भैया जरूर खिलखिलाए हुए हैं। कहीं बढ़िया
1: बिल्कुल
0: सोहर गीत तुम सुनाए दो, मजा आएगा। तो इके बल्दी पहले तो भाई पूजा द्विवेदी बहनी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल, अब जो है आनंद ले लिए हो तो अपन खेतवा को और चला जाए।
0: भाई खेतवा बिना जाए कहूँ काम चले वाला है
1: हाँ,
0: हमार सबका।
1: चाहे जो है गर्मी हो, चाहे जाड़ हो, चाहे बरसात हो, अपन खेतवा के जो है काम कभी पूरी नहीं हुई तो उनका विशेष ध्यान दे।
0: मूल भैया एक चीज हम यहाँ पर जरूर कहा चाहब कि भाई जैसे देखो तुम बता रहे हो कि काम कभी बंद ना होते, तो किसान पंच भैया जितने हैं ना अगर जा रहे हैं खेतों पर कुछ विशेष ध्यान भैया इस समय जरूर रखें।
1: बिल्कुल
0: जरूरती घाम लोक सब है, गर्मी इतनी है, तो ध्यान रखें कि भाई जैसे खेत बरिया जा रहे हैं तो कोशिश करें कि सवेरे और संजा बरिया जाएं,
1: बिल्कुल
0: दोपहरियम तो बिल्कुल ना जाएं। निगरानी भाई जरूरी है, तो संजा बरिया या घास वास फूस वूस ले कर जानवर ले जाए तो उन्होंने के यहाँ भैया संजा बरिया और सवेरे बरिया ले जाएं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो कामे के अगर बात कर रहे हैं तो अपन जौन है जितनी भी फसलें हैं,
0: हाँ
1: ठीक है, आय वाली जौन हम लोग फसलें हैं
0: बिल्कुल
1: उनकी हम लोग इनके यहाँ तैयारी करे है। काहे
0: हाँ
1: सर, जब हम अभी से तैयारी कर पेबा
0: बिल्कुल
1: तब है आगे जौन है अपन को जोन है फसल में यहाँ अच्छा उत्पादन मिली है।
0: बिल्कुल। हम सबकी देखो आस यहाँ रहते कि भाई जौन हम फसल या जौन कुछ विसार अपने खेते में यहाँ डारे हन, बैन है, उनमें इतनी मेहनत करे हन, तो जब भैया फल मिले तो मीठ मिले। तो
1: बिल्कुल
0: इके खातिन कि भाई अगर फल मीठ मिले तो पहले से तैयारी बहुत जरूरी होते हैं।
1: अब देखो आय वाली जोन फसल है अपन खरीफ है, वही की हम लोग इनके यहाँ तैयारी करे है। तो
0: बिल्कुल
1: शुरुआते से लई करके यानी
0: हाँ
1: कहे मतलब ये अभी से अगर हम लोग का बोवेक है तो अभिने से तैयारी करे चाहिए। काहे शेर कि जब अपन जब समय आए जाते हैं ना नजदीक तो वही में तमाम तन के काम जो है पछड़ जाती हैं तो रही जाते हैं।
0: बिल्कुल भैया। और तैयारी में यह सबसे जरूरी है कि भाई चाहे कौन भी फसल हो भैया, हम अपने खेते में अपनी फसल में फसल चक्र जरूर अपनाएं।
1: बिल्कुल
0: हाँ अगर हम फसल चक्र अपनाई थे तो अपन पैदावार अपन उत्पादन पहले ही बढ़ जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: और सबसे बढ़िया चीज इस समय अब का है करे वाली जो उन है कि गर्मी चल रही है,
1: बिल्कुल
0: अगर हम अपने खरीफ की जो उन चीज़ें बोए वाले हैं उनका उत्पादन बढ़ावा चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि खेती का यहाँ पलटवाए दे।
1: बिल्कुल माटी के
0: हाँ
1: यहाँ जौन है उल्टवा पलट कर दे। काहे
0: बिल्कुल
1: से वहीं जो है तमाम तन के जो सूक्ष्म जीव हैं, तमाम तन के कीड़े मकोड़े हैं या जिनके जो अंडा बच्चा है वह
0: हाँ
1: बिल्कुल जौन है इतनी प्रचंड गर्मी से रहे वह सब मर जाते
0: और
1: हैं।
0: जौनी इस घास फूस है जिनका हम
1: हाँ
0: ना ही चाहे तब हुआ उ गया होते,
1: बिल्कुल
0: तो इन सबसे बचे खातिन भैया पलटवा हरते का पलटवा दे
1: बिल्कुल
0: और तनी घाम होते तो सब जर बुन के राख हुई जी।
1: बिल्कुल और पलटवाए करे बाद में यहाँ खेत के यहाँ जो है समतलीकरण कर देख
0: हाँ
1: चाहिए।
0: बहुत जरूरी भैया।
1: काहे सर, जब पानी के जो है निकास है वही का बहुत जरूरी है कि कहूँ सेर जल भराव ना होए। देखो कहूँ सेर अगर जल भराव हो जाए तो वहीं में तमाम तन के जो है जीव उत्पन्न हो जाते हैं
0: बिल्कुल
1: जौन
0: भैया।
1: हमारी फसल के यहाँ नुकसान करे लागत है।
0: और भैया इस समय एक चीज़ और करे वाली कि भाई खेत खाली हैं अपनों से के बाद टाइम होते तो भाई
1: बिल्कुल
0: खेतन के आसपास जो मेड़ है वही का बांध लें
1: सही कहूँ।
0: भाई। जैसे अभी के बाद मानसून आ जाए पानी वानी बरसी तो उसके खातिर मेड़ बहुत जरूरी है कि मेड़ बंधी हुई तो
1: बिल्कुल
0: जितनी जरूरत हुई भैया हम अपने पानी के इस्तेमाल करें, नेवी के बाद पानी भी निकासी
1: निकास
0: व्यवस्था
1: बिल्कुल
0: होते
1: वह
0: उनको
1: बता
0: भाई
1: रहे हैं
0: देने
1: कि
0: का
1: जौन
0: रखे।
1: है पानी के यहाँ निकासी केर बहुत जरूरी व्यवस्था कि कहूँ से जल भराव केर जौन है उत्पन्न ना हो पावे। और दूसर
0: हाँ
1: चीज है अगर
0: हाँ
1: हम कोनो फसल ले रहे हैं
0: हाँ
1: तो सबसे पहले बीज केर चयन जौन है वो तो बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल भैया बीज क्या चयन जरूरी होते कि हम ऐसी जगह तेने ले जहाँ भैया वो शुद्ध होए प्रमाणिक होए या दुकान ऐसी होए जो प्रमाणिक होए
1: बिल्कुल
0: भैया उसका रजिस्ट्रेशन वजिस्ट्रेशन होए कि सही जगह तेने हम ले रहने, या कृषि केंद्र भैया चले जाएं आप अपने जो जिला है जहाँ तेने
1: हाँ
0: वहाँ
1: हाँ
0: तेने लें बीज उज तो वो
1: बिल्कुल
0: नीक मिलत है। और उससे पहले हम का एक चीज़ और कर रखें कि अपने खेत के रे भैया माटी की जाँच करा लें।
1: हाँ
0: हाँ
1: सही कहो कि तो कोनो तरीके से अपन जो है माटी के खान पान के जो कमी होते है हम
0: हाँ
1: लोग पूर कर सकी थे। तो बीज के जो है शुद्धता है बहुत जरूरी है और
0: हाँ
1: माटी के जो है जांच है बहुत जरूरी
0: और
1: है।
0: बहुत जरूरी है। और भैया जब जौनी चीज़ें हम खरीफ में ले चाहे धान ले रहे हैं चाहे दाल वाली कोनो चीज़ें ले रहे हैं, ज्वार बाजरा है इस
1: उड़द
0: समय
1: है, मूंग है, तमाम
0: हाँ
1: तन की जो
0: सब
1: फसलें
0: ले
1: हैं।
0: वाले हैं, तो भैया जब हम बोए वे लागे तो इससे पहले बीज का उपचारों बहुत जरूरी होते
1: सही कहो।
0: कि भाई बीज उपचार के लिए जाए।
1: बीज के उपचार जरूरी है, तबे कही थे ना कि शुद्धता के जो उन्हें प्रमाणित बीज हो एक चाहिए
0: हाँ
1: ताकि जो हम लोगों की फसलन में कोनो दिक्कत ना होए। और
0: बिल्कुल
1: भैया एक चीज तो बहुत जरूरी है,
0: हाँ
1: जैविक खाद की है, जैविक खाद और हरी खादन के यहाँ प्रयोग करे चाहिए कि आपन जो
0: हाँ
1: गोबर है वही की अगर
0: हाँ
1: सड़ी हुई खाद

0: हम लोग फसलन में ही प्रयोग कर रहे हैं
1: हाँ
0: तो हमारे लोगन के लिए बहुत अच्छा है।
1: बिल्कुल भैया, देखो जब हम शुद्ध चीज अपने खेती पाती में यहाँ लगेबा तो जौन उत्पादन हुआ बढ़िया शुद्ध हुई, और
0: बिल्कुल
1: जब वो उत्पादन हमरे सबके घरन में आई तो जब हम सबको खाई हुई का तो बढ़िया शुद्ध रही, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर अगर कौनो रासायनिक भाई देखो इस्तेमाल कबो कबो तो करे पर जाते
0: बिल्कुल,
1: है ना भाई,
0: जब
1: कबो
0: जरूरत होते
1: हाँ
0: तब
1: तब जरूरत होते तो इस्तेमाल करे पड़े थे। बोला वो तनु का हो अपने शरीरों खातिन और अपने फसलों खातिन माटी खातिन अपने पर्यावरण पर सबके खातिन खतरनाक होते हैं।
0: तब है कही थे शुरुआते से रहे अपन जो उन्हें गोबर केर खाद जैविक खेती
1: जब
0: पर
1: अब
0: बढ़ावा
1: तैयारी
0: दे।
1: रही
0: हाँ
1: तो हमका बढ़िया चीज मिली।
0: तो हमका ये सब चीजन की जरूरत नहीं पड़ी कि हम लोग ई चीज के छिड़काव करी, यू चीज के प्रयोग करी, तो
1: हाँ
0: शुरुआते से रहे अपन जो उन्हें जैविक खाद और हरी खाद की यहाँ प्रयोग करे चाहिए।
1: बिल्कुल भी भैया। और यह तन के एक किसान अपने बीज देखो आज हैं जौन अपन सफलता कहानी बता रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: और ये सब यह तन की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे जैविक होए या सब चीजें कृषि विविधीकरण अपनी खेती में कर रहे हैं, और यह सब बतावे खातिन अपन सफलता कहानी सुनावे खातिन अपने बीच में यहाँ हैं। अपने बीच में हैं अनिल कुमार सिंह भैया, तो ये बताई हैं और इनसे बात कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो संपंच भैया सुनो, इनसे सीख लो और अपनी खेती पाती में यहाँ इनकी जो सफलता है इनका अपने इस्तेमाल करो।
0: बिल्कुल भैया सुना जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, सफलता की कहानी क्रम में आज हमारे साथ हैं लखनऊ जनपद के बक्सी का तालाब ब्लॉक के रायपुर राजा गांव के प्रगतिशील किसान अनिल कुमार सिंह भैया। स्वागत है कार्यक्रम में। भैया आप कृषि विविधीकरण के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: किसान भाइयों को और बहनों को नमस्कार है। मेरी शिक्षा 1984 में हमने ग्रेजुएशन कर लिया था। हमारे परिवार वालों ने हमें सर्विस नहीं करने दिया, तभी से हम खेती की तरफ झुकाव मेरा हो गया।
2: यानी लगभग 40 साल?
3: हाँ लगभग 40 साल से हमारा खेती की तरफ झुकाव है।
2: तो कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
3: जब तक हम ज्वाइंट फैमिली में रहे हमारे पास थी 24 एकड़ जमीन।
2: यानी संयुक्त परिवार?
3: संयुक्त परिवार में। जब गार्जियनशिप खत्म हो गई तो हम दो भाई हैं अपने अपने जगह पे आ गए, कुछ हम लोगों ने खरीदी भी है इसलिए अब हमारे पास जमीनें बढ़ गई हैं थोड़ा सा। अब लगभग 13-13.5 एकड़ जमीन एक भाई के पास है।
2: यानी आपके पास लगभग 13.5 एकड़ जमीन है?
3: 13.5 एकड़ जमीन।
2: तो 13.5 एकड़ जमीन में पूरे साल का क्या फसल चक्र अपनाते हैं?
3: हमारा 3-4 एकड़ प्रतिवर्ष केला रहता है
2: जी।
3: केला हमारा खत्म होता है उसमें हम खीरा लगा देते हैं, तरोई लगा देते हैं, करेला लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, जो भी जैसा माहौल दिखता है मार्केट का उस हिसाब से हम वो काम करते हैं।
2: यानी लगभग 3-4 एकड़ केला हर साल आपका रहता ही रहता
3: है? हर साल रहता है।
2: इसके अलावा सब्जियां?
3: सब्जियां हमारे पास इस वक्त 2.5 एकड़ से अधिक टमाटर लगा हुआ है।
2: हाँ।
3: 2 एकड़ लगभग हमारे पास तरोई लगी हुई है इस वक्त
2: जी,
3: और 1 एकड़ प्लस में हमारे पास करेला लगा हुआ है।
2: तो ये जो तरोई और करेला है
3: जी,
2: ये क्या जमीन पर है या मचान पर?
3: नहीं ये मचान पे, हमारा टोटल काम मचान पे है।
2: तो ये क्या खरीफ से शुरुआत करते हैं या जायद से?
3: ये हम दिसंबर मंथ में बुआई सोइंग करते हैं इसकी।
2: अच्छा, तो लो टनल पॉली हाउस में?
3: लो टनल पद्धति अपनाते हैं।
2: और रोपाई मुख्य खेत में कब करते हैं?
3: मुख्य खेत में ही हम लोटना लगाते हैं सीधे फसल पे।
2: अच्छा,
3: हाँ
2: सीधे जमा लेते हैं?
3: हाँ सीधे जमाते हैं
2: और फिर
3: ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं,
2: हटा देते हैं।
3: उसके बाद लोटना हटा देते हैं
2: 15 यानी फरवरी में?
3: हाँ 10 फरवरी के बाद कभी भी हटा सकते हैं जैसा मौसम रहेगा।
2: तो पूरे खेत में आपको लो टनल बिछाना पड़ता होगा?
3: जी हाँ पूरे खेत।
2: और उसके बाद मचान बनाते हो?
3: उसके बाद मचान बनाते हैं।
2: केला से शुरुआत करें तो केला G9 होगा?
3: G9।
2: ये कब से आप केला उत्पादन से जुड़े?
3: ये केला उत्पादन में हम जुड़े हैं 2006 से।
2: यानी लगभग 20 साल हो?
3: 20 साल से लगभग।
2: कैसा चल रहा है?
3: हमारा ठीक चल रहा है।
2: इस समय फसल कैसी है आपकी?
3: हमारी केले की फसल ठीक है।
2: कितनी ऊंचाई तक?
3: हमारी ऊंचाई इस वक्त पेड़ की लगभग 8 फीट आ रही है।
2: हाँ यानी अच्छी बढ़वार है?
3: बिल्कुल अच्छी बढ़वार है।
2: केला की बात करें तो केला की रोपाई और रोपाई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के
3: जी
2: केले की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं कि आपको पैदावार अच्छी मिले और अच्छा बाजार भाव भी मिले?
3: रोपाई के समय में सबसे बेहतरीन समय की जुलाई मंथ में ही केला लग जाना चाहिए, इसकी रोपाई जुलाई में ही हो जानी चाहिए।
2: और आप करते हैं?
3: और हम करते हैं। अगर हम जुलाई में नहीं कर पाए रोपाई तो हम केला नहीं लगाएंगे उस साल।
2: रोपाई के बाद?
3: उसके लिए सबसे अहम चीज होती है सीड की
2: जी,
3: कहाँ से हमको पौधा मिलना है।

0: लेना है और उसकी कितनी प्योरिटी और कितनी क्या होती है। पहली चीज, आपका पौध का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, किस कंपनी से लेना है आपको।
1: तो आप ठोक बजा करके पौध ले आते हो?
0: बिल्कुल, मतलब उसको हम जैसे कोई नई वैरायटी या नई कंपनी आई,
1: हाँ,
0: तो पहले उसका हम थोड़ा लगाते हैं, 100 पेड़ लगा दिए, 500 पेड़ लगा दिए,
1: ट्रायल करते हैं,
0: अगले साल उसको फुल पे जाते हैं।
1: तो अभी जो G9 प्रजाति जिस कंपनी का भी आपने लगाया है
0: जी,
1: वो बढ़िया चल रहा है,
0: फर्स्ट क्लास चल रहा है।
1: फसल की भूख मिटाने के लिए खाद और उर्वरक का प्रबंधन कितना करते हैं और रोपाई का अंतरण क्या रखते हैं?
0: रोपाई का अंतरण हम दो तरीके से रखते हैं। हम कभी कभी, आपने जो विविधीकरण बताया
1: जी,
0: तो हम विविधीकरण भी करते हैं, जिसमें हमको अन्य फसल लेनी होती है तो हम केले की 4 फिट प्लस 4 फिट पे दो लाइन बराबर लगाते हैं,
1: हाँ,
0: उसके बाद में 10 फिट जगह छोड़ देते हैं।
1: अच्छा,
0: इस 10 फिट की जगह में हम कभी करेला लगा देते हैं, उसमें कभी शिमला मिर्च लगा देते हैं।
1: यदि केले के साथ भी करेला और शिमला मिर्च की सहफसली खेती करते
0: जी, सहफसली खेती करते हैं
1: तो 10 फिट में कई लाइने शिमला मिर्च और करेला,
0: करेले की 1 लाइन लगाते हैं
1: जी
0: और शिमला के 2 लाइन लगाते
1: तो
0: हैं।
1: वो भी करेला क्या मचान पे चढ़ाते हैं?
0: हाँ, वो स्केटिंग मचान होता है, उसको सीधा सीधा
1: सीधा खड़ा,
0: सीधा खड़ा रखो, ऐसे चढ़ाया 6 फिट तक, उसके बाद फिर पलट दिया 6 फिट।
1: जो आपने बताया कि करेला और तुरई आपके खेत में है
0: जी,
1: तो उसमें
0: भी हमारी विविधीकरण चल रही है।
1: अच्छा,
0: तुरई की हमारी 10 फिट से लाइन लगती है, 1 लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 10 फिट।
1: अच्छा,
0: और एक तरफ नाली के तरोई का सीड लगेगा, दूसरी तरफ हम दलहनी फसल लगाते हैं, लोबिया।
1: अच्छा, गर्मी वाली
0: जी,
1: जायद में।
0: जब तक ये हमारा मचान पूरा फुल होता है तब तक हमको कुछ आमदनी लोबिया से मिल जाती है, लागत हमारी थोड़ी बहुत निकाल देता है,
1: यानी लोबिया सब्जी के रूप में
0: जी। और हर 10 फिट पे गेंदे का पौधा लगा, अगर रेट मिल गया तो इससे भी हमारी कुछ अर्निंग होती है, और नहीं तो मोजैक रोग के लिए गेंदा लगाना अति अनिवार्य है।
1: और निमेटोड के लिए भी?
0: निमेटोड के लिए तो दलहनी काम करती है बढ़िया,
1: और गेंदा भी बड़ी महत्वपूर्ण।
0: हाँ, गेंदा भी लगता है और गेंदा मोजैक रोग को भी रोकता है।
1: करेला का अंतरण क्या रखते हैं?
0: करेला लाइन से लाइन की दूरी 12 फिट, सीड से सीड की दूरी 1.5 फिट।
1: अच्छा
0: जी,
1: और उसमें बीच बीच में मचान लगाते होंगे?
0: नहीं, उसमें टोटल मचान रहता है।
1: तो ये बताएं कि करेला और तरोई की निकासी कब से चालू हुई?
0: तरोई की निकासी हमारी 17 मार्च को पहली हमने हार्वेस्टिंग की है,
1: हाँ,
0: तब से अभी तक चल रही बराबर।
1: और करेला?
0: करेला 22 मार्च से चालू हुआ।
1: तो भाव शुरू में अच्छा मिला होगा?
0: शुरुआत में करेले का भाव हमको मिला है 80 रुपए पर केजी का, और तरोई का भाव 65 रुपए पर केजी।
1: और अभी लगातार ये निकासी कब तक चलेगी?
0: लगातार अभी तो परमानेंट चली रही है, अब थोड़ा तरोई का रेट डाउन हुआ है तो इसकी हम एक बार कटिंग करवाएंगे
1: जी,
0: इसको कलम कर देंगे,
1: हाँ,
0: और उसके बाद में जब तक कि ये आएगा इस पर हम ट्रीट करके इसको फिर से नए सिरे से लाएंगे, 4 फिट पौधा छोड़ के ऊपर का पूरा हिस्सा गायब कर देंगे।
1: तो फिर ब्रांचिंग होगी?
0: फिर इसकी ब्रांचिंग होगी, उसको फिर हम उसी पे सेट करेंगे, तब तक बारिश हो जाएगी, जिसकी तरोई जमीन में चल रही वो खत्म हो जाएगी, हमको ये इसका ग्रेड कुछ दिन के लिए फिर मिल जाएगा।
1: यानी बरसात में भी मिलेगा?
0: बरसात में भी हम ये तरोई चलाएंगे और करेला भी चलाएंगे,
1: दोनों
0: दोनों चलाएंगे।
1: तो करेला में भी क्या प्रूनिंग करेंगे?
0: नहीं, करेले में आवश्यकता पड़ने पर।
1: ये बताएं कि आप बागवानी फसलों में केला, करेला, टमाटर
0: जी
1: और तरोई
0: जी
1: लगा रहे हैं
0: जी,
1: टमाटर की भी बात कर ली जाए
0: जी,
1: कि टमाटर की कोई खास वेराइटी लगाए?
0: इस वक्त हमारे पास जो वैरायटी लगी है एक रेडेक्स लगा हुआ है, करीब 1 एकड़ हमारा टमाटर ये लगा है, एक आस्तोस लगा है, लगभग 1.5 बीघे ये लगा हुआ है हमारे पास, मतलब 1.25 एकड़, और एक है लता वैरायटी।
1: तो क्या खासियत इस टमाटर की महसूस कर रहे हैं?
0: इस टमाटर में पेड़ की हाइट ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा हाइट नहीं जाती, और इसकी फलन अच्छी है, इसका टमाटर पीस मजबूत होता है, एकदम पक जाएगा उसके बाद भी अब इसको 1 हफ्ते तक रोक सकते हैं।
1: तो टमाटर की रोपाई आपने कब की?
0: टमाटर की नर्सरी हमने डाली थी शुरू दिसंबर के 1st वीक में, और इसको हम 15 जनवरी को ट्रांसप्लांट कर दिए थे।
1: और निकासी?
0: हमारी निकासी टमाटर की चल रही है अप्रैल के 1st वीक से।
1: ये कब तक चलेगा?
0: ये मान के चलिए आप कि अभी 15 जून तक तो चलेगा ही चलेगा, इतना फल हमारे टमाटर के खेत में अभी लगा हुआ है।
1: तो कौन सा खास प्रयोग करते हैं आप गर्मी से बचाव के लिए?
0: सूरज की किरणों से जो हमको बचाना होता है सूरज की गर्मी से, ये हम होम्योपैथ की नट्रम में और प्रयोग करते हैं।
1: अच्छा, तो ये हुनर सीखा कहाँ से आपने?
0: ये हमने होम्योपैथ के डॉक्टरों से सीखा भाई, हम उनके पास अगर अपने इलाज के लिए गए गर्मी में, वो हमको नट्रम में और देते हैं कि सूरज की किरणें

0: आप पे असर नहीं करेंगी।
1: तो वहाँ से हमने सीखा, हमने इसको प्रयोग किया इस पे फसल पे।
2: तो क्या दिखा आपको रिजल्ट?
1: हमने इसको सबसे पहले आज से लगभग 10 साल पहले इसको हमने शिमला मिर्च पे प्रयोग किया था। शिमला मिर्च का जो हिस्सा दक्षिण तरफ होता है उस हिस्से पे स्पॉट आ जाता है धूप का सफेद
2: जी।
1: हमने इसको प्रयोग किया तो स्पॉट कम से कम 75% हमको इसमें वो मिला कि ठीक है, हमने इसको चालू रखा।
2: इसके अलावा भी क्या होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल आप अपनी फसलों को बचाने में करते हैं?
1: जी हाँ, जाड़े में हम रस्टाक्स का प्रयोग करते हैं।
2: अच्छा
1: जी,
2: और रोग दोख और कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए?
1: देखिए, कोई अधिक अगर है कीड़ा आ जाता है अटंडम वाला, जैसे मतलब अकस्मात
2: आ गया
1: तब तो, जैसे आप हमारे आपको अकस्मात बीमारी होती तो एलोपैथ में भाग जाते हैं
2: जी।
1: अगर टेम्परेरी बीमारियां चल रही तो हम होम्योपैथ और आयुर्वेद से ही इसको कंट्रोल करते हैं आज भी।
2: जो पैदा करते हैं बागवानी की फसलें सब्जियां
1: जी,
2: उसको बेचते कहाँ?
1: बेचते हैं हम अपने मंडी में।
2: कहाँ?
1: एक इटौंजा मंडी है हमारे घर से 3 किलोमीटर पे।
2: मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं?
1: नहीं, मार्केटिंग की वैसी कोई समस्या नहीं है।
2: पूरे साल में जो 13.5 एकड़ आपकी जमीन है उसमें बागवानी फसलें हैं
1: जी,
2: उससे कितनी आमदनी हो जाती है, कितना लागत पूरे साल में गिरती है और उत्पादन कितना तक ले लेते हैं?
1: किसान का हर उत्पादन कुछ तो प्रकृति पे निर्भर करता है। अब प्रकृति से लड़ करके ही हम जो बढ़ा पाते हैं वही उत्पादन हमारा बढ़ता है, बाकी जैसे जनरल है वो है।
2: फिर भी पूरे साल में खेती से कितना बचा ले रहे?
1: अब आप ये मान के चलिए खेती से सारी लागत निकालने के बाद लगभग 1 लाख रुपए पर एकड़ हमको बचना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य रहता है।
2: और आप बचा लेते हैं?
1: कभी बढ़ भी जाता है, कभी घट भी जाता है, लेकिन एवरेज, ऑल ओवर एवरेज अगर हम जोड़े 5 साल का जोड़ दें तो ये आप मान के चलिए कि 10 लाख पर ईयर से प्लस में रहेंगे।
2: जो अब तक का आपका तजुर्बा है बागवानी की फसलों का, सब्जी उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: उनको ये टिप्स है कि जो भी काम करें वो पूरी लगन से और पूरी मेहनत से करें, किसी भी काम में कोई नुकसान नहीं है, उसको एज ए कॉमर्शियल करना चालू कर दें, अपने आप आमदनी किसान की बढ़ती जाएगी।
2: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बताते हैं।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 9935241212, 9335242412, 9335241212।
2: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफलता की कहानी के बारे में?
1: किसान भाइयों से यही हम कहना चाहेंगे कि जैसे हर विभाग में सब लोग ज्वाइंट में रहते हैं, किसान भाई हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में एक अपना एरिया निश्चित करें, कहाँ पे क्या लगना, आप किसको किस चीज में प्रॉफिट हुआ, किसमें नुकसान हुआ, उसको न देखें। वो जो काम कर रहे हैं, आज हमको जिस फसल में नुकसान हुआ है कल उसी से फायदा होगा, हमारा जहाँ पे जो खोया हुआ सामान है वो वहीं पे मिलेगा। हमको टमाटर में नुकसान हुआ तो हम केले पे भगेंगे, नुकसान में जाएंगे। टमाटर का घाटा हम जब तक टमाटर से पूरा नहीं करेंगे हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हारना नहीं कहीं पे, किसान को केवल भिड़े रहना है।
2: अनिल कुमार सिंह भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और जो आपकी सफलता की कहानी थी कि आप स्नातक की पढ़ाई के बाद लगभग 40 साल पहले खेती से जुड़े, आज 13.5 एकड़ आपके पास खेती की जमीन है जिस पर आप केला, टमाटर, करेला और तरोई की खेती कर रहे हैं, कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं आज कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी सफलता की कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विवेक भैया,
4: हाँ,
3: तो जैसे हम सब जने देखे रहे हैं कि मौसम कितना भैया इस समय गर्म हो रहा है,
4: बिल्कुल
3: है ना, तो का कुछ आगे कुछ पानी वानी बरसे का आसार है कि नाए है कि भैया तपाए डारे लोके लोक है, काहे नवतपा तो है भैया, तो का कुछ मौसम का हाल है तनु बता दो।
4: बिल्कुल भैया, मौसम के हाल हमारे हाथे मैया है, जौन हमका प्राप्त भवा है भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ से रे। देखो भैया, आज जौन है तारीख है 24/5/2026 जी, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हाँ, कहीं कहीं पर जौन है वर्षा गरज चमक के साथ बौछारे पड़े की संभावना रहा है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ जौन है मौसम शुष्क रहे की संभावना रहा है और तेज धूल भरी हवा जौन है जय की गति 25-35 किलोमीटर प्रति घंटा के चले के संभावना रहा है, और कल से लगाए करके यानी 25, 26 और 27 कहीं है।
3: अच्छा।
4: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ जौन है मौसम शुष्क रहे की संभावना है, मूल पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ कहीं कहीं पर जौन है वर्षा गरज चमक के साथ बौछारे पड़े के

0: संभावना है, और तेज धूल भरी हवा भैया जी की जौन है वह गति 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा के जौन है वो की पड़े कर संभावना है। तो यू तो रहा जौन है मौसम के हाल जय मां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भैया मौसम शुष्क है ये है, मूल पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौन है तनिक बदलाव देखे मिल रहा है।
1: हाँ भैया विवेक, तो भाई पंचो जौन जौन हमका सुन रहे हैं, देखो हम तो मौसम का हाल बता दे रहे हैं आपका मुला भैया, मौसम ऐसी चीज है कि कभी बदल जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो जरूरी यू है कि भाई आपके पास में यह है टच वाला फोन, तो वही पर जरूर भैया देखत रहे टाइम टाइम पर कि कैस मौसम होए वाला है।
0: बिल्कुल,
1: है ना, मौसम विभाग अपन भैया वो ऐपो दिन है मौसम तेने, तो वो ऐप डाउनलोड कर ले हैं, तो समय समय पर भैया उते पता चलत रहते हैं। और अब भैया पंचन के यहाँ फिर से एक बढ़िया लोकगीत सुनावे के समय आ चुका है, कहे देने भाई लोकगीत जब रहते तो तनुक बहुत नीक लागत है,
0: नीक ना काम करे मन लागत है और आनंद आवत है
1: भैया, मौज तो होता है। तो ये इतना बढ़िया पनघट गीत आज लेके आए, देखो हम आए हैं छलकल गगरिया मोर, और इसका सुनाए रहे हैं रंजुल जयंत गौतम व साथी भैया, तो सुना जाए बढ़िया पनघट गीत।

0: विवेक भैया,
1: हाँ अभिषेक
0: देखो
1: भैया,
0: कितना बढ़िया पनघट गीत रहा है,
1: बिल्कुल
0: चलकल गगरिया मोर, तो
1: मजा
0: भाई के
1: आएगा।
0: खातिन। हाँ मजा तो है किन, तो पहले देखो रंजुल जैन गौतम उनके साथ इनके यहाँ भैया धन्यवाद दे दिन जाए।
1: बिल्कुल बहुत बहुत
0: और अब अपने
1: धन्यवाद।
0: पंचन को बताए दी कि कल का सुनिए अपने कार्यक्रम में। यहाँ तो पंच भैया खेती किसानी में सुनिए भेंट वार्ता, पशुअन मा गला घोटू कारण और निवारण के बारे में बताते हैं डॉक्टर संतोष कुमार द्विवेदी भैया, और बात कर रहे हैं अपन डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
1: और भैया अभिषेक भैया, पंचन के यहाँ सबसे पहले पता जरूर बताए दो, काहे सर पता जौन है आपन पंचन के यहाँ चिट्ठी फाती लिखे खातिर, वो बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है पंचो, तो हमार जोन पता है और इसके साथ साथ पता तो है ये है ईमेल आईडी भैया है,
1: बिल्कुल।
0: काहे से ईमेल भाई फोन है तुरंत ही कह सकत हो, तो हमें सबसे पहले हम अपन ईमेल बता दी। हमारी ईमेल है farmandhome@gmail.com, और पता है कार्यक्रम लोकायतन खेती किसानी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 22601। और वे भैया देखो जैसे हम बताएं कि नवतपा कल शुरू हो रहा है,
1: बिल्कुल।
0: गर्मी हो रही है, लोग नाव भैया इतना तेज है कि भाई निकलो तो थप्याड़ मारत है उन
1: बिल्कुल
0: पर,
1: सही कहो।
0: तो अपन ध्यान रखक है, अपने हरहा घुरन ध्यान रखक है, उनका ताजा पानी ठंड पानी छाही बैठा रख है,
1: बिल्कुल,
0: अपने पालतू जानवरों का ध्यान रखक है।
1: कहे मतलब है सबका
0: हाँ
1: ध्यान रखे
0: सबका
1: है।
0: ध्यान रखक है, अपन ध्यान रखक है। और अब पंचन से ने लीन जाए विदा, जय
1: जय हिंद।
0: हिंद।

0: खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 7:20 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
3: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
4: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
5: बिल हो रहा है।
4: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
6: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, कहा बिजली उत्पादन इकाइयों को पूरी दक्षता से किया जाए संचालित। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा, मार्को रूबियो कल आगरा में ताजमहल का करेंगे दीदार। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न, प्रदेश के 9 परीक्षा केंद्रों पर नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और प्रदेश भर में

0: भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में वृद्धि और लू चलने की जताई संभावना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों सहित प्रदेश के प्रत्येक उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत की उपस्थिति में ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन एवं डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीकी दक्षता तथा रखरखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देने के साथ ही फीडर वाइज मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय करने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आंधी तूफान के बावजूद विद्युत व्यवस्था बहाल रखने के लिए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रखने को भी कहा। दीपाली सिंह, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। अमेरिकी विदेश मंत्री कल आगरा में ताजमहल का दीदार करेंगे। वो विशेष वायुयान से आगरा पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पहुंचेगा। शिल्पग्राम से बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में बैठकर वह ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के आगरा भ्रमण के मद्देनजर केंद्रीय एवं प्रांतीय खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। ताजमहल के आसपास के होटलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रूबियो भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री के ताजमहल भ्रमण के दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल खुला रहेगा। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्षों के साथ 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा की एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार की नई नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी की तैयारियों को हर स्तर पर और भी चुस्त दुरुस्त बनाने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत आज से 3 दिवसीय प्रवास पर लखनऊ में हैं। सर संघ चालक सरस्वती कुंज निराला नगर में चल रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में प्रशिक्षण लेने आए शिक्षार्थियों के मध्य बौद्धिक और संवाद के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में नेपाल सहित अवध, कानपुर, गोरक्ष और काशी प्रांत के 289 कार्यकर्ता प्रशिक्षण ले रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के 9 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बरेली में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। एक रिपोर्ट।
3: लखनऊ में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक चली, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक हुई। इस बार परीक्षा से पहले चेहरा पहचान प्रणाली लागू की गई। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले इस सिस्टम से होकर गुजरना पड़ा। इस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से 37,000 से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत थे। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान कटा है, जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल

नेशनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में कोडीन सिरप की अवैध तस्करी मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स STF ने कल अदालत में 40,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जांच में 900 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। इससे पहले भी STF ने अदालत में एक चार्जशीट दाखिल की थी। STF के अधिकारियों ने बताया कि NDPS एक्ट समेत अन्य धाराओं में अदालत में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित टाटा के खिलाफ चार्जशीट कल दाखिल की गई। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और आसपास के कुछ स्थानों पर कल दिन में तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर रात्रि के तापमान में वृद्धि का भी अनुमान जताया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू के ऑरेंज अलर्ट के साथ ही विभाग ने कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जताया है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आने वाले 3 दिनों में प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है।

0: क्रम में जारी रहेगा।
1: हापुड़ की तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर में कल होने वाले गंगा दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन ने आज डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं अमरोहा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज से रूट डायवर्जन लागू किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए आज से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर पीएससी, फ्लड पीएससी, फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेटिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
1: सशस्त्र सीमा बल द्वारा आज लखनऊ में संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण के अंतर्गत फिट इंडिया साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीमांत मुख्यालय लखनऊ एवं चतुर्थ वाहिनी के अधिकारियों और बल कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और लोगों को फिट एवं स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक करना था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, कहा बिजली उत्पादन इकाइयों को पूरी दक्षता से किया जाए संचालित। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। मार्को रूबियो कल आगरा में ताजमहल का करेंगे दीदार। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 9 परीक्षा केंद्रों पर नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में वृद्धि और लू चलने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: Hey guys, hi, congratulations. आज तो पार्टी चाहिए।
4: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है।

है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। शाम के 7:31 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं सुमोना एस पांडे और नीना सोनकर।

0: पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी नीना सोनकर का प्यार भरा नमस्कार और
1: मेरा यानी सुमोना पांडे का आप सभी श्रोताओं को और नीना जी आपको भी प्यार भरा नमस्कार।
0: धन्यवाद सुमोना जी, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। और शुरू करते हैं श्रोताओं के मेल पढ़ने का सिलसिला।
1: बिल्कुल,
0: हमेशा की तरह ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता बहुत दूर से भेजते हैं हमें मेल। इनके नाम है दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम्बाई, पापू देव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। 13 मई के कार्यक्रमों का जिक्र है कि नई उड़ान कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में प्रगति के पथ, नई पहल, दर्शन विषय पर जो जानकारी दी गई वो बहुत अच्छी लगी। 14 मई 2026 का कार्यक्रम लोक रंग लोक माधुरी बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में विजय लक्ष्मी जी के स्वर में भोजपुरी लोकगीत सुने बहुत अच्छे और सुमधुर लगे। इतने अच्छे गानों के लिए धन्यवाद। इन्हीं का मेल आया है 17 मई के कार्यक्रम के बारे में। ये है रविवार का बालमंच कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में चर्चा के अंतर्गत छुट्टी के दिन आए विषय पर दी गई जानकारी लाजवाब लगी। साथ ही दूर संचार जोड़े दिल से दिल के तार विषय पर दी गई जानकारी बेहद लाभदायक लगी और सभी कार्यक्रम इन्हें अच्छे लगते हैं। 15 मई के कार्यक्रमों का भी जिक्र है कि शुक्रवार का लोक रंग और लोक माधुरी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में संजू सिंह के स्वर में भोजपुरी लोकगीत सुने बहुत अच्छे लगे। इसमें कुछ और श्रोताओं के भी नाम है। ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा। रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा। और नागनपुरे जी के परिवार का तो हमने मेल पूरा पढ़ ही दिया है
1: जी, और इनके सभी परिवार के सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम इतने ध्यान से सुनते हैं, उससे लाभान्वित होते हैं, जो कि हमारा उद्देश्य है कि हम आपको जागरूक करें और आप तक सूचनाएं पहुंचाएं और साथ ही मनोरंजन भी आपको मिलता है हमारे कार्यक्रम से। तो आपने हमें मेल द्वारा ये सब बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: 18 मई को सोमवार का दिन था। नाटक मोक्ष बहुत अच्छा लगा। इस नाटक में भाग लेने वाले सभी कलाकारों को हार्दिक बधाई। 17 मई के दिन अक्षवट कार्यक्रम इन्होंने सुना। रविवार का दिन था। इस कार्यक्रम में वृद्धावस्था में वित्तीय प्रबंधन विषय पर रविंद्र चतुर्वेदी जी से डॉक्टर अलका चौधरी जी की बातचीत बहुत लाभदायक लगी। 20 मई 2026 का आंगनबाड़ी कार्यक्रम जो बुधवार के दिन प्रसारित हुआ, इन्हें अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में चर्चा जो थी बच्चों के लिए पूरक आहार, विशेष परिस्थितियों में स्तनपान, ORS के घटक और ORS का प्रयोग कब करें और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इन विषयों पर दी गई जानकारी अच्छी लगी। नीमा पंत जी ने जच्चा बच्चा योजना के बारे में जानकारी दी, अच्छी लगी।
1: बिल्कुल, और समसामयिक ये सब विषय होते हैं जिनके बारे में हम इसीलिए चर्चा करते हैं ताकि आप लोगों को बार बार हम सचेत कर सके और आपके स्वास्थ्य के ऊपर हम लोग ध्यान दिलवा सके आपका और आप परिवार के साथ खुशहाल रहें
0: जी। सुमोना जी, बमना खेड़ा जिला हरदोई उत्तर प्रदेश के हैं ये श्रोता। इनके नाम है अर्पिता, हर्षिता, अंजलि, सुधाकर, कोमल, सिया राम और इनके परिवार के सभी सदस्य। लिखते हैं कि आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, चाहे वो सुगंध माटी की हो, स्वास्थ्य चर्चा हो, आंगनबाड़ी हो, घर आंगन, विज्ञान और किसान, लोक माधुरी और कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, सुनना अच्छा लगता है। आगे इन्होंने ये लिखा है, डॉक्टर सुशील राय सर वैज्ञानिक से बातचीत बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, जो समय समय पर समसामयिक जानकारी देते हैं बहुत बढ़िया होती है। और नीना दीदी ने जो किसान डायरी में कृषि समाचार पढ़े वो बहुत अच्छे लगे और गानों का सिलेक्शन भी अच्छा लगता है। और आगे ये लिखते हैं, खेती किसानी प्रोग्राम में नौटंकी विधा को भी शामिल करें।
1: नेहा वर्मा जी, आपने वाकई में बहुत विस्तृत हमें मेल किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और आपके सुझाव हमने नोट कर लिए हैं। कोशिश करेंगे आगे आपको आपकी पसंद के कार्यक्रम सुनवा सके, लेकिन हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए और हमें मेल करते रहिए
0: जी। ये है शेषराम मिश्र, ग्राम पूरे पंडा पोस्ट, दादरा तहसील मुसाफिरखाना, जिला अमेठी के श्रोता। इनके नाम है मानवती मिश्रा, प्राची मिश्रा, आनंद मिश्रा, वेदिका और परिवार के सभी सदस्य। लिखते हैं, 17 मई को खेती किसानी कार्यक्रम में गन्ना से उत्पादन, इस विषय पर डॉक्टर श्री कुशल पाल तिवारी से जो

0: बातचीत की डॉक्टर सुशील कुमार राय ने अच्छी लगी।
1: तो सभी मिश्र परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार। आपने मेल किया और आपको कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, ये हमें जान के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य है कि आपका मनोरंजन भी करें और आप तक जानकारी भी पहुंचाएं।
0: ये मेल आया है चंद्रभान तिवारी, ग्राम व पोस्ट दादरा, तहसील मुसाफिरखाना, जिला अमेठी के श्रोताओं का। इनके साथ और भी लोगों के नाम हैं, संतोष कुमार तिवारी, विपिन कुमार, विश्वास, गौरव, गरिमा, टीटू, अदिति और आदि तिवारी का। लिखते हैं, मैं बीडीओ के पद पर कार्यरत था। मैं 2016 में सेवानिवृत्त हो गया हूं और मैं सन 1975 से रेडियो पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम ध्यान से सुनता हूं, जो रोचक, ज्ञानवर्धक और लाभदायक हैं। 17 मई को पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में सुमोना जी और नीना जी ने जो प्रस्तुति दी, बहुत बहुत अच्छी लगी।
1: तो सभी तिवारी परिवार के सदस्यों को और उनके मित्रों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने हमें मेल द्वारा अपनी बात हम तक पहुंचाई, हमारा उत्साहवर्धन किया।
0: जी बिल्कुल, सुमोना जी, शेषराम मिश्रा जी ने अपनी मेल आईडी से मेल भेजा है, इनका भी हम नाम शामिल करते हैं इसी तिवारी परिवार में।
1: जी बिल्कुल।
0: पंकज गुप्ता, ग्राम लाखन पोस्ट मलके गांव, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली, उत्तर प्रदेश के श्रोताओं का मेल है। 5 मई को और 11 मई को मेल किया था और आपने शामिल किया और अच्छा लगा। बेसब्री से सारे काम छोड़कर इंतजार करते हैं पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम कब आएगा और हमारा मेल कब पढ़ा जाएगा।
1: जी नीना जी, वाकई में ये बहुत अच्छा लगता है कि लोग लिखते भी हैं और बाद में फिर सुनना भी पसंद करते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा मेल हम अपने कार्यक्रम में ले सके, क्योंकि आपके पत्र हमारे लिए ऊर्जा का काम करते हैं।
0: सुमोना जी, हम लोग आकाशवाणी के लखनऊ के स्टूडियो में बैठकर इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करा रहे हैं, लेकिन एक ठंडी जगह का मेल, वो है गांव डंडी, तहसील भद्रवा, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर। लिखने वाले हैं पुरुषोत्तम कुमार चाडक जी। लिखते हैं कि 17 मई को सुमोना जी और नीना जी ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया, अच्छा लगा। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इतना लगाव हो गया है कि रेडियो को एक मिनट भी नहीं छोड़ता हूँ। आंगनबाड़ी कार्यक्रम में थैलीसीमिया, कारण, लक्षण और कब होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत, यानी कि रक्त बदलने की जरूरत कब होती है और चढ़ाने की कब होती है, इस विषय पर डॉक्टर कौशिक मंडल जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत उपयोगी रही। और इन्होंने ये लिखा है कि इस कार्यक्रम का जो पत्र के लिए धन्यवाद है, मुझे बहुत इंतजार रहता है आपके कार्यक्रम की, हमारे भद्रवाह में बड़ी चर्चा होती है। मैं यहाँ एक शादी में गया था तो वहाँ पर हर आदमी इस कार्यक्रम की चर्चा करता था और कहते थे कि आप तो आकाशवाणी लखनऊ में छाए हुए हैं।
1: क्या बात है। और देखिए, श्रोताओं से हमारा तो रिश्ता बन ही जाता है और उनका भी आगे तक रिश्ता बनता है इसी आकाशवाणी के माध्यम से। और हम लोग आकाशवाणी का 90 वर्ष मना रहे हैं, तो 90 वर्षों से हम आकाशवाणी के माध्यम से श्रोताओं से जुड़े हुए हैं, उनका मनोरंजन कर रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कोशिश करते हैं कि हम समय के साथ चले, कुछ परिवर्तन करते रहे अपने कार्यक्रम में।
0: बिल्कुल।
1: तो सभी लोग उसको पसंद कर रहे हैं तो हमारा उत्साहवर्धन भी होता है। मेल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ये है हमारे एक नियमित श्रोता जिनका नाम है राम खिलावन, कुर्सट से इन्होंने मेल भेजा है, इनका रेडियो क्लब है। लिखते हैं, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के सभी सज्जनों को नमस्कार। और इनके साथ हैं अविनाश द्विवेदी, विजय पांडे, मणिराम, देवेंद्र दीक्षित, रामजी, रमेश, धीरज बाबू और बबलू के साथ है रामप्रसाद। 18 मई को जो कार्यक्रम सुना, विज्ञान और किसान, इस कार्यक्रम में मत्स्य पालन पर विशेष संक्षिप्त जानकारी दी गई, सुनकर बहुत अच्छी लगी। जो कृषि से जुड़े समाचार होते हैं रेडियो डायरी, वो भी अच्छी लगती है। नीना जी के द्वारा जो पढ़ी गई अच्छी लगी। आंगनबाड़ी सुनकर बहुत अच्छा लगता है और कृषि चर्चा कार्यक्रम में जो जानकारी जाती है वो भी सुनकर अच्छी लगती है। स्वास्थ्य चर्चा अच्छा लगता है। हर एक व्यक्ति को लेकर ये कार्यक्रम बनाया जाता है, सुनकर बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो बच्चा हो या फिर खेत में काम करने वाला कोई इंसान या फिर बुजुर्ग। आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र सबका ख्याल दिल से रखता है।
1: जी हाँ नीना जी, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और राम खिलावन जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी तारीफ हमारे कार्यक्रमों की, और हम कोशिश करते हैं कि हर वर्ग के अनुरूप, उनके पसंद के अनुरूप, उनकी जिज्ञासाओं के अनुरूप कार्यक्रम पेश करें और उन तक जानकारी पहुंचाएं, मनोरंजन पहुंचाएं। और आपने इस बात को बिल्कुल सही कहा है कि हर कार्यक्रम हर व्यक्ति के लिए है, तो हमारा 90 वर्षों से ये सफर चल रहा है,
0: बिल्कुल
1: आगे भी चलता रहेगा।
0: जी जी। सुमोना जी, एक हमारे नियमित श्रोता हैं जिन्होंने हमें मेल भेजा है, ये हैं किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललौवा, जिला लखीमपुर खीरी के। विजयपाल यादव, शुभम यादव, ऋचा यादव, शिखा यादव, गुड़िया, बबलू और विजय पांडे जी।
1: जी
0: लिखते हैं कि सुमोना दीदी और दोनों बहनों को सादर प्रणाम और चरण स्पर्श।
1: तो आपको भी

0: नमस्कार, और आप भी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।
1: जी, लिखते हैं कि जो पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम आता है, आप दोनों करते हैं, वो दिल से बहुत अच्छा लगता है। 13 मई को आंगनबाड़ी कार्यक्रम सुना, गर्मियों में होने वाले आंखों के रोग, इस विषय पर जानकारी बहुत अच्छी लगी जो डॉक्टर संदीप सक्सेना जी ने दी। इसी दिन हेलो किसान में जायद की फसलों की सामयिक देखभाल, गर्मी की जुताई और हरी खाद प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी बहुत अच्छी लगी। 17 मई का लोकायतन कार्यक्रम जिसमें कवि गोष्ठी थी, और इसी दिन का खेती किसानी कार्यक्रम, सभी कुछ अच्छा लगा। सफलता की कहानी के अंतर्गत गन्ना उत्पादन पर कुशल पाल तिवारी जी से डॉक्टर सुशील कुमार राय जी की बातचीत बहुत ही अच्छी लगी। 18 मई को घर आंगन कार्यक्रम में निशा गहलोत जी की कहानी रिश्ते की रजामंदी बहुत अच्छी लगी। रात 10 बजे नाटक मोक्ष बहुत ही अच्छा लगा। सभी कलाकार भाई और बहनों को धन्यवाद, ये सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। 19 मई को स्वास्थ्य चर्चा में शंख पुष्पी पर जानकारी बहुत अच्छी लगी। खेती किसानी कार्यक्रम में कृषि रक्षा रसायन का प्रयोग, सावधानियां, इस विषय पर जानकारी डॉक्टर लाल बहादुर यादव जी से, जो डॉक्टर सुशील कुमार राय जी की बातचीत थी, बहुत उपयोगी लगी। इस कार्यक्रम में जिन्होंने प्रस्तुत किया कार्यक्रम को, वो बहुत अच्छा लगा। इसी दिन आकाशवाणी लखनऊ आने का डॉक्टर सुशील कुमार राय जी से मिलने का सुनहरा अवसर भी मिला। सभी से मेरी मुलाकात हुई, बहुत ही सुख का अनुभव हुआ। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं। आप सभी का जो मेरे लिए किया गया सम्मान है, बहुत अच्छा लगा।
0: तो नीना जी, वाकई में इन्होंने बहुत अच्छा पत्र लिखा है, मेल किया है हमें। विजयपाल यादव जी और इनके सभी जितने लोग हैं, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार। और आप हमारे सारे कार्यक्रम इतने ध्यान से सुनते हैं, उससे लाभ लेते हैं, और खास तौर पे किसानों के लिए जो कार्यक्रम होता है, ये इसी उद्देश्य से किया जाता है कि आपको समय के अनुसार जानकारी दी जाए, सूचना दी जाए। तो ये सारे कार्यक्रम आप लोगों के लिए ही किए जाते हैं, और आप जब अपना प्यार हमारे आकाशवाणी लखनऊ के लिए अपने मेल द्वारा हमें भेजते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए, लाभ लेते रहिए, और हमें मेल करते रहिए। और देखिए, आकाशवाणी लखनऊ से जो इनका मोह है, उनको यहाँ तक खींच लाया, और जब ये अपने प्रस्तोता से मिलते हैं तो कितना खुश होते हैं। हमें भी बहुत खुशी होती है कि आपसे एक और रिश्ता जुड़ जाता है, हम आपसे रूबरू होते हैं, आपकी बात सुनते हैं, और आप तक आपकी बात पहुँचाते भी हैं।
1: जी सुमोना जी, ये लाल मोहम्मद जी का मेल आया है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से। इनके साथ है लालू मिस्त्री और मोहम्मद मुनाजिर अंसारी। लिखते हैं कि 16 मई को सुरेंद्र राजेश्वरी जी ने जो कार्यक्रम किया, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया। और इन्होंने ये भी लिखा है कि एक नाटिका हमने सुनी आज इतवार में 17 तारीख को, उसका विषय था हाय रे गर्मी, ये अच्छी लगी। अतिश श्रीवास्तव जी को दिल से बधाई।
0: तो आपने हमारे कार्यक्रम को पसंद किया और हमें मेल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाल मोहम्मद जी।
1: ये नूपुर और दिया जी हैं और व्लॉग्स लिखती हैं। इन्होंने हमें मेल भेजा है कि आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। आज इतवार कार्यक्रम में जो झलकी थी, जिसका शीर्षक था सफाई के कमाल, बहुत पसंद आई।
0: तो आपने हमारे कार्यक्रम सुने, और उम्मीद है आगे भी और भी कार्यक्रम आप सुनेंगे और उनसे मनोरंजन और लाभ दोनों लेंगे। आपने मेल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नूपुर जी।
1: जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, रामशंकर, पत्रकार बहाई वाले, रक्षा मौर्य, राम सागर और सभी मित्रगण लिखते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम में मेल भेजना चाहता हूं, मेल आईडी बता दीजिए, महान कृपा होगी। 17 मई को आज इतवार है कार्यक्रम में झलकी सुनी हाय रे गर्मी, बहुत ही अच्छी लगी, तथा 20 मई को शाम 7:30 बजे कानून की बात में जेल में कैदियों के अधिकार, ये अच्छा लगा।
0: तो हम कोशिश करते हैं अपने कार्यक्रम में हर तरह के पहलू को शामिल करें, और आपने हमारे कार्यक्रम को सराहा है और हमें मेल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये मेल आया है सर्वदानंद मिश्र जी का, ग्राम व पोस्ट दादरा, तहसील मुसाफिरखाना, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश से। ये रविकांत मिश्र जी, साधना जी, सुधांशु जी, श्रीश मिश्र जी, समीर मिश्र जी और नैना जी, ये लिखते हैं कि मैं एक जूनियर हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक था। मैं वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं रेडियो लगभग 1962 से अनवरत सुन रहा हूँ। रेडियो पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम रोचक, ज्ञानवर्धक और लाभदायक लगते हैं। विशेषकर खेती किसानी और लोक गीतों का कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: तो मिश्रा बंधुओं को भी हम कहना चाहेंगे कि आपने हमें मेल किया और हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं, आपने हमें बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और इसी तरह से हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए, और हमारे कार्यक्रम आपके जानकारी के लिए, आपके मनोरंजन के लिए किए जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ
1: जी।

0: साहिब आलम जी का ये आखिरी मेल है। सुमोना जी लिखते हैं कि सुमोना जी और नीना जी को नमस्कार, आदाब।
1: आदाब।
0: प्राइमरी चैनल FM और विविध भारती के कार्यक्रम जो लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित किए जाते हैं काबिले तारीफ है। मैं तो आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का दीवाना हूँ। संदेश आपके, गीत आपके, जब ये शो नीना जी प्रेजेंट करती हैं तो हम सब एक कमरे में बैठकर उनका शो सुनते हैं। बेहतरीन शो प्रेजेंटर हैं। और आगे इन्होंने लिखा है कि एक सुझाव है, आप लकी चॉइस से पुनः स्टार्ट करें।
1: साहिब आलम जी, आपने हमारे कार्यक्रम को इतना पसंद किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नीना जी तक भी आपकी बात पहुंच गई है। देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप कार्यक्रम करते हैं और उसकी प्रशंसा होती है, तो मन करता है कि हम श्रोता से फिर जुड़ें और फिर उस तरह के कार्यक्रम करें। और आपने हमें मेल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सुझाव जो है वो हमने नोट कर लिया है, आगे कोशिश करते हैं इस तरह के कार्यक्रम भी आप तक लाएं। और नीना जी, समय भी देखें हम।
0: हाँ सुमोना जी, समय बिल्कुल धड़कन बढ़ा देता है,
1: समय किसी के लिए रुकता नहीं है नीना जी। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम श्रोता के मेल पढ़ते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंकुश भी आ जाता है।
0: बिल्कुल, रात के बाद सवेरा होता है।
1: जी।

0: सुनते हैं बेहतरीन शो प्रेजेंटर हैं और आगे इन्होंने लिखा है कि एक सुझाव है आप लकी चॉइस से पुनः स्टार्ट करें।
1: साहिब आलम जी आपने हमारे कार्यक्रम को इतना पसंद किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नीना जी तक भी आपकी बात पहुंच गई है। देखिए बहुत अच्छा लगता है जब आप कार्यक्रम करते हैं और उसकी प्रशंसा होती है तो मन करता है कि हम श्रोता से फिर जुड़े और फिर उस तरह के कार्यक्रम करें और आपने हमें मेल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सुझाव जो है वो हमने नोट कर लिया है, आगे कोशिश करते हैं इस तरह के कार्यक्रम भी आप तक लाएं। और नीना जी समय भी देखें हम।
0: हाँ सुमना जी समय बिल्कुल धड़कन बढ़ा देता है,
1: समय किसी के लिए रुकता नहीं है नीना जी। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम श्रोता के मेल पढ़ते रहे लेकिन कहीं ना कहीं ये अंकुश भी आ जाता है।
0: बिल्कुल रात के बाद सवेरा होता है
1: जी,
0: तो हम प्रोग्राम को देते हैं यही विराम, लेकिन उससे पहले बता देते हैं अपना मेल आईडी। हमारा मेल आईडी है pkldlko@gmail.com और हमारा पता भी है। अगर आप हमें लेटर लिखना चाहते हैं या फिर पोस्ट कार्ड लिखना चाहते हैं तो लिखिए हमारा पता, पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन संख्या है 226001।
1: और नीना जी एक श्रोता ने आंगनबाड़ी का भी पता मांगा था तो उसमें सिर्फ आपको ये करना है कि पत्र के लिए धन्यवाद की जगह पे आंगनबाड़ी कार्यक्रम लिख दें तो आपका पत्र उन तक पहुंच जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इसी के साथ अब हम और नीना सोनकर जी हमें लगता है कि हमें अपने श्रोताओं से विदा लेना चाहिए।
0: बिल्कुल, सभी को मेरा यानी नीना सोनकर
1: और सुमोना पांडे का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थीं सुमोना एस पांडे और नीना सोनकर। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शामी अवध।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुनना शुरू कर चुके हैं आप सबका अपना पसंदीदा कार्यक्रम शामे अवध। और कार्यक्रम में आज मैं हूँ मीनू आपके साथ। साथियों, आज की इस खूबसूरत शाम में हम बात करेंगे उन छोटी छोटी बातों की जो दिल को सुकून देती हैं। कभी चाय की एक प्याली, कभी बारिश की हल्की बूंदे, तो कभी किसी अपने की मुस्कान। जिंदगी में सुकून अक्सर छोटी चीजों में ही छुपा होता है। साथियों, हर इंसान की जिंदगी में सुकून का मतलब अलग अलग होता है। किसी को परिवार के साथ वक्त बिताने में सुकून मिलता है, तो किसी को अकेले बैठकर अपने पसंदीदा गाने सुनने में सुकून मिलता है। भागती दौड़ती जिंदगी में अगर दो पल खुद के लिए मिल जाएं, तो बस वही सबसे खूबसूरत पल लगते हैं।

शामें अवध कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त मीनू के साथ। दोस्तों, जिंदगी हमेशा बड़ी खुशियों का इंतज़ार करने का नाम नहीं है। कभी कभी शाम की ठंडी हवा, किसी पुराने दोस्त का मैसेज या संदेश या माँ के हाथ की चाय भी दिल को बेहद सुकून दे जाती है। एक ख़ास बात मैं आप सबके साथ ज़रूर साझा करना चाहूँगी कि साथियों, अगर ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो दूसरों से अपना कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। हर इंसान की कहानी अलग होती है और हर सफ़र की अपनी खूबसूरती होती है। तो थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा खुद को वक्त दीजिए, क्योंकि दिल का सुकून ही आज के समय में बेहद ज़रूरी चीज़ है।

0: तो दोस्तों, इसी सुकून भरी शाम और प्यारे गीतों के साथ अब मुझे यानी मीनू को दीजिए कार्यक्रम समाप्ति की इजाज़त। उम्मीद है आज का ये बातें और आज की ये गीत आपको थोड़ी राहत और मुस्कान ज़रूर दे पाए होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम्यावध। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम।
1: हिंदी कार्यक्रम के आज के संक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। आज इस कार्यक्रम में एक वार्ता आपको सुनवाते हैं जिसका विषय है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अवध की भूमिका। वार्ताकार हैं डॉक्टर अमित राय।
2: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन न केवल दिल्ली, बम्बई या कोलकाता तक सीमित था, बल्कि देश के हर क्षेत्र में इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर भारत, खास तौर से अवध का क्षेत्र जिसमें लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई आदि जिले शामिल थे, यहाँ भी स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा केंद्र था। अवध की धरती ने ऐसे अनेक रणबांकुरों को जन्म दिया जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। यहाँ के किसानों, सैनिकों, जमींदारों, धार्मिक नेताओं और आम जनता ने मिलकर स्वतंत्रता

सत्ता की लौ प्रज्वलित की। 1856 में अवध का विलय अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर कर लिया था। अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उनसे सत्ता ले ली गई थी। उसका तीव्र असंतोष जनता में था और इसीलिए 1857 के विद्रोह में अवध में व्यापक रूप से लड़ाइयां लड़ी गईं। खास तौर से लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला। हम देखते हैं कि एक तरफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे को अपने पीठ पे बांध करके झांसी में लड़ाई लड़ी, उसी तरह अवध में अवध की रानी बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर के लिए लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों से मुकाबला किया। बेगम हजरत महल ने न केवल महिलाओं को संघर्ष में आगे किया बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक भी रही। बेगम हजरत महल की महिला सैनिकों का नेतृत्व रहीमी के हाथों में था। रहीमी फौजी वेश अपनाकर तमाम महिलाओं को तोप और बंदूक चलाना सिखाया। लखनऊ की हैदरीबाई ने भी अंग्रेजों की सूचनाएं क्रांतिकारियों को देने में अहम भूमिका निभाई। बेगम हजरत महल की सबसे महत्वपूर्ण सेनापति उदा देवी पासी थीं। लखनऊ के सिकंदर बाग में उदा देवी पासी ने कैंपबेल की फौज से मुकाबला किया। उन्होंने लगभग 30 अंग्रेजों को मौत की नींद सुला दी। इसके बाद अपने भी प्राणों को देश पर न्यौछावर कर दिया। इन सभी लोगों के वीरता के कारण लखनऊ लंबे समय तक अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर रहा। अंत में अंग्रेजों की विशाल सेना ने बेगम हजरत महल को नेपाल जाने के लिए विवश कर दिया, लेकिन लखनऊ में चप्पे चप्पे पे अवध की संघर्ष की दास्तान हम लोगों को सुनाई देती है। इसी अवध में मौलवी अहमदुल्ला शाह भी एक महान क्रांतिकारी थे। फैजाबाद के इस महान नेता ने अंग्रेजों के विरुद्ध जनता को जागृत किया। वे अत्यंत प्रभावशाली वक्ता और कुशल योद्धा थे। अंग्रेज अधिकारी भी उनकी वीरता से भयभीत रहते थे। उन्होंने अवध में क्रांति की ज्वाला फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्ला शाह पर 50,000 चांदी के सिक्कों का इनाम रखा था। 1857 में जो हम लोग पढ़ते हैं कि रोटियों के माध्यम से क्रांति की ज्वाला फैलाई जा रही थी, वह इन्हीं के दिमाग की उपज थी। अवध के ही रायबरेली में वीर योद्धा राजा बेनी माधव सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में अपनी विशेष पहचान बनाई। उन्होंने ग्रामीण जनता और सैनिकों को संगठित कर अंग्रेजी सेना को चुनौती दी। अवध के ग्रामीण क्षेत्रों में राजा बेनी माधव सिंह के नेतृत्व में ही स्वतंत्रता की आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई। किसान आंदोलन की पहचान ही अवध से है। 20वीं सदी में अवध किसान आंदोलनों का केंद्र रहा। अंग्रेजी शासन और जमींदारी व्यवस्था के अत्याचारों से किसान परेशान थे। एका आंदोलन के महानायक मदारी पासी को, जिन्होंने उच्च करों और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ किसानों को एकजुट किया, उन्हें याद करना आवश्यक है। इसके अलावा बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित कर अंग्रेजी शासन और अत्याचारी जमींदारों के विरुद्ध आवाज उठाई। 1920 के दशक में अवध किसान आंदोलन ने किसानों के अधिकारों के लिए बड़ा आंदोलन चलाया। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष को गांव तक पहुंचाने में मदद की। राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने में इस किसान आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए हम देखते हैं कि आगे चल करके भी स्वतंत्रता आंदोलनों में अवध की महत्वपूर्ण भूमिका थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले असहयोग आंदोलन और सविनावज्ञा आंदोलन में अवध के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। सरकारी संस्थानों का बहिष्कार हुआ और हजारों लोग जेल गए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी अवध के किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। अवध के किसान आंदोलनों में उनकी जो सक्रियता थी, उसी ने उनकी पहचान बनाई और आगे चलकर वह पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय मंच पर उठाया। रायबरेली और प्रतापगढ़ के गांवों में जाकर उन्होंने किसानों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित किया। महानायकों के साथ साथ हमें क्रांतिकारियों की भूमिका को भी नहीं भूलना चाहिए। अवध की बात हो और काकोरी कांड की बात न हो, यह कैसे संभव हो सकता है? 1925 का काकोरी कांड भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की ऐतिहासिक घटना थी। लखनऊ के निकट काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना को लूट लिया और स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। काकोरी में महत्वपूर्ण रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन

0: सिंह शामिल थे। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां अभिन्न मित्र थे। इन क्रांतिकारियों ने हिंदू मुस्लिम एकता और देशभक्ति की अमर मिसाल प्रस्तुत की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी अवध के युवाओं, छात्रों और किसानों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रदर्शन, रेल लाइन काटने और सरकारी कार्यालयों के बहिष्कार जैसी गतिविधियां पूरे क्षेत्र में हुई। अनेक लोगों को जेल भेजा गया, लेकिन आंदोलन की आग बुझ नहीं सकी। अवध की सबसे बड़ी विशेषता उसकी साझा संस्कृति थी। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। बेगम हजरत महल, अशफाक उल्ला खां, मौलवी अहमदुल्ला शाह जैसे नेताओं ने सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। यही एकता अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति के विरुद्ध सबसे बड़ी ताकत बनी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में अवध का योगदान अत्यंत गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक है। यहाँ के रणबांकुरों ने साहस, बलिदान और देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। बेगम हजरत महल से लेकर अशफाक उल्ला खां तक अवध की धरती ने ऐसे अनेक वीरों को जन्म दिया जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज भी हम लोग इन वीरों से प्रेरणा लेते हैं और नई पीढ़ी को इन महान सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को जानने अति आवश्यक है, जिससे नई पीढ़ी के अंदर भी राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और देश प्रेम के मूल्यों को आगे बढ़ाया जा सके।
1: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अवध की भूमिका, ये वार्ता अभी आप सुन रहे थे। वार्ताकार थे डॉक्टर अमित राय। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम मीडियम वेव के मीटर पर आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
4: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8:10 हुए और प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम में। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इलियास खां के गाए कुछ गीत और भजन। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस भजन के साथ, आवाज है इलियास खां की।

आरसी प्रसाद का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे इलियास खां की आवाज़ में। इन्हीं की आवाज़ में लीजिए सुनिए ये भजन जिसे लिखा है सूरदास ने।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप आनंद ले रहे थे इलियास खा के गाए गीतों और भजनों का, और इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ।

मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

तेज फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज थी राहत फतेह अली खान की। कार्यक्रम की अगली पेशकश में आपको सुनवा रहे हैं जावेद अख्तर का लिखा गीत, आवाजें हैं शान और सुनिधि चौहान की, फिल्म का नाम है तारा रमपम।

बाबुल फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं, आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। गीतकार और संगीतकार हैं आदेश श्रीवास्तव।

बाबुल फिल्म के इसी गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित।

अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय

0: जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: We want peace and stability.
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
2: Importer of energy and much of it comes from that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजोदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1 lakh votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And at the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcome the expansion in energy, trade and stress that diversified energy supplies are vital.

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत और अमरीका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती माहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमदोरफ्त को ताउन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1,00,000 से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। टीएमसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो मुशतबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें। हुकूमत ने CBSE के पर्चे दोबारा जांचने से मुतल्लिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के माहिरीन की खिदमात हासिल की हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसी मौजूदात पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत अमरीका दिफाई शराकत दारी की ताकत का एक बार फिर जिक्र किया और तिजारत, तवानाई, नकल व हमल, नेज इलाकाई सलामती समेत ताउन के अहम मैदानों का खाका पेश किया। वफ्त की सतह की बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जल्द अज जल्द एक तजारती माहदे की तकमील को की जरूरत को उजागर किया। तवानाई की तिजारत में तोसी का खैर मकदम किया और जोर देकर कहा

23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की पहलवानों ने अपनी उम्दा कारकर्दगी जारी रखते हुए आज वियतनाम के शहर डानांग में सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे जीते। खवातीन के फ्री स्टाइल मुकाबलों में मानसी लथेरा और काजल ढोजक ने सोने के तमगे, स्वीटी और नेहा सांगवान ने चांदी के तमगे, जबकि अहिल्या शिंदे ने कांसे का तमगा जीता। मर्दों के ग्रेग रोमन जुमरे में सुमित दलाल ने सोने का तमगा जीता, जबकि नीरज पटेल और रोहित बोहरा ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज एक रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम 24 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए। यह धमाका राजधानी क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नज़दीक हुआ। इस धमाके में एक रेलगाड़ी को जुज़्वी नुकसान पहुंचा, जबकि इलाके में खड़ी हुई 10 मोटर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। इस वाक़े के बाद पूरे क्वेटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और सूरत हाल से निपटने के लिए डॉक्टरों और तिब्बी अमले को तलब किया गया है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक इस धमाके के बाद एहतियाती इकदाम के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के नज़दीक गोलियां चलने के वाक़े के बाद तेज़ी के साथ कार्रवाई करने पर कानून नाफिज करने वाले हुक्काम और खुफिया सर्विस के अहलकारों का शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि मुश्तबा शख्स की पुरतशद्दुद तारीख रही है और ये वाक़ा वाशिंगटन में सिक्योरिटी से वाबस्ता गोलीबारी के एक और हालिया वाक़े के चंद रोज़ बाद पेश आया है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती मुआहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक

एक मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। रात्रि के 9:30 हुए हैं और प्रस्तुत है पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुनना शुरू कर चुके हैं आप सबका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद, जहां बजते हैं आपके मनपसंद गीत और होती हैं दिल से दिल तक की बातें। और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट और दोस्त मीनू, और अगले आधे घंटे तक हम साथ रहेंगे संगीत, यादों और मुस्कुराहटों के इस खूबसूरत सफ़र में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के इस बेहद शानदार गीत के साथ। उससे पहले अगर आप भी हमें ईमेल करना चाहते हैं और अपने फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं तो जल्दी से हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें, जो कि है आपके पत्र आपके mail@gmail.com।

आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त मीनू के साथ। और साथियों, जिंदगी में संगीत एक ऐसा साथी होता है हमारा जो हर खुशी

और हर एहसास में हमारे साथ चलता है। कुछ गाने हमें हंसाते हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और कुछ तो सीधे दिल को छू जाते हैं। तो भाई अब हम शामिल करते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले गीत को, जिसे सुनने की फरमाइश हम तक आ पहुंची है कैथल हरियाणा से, और ये फरमाइश हम तक लिख भेजी है जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा जी ने, और ये सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ को फिल्म गाइड में।

दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा खुश रहने का सबसे आसान तरीका जो है वो यही है कि छोटी छोटी बातों में ही अपनी खुशी को ढूंढना, क्योंकि मुस्कुराहटें मुफ्त होती हैं लेकिन उनकी कीमत बेहद ख़ास होती है।

भाई कार्यक्रम में अब शामिल कर लेते हैं हमारे आज के अगले ईमेल को जो कि हमें लिख भेजा है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन्निसा शकील अहमद, शहनाज खान और शिव शरण सोनी जी ने, और ये सुनना चाहते हैं पेइंग गेस्ट फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज़ को। दीजिए आपकी फरमाइश पर ये खूबसूरत सा गीत पहुंचा रहे हैं आप तक। हमें ईमेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो चला है रात्रि के 9:45 और जल्दी से हम शामिल कर लेते हैं हमारे आज के अगले ईमेल को जो कि हमें लिख भेजा है किसान रेडियो क्लब से ग्राम व पोस्ट ललोहा जिला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा रचा गुड़िया, बबलू राजेश और विजय पांडे जी ने। और ये लिखते हैं कि अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो ज़िंदगी में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जी बिल्कुल विजय जी, आपने बहुत सही बात कही और

बहुत अहम बात करी, क्योंकि कहते हैं कि माँ की ममता और पिता का साथ इंसान की, हम सब की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, हमारी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर आज आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, तो उनकी कद्र कीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए और हमेशा उनकी मुस्कुराने की वजह बनिए। बेहद खूबसूरत मैसेज के साथ इन्होंने सुनना चाहा है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को फिल्म नया दौर में। तो लीजिए, आपकी फरमाइश पर आपका पसंदीदा गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। हमें ईमेल करते रहिए ऐसे ही और सुनते रहिए आपके अपने पसंदीदा गीत ऑन आकाशवाणी लखनऊ।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त मीनू के साथ। साथियों, कार्यक्रम में ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी बाकी हैं कई शानदार गीत और ढेर सारी दिल की बातें। फिलहाल बिना देरी किए कार्यक्रम में हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं हमारे आज के अगले ईमेल को, जो कि हमें लिख भेजा है जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु रामशंकर पत्रकार भाई वाले रक्षा मौर्य राम सागर शाहू रसूलपुर वाले रंजीत पासी, और इन सभी ने सुनना चाहा है अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाज़ों को फिल्म तेरी मेहरबानियाँ में। तो लीजिए, आपकी फरमाइश पर हम पहुंचा रहे हैं ये शानदार सा गीत आपके रेडियो सेट तक। हमें ईमेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है और समय हो चला है 9:53 और जल्दी से शामिल कर लेते हैं हमारे आज के अगले ईमेल को जो कि मैं लिख भेजा है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा ने, और इन्होंने एक बहुत प्यारा सा मैसेज भी लिखा है, बहुत जानकारी से भरा मैसेज लिखा है कि डॉक्टरी सलाह लिए बिना दवा खाना बिल्कुल सही नहीं है। कुछ लोग बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई खाते हैं और दूसरों को भी बताते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जी बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि हर दवा का असर और जो उसकी क्वांटिटी होती है, उसकी जो मात्रा होती है, वो अलग अलग होती है। इसलिए सही इलाज के लिए हमें डॉक्टरी सलाह लेना ना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात कही आपने अरोड़ा जी। चलिए फिलहाल कार्यक्रम में वक्त बहुत तेज़ी से भाग रहा है तो आपको हम सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ट्रैक। आपने सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को फिल्म गंगा तेरा पानी अमृत में। ऐसे ही हमें अच्छे अच्छे मैसेजेस करते रहिए, ईमेल करते रहिए और साथ में सुनते रहिए आपकी पसंद के ट्रैक।

साथियों जल्दी से हम शामिल कर लेते हैं हमारे आज के आखिरी ईमेल को जो कि हमें लिख भेजा है सुनील विश्वकर्मा ने और इन्होंने ये ईमेल हमें भेजा है बिजनौर रोड लखनऊ से। और साथ ही हम शामिल करेंगे एक और ईमेल को जो कि हमें आया है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से और ये ईमेल हमें लिख भेजा है प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेत, धर्मेंद्र, मेघा नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा ने। और साथ ही ये मेल हमें नर्मदा नगर से भी आया है जिसे हमें लिख भेजा है सूरज वर्मा, नीरज शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा ने। साथ में हम एक और ईमेल शामिल करेंगे कार्यक्रम के आखिर में ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से। ये ईमेल हमें भेजा है दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम्बाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे ने। तो भाई आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये ट्रैक कार्यक्रम के अंत में। हमें ईमेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

दोस्तों आज अगर किसी लिसनर का ईमेल या फरमाइश शामिल कार्यक्रम में नहीं हो पाए तो बिल्कुल नाराज़ मत होइएगा। हम कोशिश करते रहते हैं कि हर श्रोता की आवाज़ हर संदेश को अपने कार्यक्रम का हिस्सा बना सके। आपके भेजे हुए हर ईमेल और प्यार भरे संदेश हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, तो अपना प्यार और साथ यूँ ही बनाए रखिए। बहुत जल्द आपके संदेश और आपके फरमाइशी गीत भी हम अगले कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 10 बजते को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाली विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य उस समय के बम्बई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्मभूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांतो दे रॉय।
1: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य। बोर्न इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली ऑफ अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस वेयर हिज ग्रैंडफादर द रिनाउंड सितारिया श्री लाल मोहन भट्टाचार्य इज सेड टू हैव लेड द फाउंडेशन of this rich legacy, and Pandit Hara Shankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Murali Das Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Hara Shankar Bhattacharya moved to Bombay, present

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi,

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: You are listening to Raag Zila Kafi in the sitar recital by Pandit Harishankar Bhattacharya. He was accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: And with this, we end tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. Union Home Minister Amit Shah today said, government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, that is UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said, the UCC will not infringe upon any tribal rights. The National Testing Agency, that is NTA, today postponed the Common University Entrance Test undergraduate, that is CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid ul-Zuha, that is Bakrid holiday, as per the government notification. The agency informed that revised exam dates for affected candidates will be announced soon. NTA also advised candidates to regularly visit its official website for the latest updates. The Central Board of Secondary Education, that is CBSE, today extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12th board examinations by one more day